वंदे मातरम, सुप्रभात। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आप सभी का रेडियो दोस्त सैकर चैटर्जी। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इसी मंगल कामना के साथ आपका स्वागत है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में। आज है दिन रविवार, अंग्रेजी सन्नी सुई 2026 की जून माह की 21 तारीख, तदनुसार शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 31वीं तिथि। अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:58 होने को है। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

दोस्तों अभी हम जुड़ेंगे अपने दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। तो आइए चलते हैं दिल्ली, लेकिन कुछ पल प्रतीक्षा करें।

सुबह 7:30 ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनू राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया।

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र, FM के 103 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे हिंदी समाचार। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं खेत खलिहानों की, हमारे किसान भाइयों की। सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है अवशेष प्रबंधन से लाभ। आलेख एवं वाचन स्वर रेडियो साथी सुनीता अग्रवाल का है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे अवशेष प्रबंधन के लाभ पर। श्रोताओं, यदि हम कहें कि फसल अवशेष प्रबंधन आज की जरूरत बन चुका है तो ये सही है, क्योंकि फसलों के अवशेष के जलाने से वायु प्रदूषण तो होता ही है। अनजाने में ही हमारे यहाँ कृषक ऐसा करते हैं और ये नहीं जानते कि अवशेष के जलाने से वायु प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है। बढ़ते प्रदूषण को देखकर अब सरकार ने भी इसे रोकने के लिए कई कड़े कदम उठा रहे हैं ताकि किसान फसल अवशेष को ना जलाएं। अवशेष को जलाने से खेत की मिट्टी के साथ साथ वातावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, जैसे मृदा के तापमान में वृद्धि, मृदा की सतह का सख्त होना, मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की उपलब्धता में कमी एवं अत्यधिक मात्रा में वायु प्रदूषण आदि जैसे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसीलिए किसानों को फसल अवशेष जलाने से बचना चाहिए और इनका उपयोग मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए करना चाहिए। यदि इन अवशेषों को सही ढंग से खेती में उपयोग करें तो इसके द्वारा हम पोषक तत्वों को एक बड़े अंश के रूप पूर्ति के रूप में अवशेषों के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों का पुनः चक्र एक आवश्यक घटक है। यदि किसान उपलब्ध फसल अवशेषों को जलाने की बजाय वापस भूमि में मिला देते हैं तो बहुत तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि मृदा के भौतिक गुणों में सुधार होता है। फसल अवशेषों को मिलाने से मृदा की परत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने से मृदा सतह की कठोरता कम होती है तथा जल धारण क्षमता एवं मृदा में वायु संचरण में भी वृद्धि होती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। फसल अवशेषों को मृदा में मिलाने से मृदा के रासायनिक गुण जैसे उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा एवं मृदा के पीएच में सुधार होता है। कार्बनिक पदार्थ की एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व फसलों को उपलब्ध हो पाते हैं। अवशेषों में लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्वों के साथ 0.43% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, जो कि प्रमुख पोषक तत्व हैं। फसल अवशेषों को मृदा में मिलाने पर आने वाली फसलों की उत्पादकता में भी काफी मात्रा में वृद्धि होती है। अतः मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं फसल उत्पादकता को देखते हुए फसल अवशेषों को जलाने की

0: जाए भूमि में मिला देने से काफ़ी लाभ होता है। यदि फसल अवशेष को खेत की मिट्टी में वापस मिला दिया जाता है तो फिर उससे गेहूँ की भूसी, धान की पराली, ज्वार, बाजरा एवं गन्ने की पत्तियां का उपयोग मशरूम उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। इनका उपयोग मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट बनाने में भी किया जाता है। फसल में पराली व अन्य फसली अवशेषों को आच्छादन के रूप में भी उपयोग करने से न सिर्फ भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है बल्कि अन्य खरपतवार के रूप में उगने वाले अवांछनीय पौधे भी नहीं पनप पाते। आच्छादन से खेतों के पानी को वाष्पित होने से भी बचाया जा सकता है। पराली को गोबर के साथ मिलाकर एकत्रित करने से यह कुछ ही महीनों में कम्पोस्ट खाद के रूप में रूपांतरित हो जाती है और ये कम्पोस्ट खेतों के लिए काफी उपयोगी होते हैं। पराली का धुआं मुक्त ईंधन की स्टिका तैयार करने में भी किया जाता है जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता है और ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयले तथा गोबर के कंडों की खपत भी कम की जा सकती है। इसलिए कृषकों को इन अवशेषों को कचरा नहीं समझकर इसे सोना तुल्य उपयोग किया जा सकता है और लाभ लिए जा सकते हैं। और आज की जानकारी यहीं तक।
1: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आपने रेडियो साथी सुनीता अग्रवाल की आवाज में सुना अवशेष प्रबंधन से लाभ। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं रामचरितमानस गान से और सुनते हैं रामचरितमानस गान की कड़ी संख्या 183।
2: एपिसोड नंबर 183।

0: सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या,
1: तुम्हें योग का जिक्र है। योग का सबसे बड़ा और सबसे जो बेहतर जानकारी लोगों को मिला है वह है पुराण से, उपनिषद से, भगवत गीता से और भी प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र है। जब हम आधुनिक जीवन में जीते हैं, एक व्यस्तता भरा जीवन, तनाव भरा जीवन, अव्यवस्थित दिनचर्या और मन का भटकाव जब हमारे पर प्रभाव डालता।
0: कहाँ है लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

0: साथियों, आपने सुना रामचरितमानस गान। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं चिंतन की और सुनते हैं योग करें स्वास्थ्य रहें। संकलन एवं वाचन अनुपमा तिवारी का है।
1: व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, जिसे हमेशा संजो कर रखना बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर से ही व्यक्ति को हर कार्य करने में मन लगता है। योग एक ऐसी ही कला है जिससे व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। यहाँ तक कि योग से व्यक्ति कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से उबर सकता है। योग कला हमारी प्राचीन संस्कृति की देन है। हमारे पूर्वज योग किया करते थे, यही कारण है कि वे स्वस्थ रहा करते थे। भारत के प्रधानमंत्री ने योग के महत्व को समझा और पूरे विश्व को इसका लाभ लेने का सुझाव दिया। उन्हीं के प्रयासों से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुझाव दिया, जिसके कारण आज प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 21 जून को देश और दुनिया के लोग बहुत ही उत्साह के साथ योग कार्यक्रम में भाग लेते हैं और इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं। योग भारत की एक प्राचीन संस्कृति है। योग मन, शरीर और आत्मा का मिलन कराता है। मन की शांति के लिए योग ही केवल एक जरिया है। योग हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। शरीर और मन के लिए योग के फायदे अनगिनत हैं। दुनिया को हमारी प्राचीन कला और उनके फायदों के बारे में अवगत कराने के लिए भारत के नेतृत्व में पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान श्री नरेंद्र मोदी ने वहां बैठे हर देश के प्रतिनिधि को योग का महत्व बताया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। उनके इस प्रस्ताव पर अमेरिका, कनाडा, चीन सहित लगभग 193 देशों के सदस्यों ने सकारात्मक मुहर लगा दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून को ही पसंद किया गया, क्योंकि यह दिन साल का सबसे लंबा दिन है और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का यह उचित समय है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजपथ दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की कई मशहूर हस्तियों और 35,985 लोगों के साथ मनाया गया था। योग शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। शरीर में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। योग के कारण रोग शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें योग के महत्व को समझते हुए अपने जीवन में हर दिन को योग दिन बनाना चाहिए। योग की जड़ें भारतीय संस्कृति के साथ पौराणिक काल से जुड़ी हैं। माना जाता है कि योग कला को जन्म देने वाले भगवान शिव थे। योग एक प्रकार की ऊर्जा है जो साधक को पूरी उम्र बीमारियों से बचाती है।

योग के अभ्यास से दिमाग और हृदय स्वस्थ रहता है, मन प्रफुल्लित और तंदुरुस्त रहता है, शरीर के लिए योग काफी फायदेमंद होता है। आज योग कला भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित हो चुकी है और भारत योग के क्षेत्र में विश्व गुरु बन चुका है। जैसे जीने के लिए हवा जरूरी है, वैसे ही योग हमारे जीवन में काफी जरूरी है। योग आत्मा और शरीर का मिलन कराता है। योग एवं प्राणायाम हमारे जीवन पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। योग जीवन जीने की एक कला है। आज के इस आधुनिक दौर में जब लोग काफी तनाव और डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव को मूल से दूर करने के लिए योग ही एकमात्र इलाज है। अगर दिन भर में सिर्फ 15 मिनट भी योग के लिए दिए जाएं, तो इससे शरीर और मन को अनगिनत लाभ पहुंचते हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेक शुभकामनाएं।

दोस्तों आप सुन रहे थे चिंतन। आपने सुना अनुपमा तिवारी की आवाज़ में योग करें स्वस्थ रहें। आइए दोस्तों अब बारी है भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना से जुड़ने का। यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र FM के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आराधना के तहत सुनते हैं मौसमी को।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम आराधना। आराधना के तहत आपने सुना मौसमी की आवाज में कुछ भक्ति संगीत। अब वक्त हो चला है स्वास्थ्य चर्चा से जुड़ने का। आज हम सुनेंगे ममता शरण, जो कि योग शिक्षिका हैं, उनके आवाज में गर्भवती महिलाओं के लिए योग।

गर्भवती महिलाओं पर बहुत बड़ा दायित्व है। उनके संतान के ऊपर साहस, पराक्रम, बलवान बने, ये हर माँ, हर गर्भवती महिला चाहती हैं कि उनका बच्चा तन से स्वस्थ हो, बीमार न हो, बलवान न हो। और इसके लिए उन्हें भी माँ को ही, सबसे पहले महिलाओं को ही जो गर्भ धारण कर रही हैं, उन्हें स्वस्थ होना होगा, तभी वह इस तरह की सपना, इस तरह की विचार कर सकती हैं। यदि वह रोगी होंगी तो बच्चे भी रोगी होंगे, यदि वह सर्दी खांसी से ग्रसित होंगी तो बच्चे भी हमेशा सर्दी खांसी उनको लगा रहेगा, यदि उन्हें एलर्जी की शिकायत है तो अभी बच्चों में स्वभावता आ जाएगा। तो इन सब के लिए गर्भवती महिलाएं योग का सहारा लें। योग करने के लिए सब पेट में बच्चा है, किसी भी चीज के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, हमको अपने स्वस्थ रहने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा है। अभी हम अगर बीमार भी पड़ते हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर हमें ऑक्सीजन लगाते हैं, वो खाने के लिए रोटी पानी नहीं देते हैं। तो हमारे शरीर को जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। और जब हम महिलाएं गर्भवती हैं तो उनको डबल ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे पेट में पल रहे हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। तो गर्भवती माताओं को प्राणायाम के साथ साथ खान पान, विचारों पर भी ध्यान देना होगा। माँ के हृदय से ही बच्चा का हृदय बनता है। अगर महिलाओं को सच्चे अर्थों में माँ बनना है तो खान पान का ध्यान रखें, आचार विचार का ध्यान रखें, उचित व्यायाम करें। जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो बहुत लोगों को कमर दर्द, उल्टी, दस्त होते हैं, किसी किसी को बीपी हाई हो जाता है, किसी को पहले से अस्थमा रहता है वह और बढ़ जाता है। गर्भ अवस्था में दवाई खाने से और भी नुकसान है। गर्भवती महिलाएं जो खाती पीती हैं, जो देखती हैं, जो बोलती हैं, जो सुनती हैं, वो सारा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। अगर माँ हंसती हैं तो बच्चा भी हंसता है, अगर माँ के आंखों में आंसू है तो बच्चा अंदर रोता है। इसलिए प्रसन्नता के साथ महिलाओं के लिए खास प्राणायाम, योग करना होगा। प्राणायाम जब हम करें तो एकदम धीमी गति के साथ। प्राणायाम में कपालभाति, वायग्निषाद जो हम पहले ही बोल चुके, गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को बहुत अगर ज्यादा गर्मी, पसीना आता है, थायराइड की समस्या है, तो उसको भी वो प्राणायाम भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत से ठीक कर सकती हैं। कुछ प्राणायाम ऐसी हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए, जैसे हम भस्त्रिका की बात कर रहे हैं तो ये श्वास को अंदर भरना है, इसको भी हमें गर्भवती महिलाओं को एकदम धीरे धीरे करना होगा। श्वास को जब हम भरें तो श्वास हमारा चेस्ट में जाना चाहिए, पेट में नहीं जाना चाहिए। श्वास को हम नाक से श्वास लेंगे और उसको अपने फेफड़े में भेजेंगे, पेट का इसमें कोई काम नहीं।

है। पेट का काम भोजन रखना है और नाक का काम श्वास लेना और छोड़ना है। तो जब भी हम भस्त्रिका करें तो इसको हम डीप ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाएं अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने शक्ति का अतिक्रमण नहीं करेंगी। जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, जितना वो सहूलियत से कर सकती हैं, उसके अनुसार धीरे धीरे सांस को लेना और छोड़ना। जब हम श्वास लेते हैं तो मेरा छाती आगे की ओर निकलता है, जब छोड़ते हैं तो पेट भीतर की ओर, पेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम, इसको अधिक से अधिक गर्भवती महिलाएं करें तो उन्हें श्वास से संबंधित कोई रोग नहीं होगा और जो पेट में गर्भ में बच्चे पल रहे हैं उन्हें भी कोई बीमारी नहीं होगी। और जब आप भस्त्रिका करते हैं तो मन बिल्कुल शांत रहता है। इसको एकदम धीरे धीरे करें। भस्त्रिका प्राणायाम आप गायत्री मंत्र के साथ भी कर सकते हैं, ओम के जाप के साथ भी कर सकते हैं। आप कहने का मतलब, आप गर्भवती हैं, आप पूर्ण रूप से अपने को इस तरह से बनाएं, इस तरह से करें कि वो सारा बच्चा जो आपके पेट के भीतर पल रहा है वो जब बाहर आए तो एकदम सुंदर, स्वस्थ, अच्छे विचार वाला आए। इस तरह का प्रयास हमको करना है। अनुलोम विलोम भी आप कर सकती हैं। दाहिने नाक को बंद करके बाएं से श्वास को लेना, फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिने से छोड़ देना, फिर दाहिने से लेकर के बाएं से छोड़ देना। ये अनुलोम विलोम सांस वाली क्रिया गर्भवती महिलाएं ज्यादा करेंगी, पेट वाला कोई भी क्रिया नहीं करेंगी। जितना भी करना है सिर्फ ऑक्सीजन लेने वाला काम करना है। आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि पहले के समय में जब महिलाएं गर्भवती होती थी तो लोग अच्छे अच्छे किताब पढ़ते थे, अच्छी अच्छी बातें सुनते थे, हमेशा ईश्वर का ध्यान लगाए रहते थे। लेकिन आज के युग में ये सारा कुछ पीछे छूटता चला गया। सारा कुछ बस हमको गर्भधारण करना है, गर्भधारण कर लिए, ऐसा नहीं होता है। इसका दुष्परिणाम भी आप देख रहे हैं समाज में। आज इतने बच्चे जो आप जितने भी तरह के बुराइयां समाज में देख रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है? हम माताएं बहने हैं, हमने गर्भधारण करते समय अपने ऐसा संस्कारवान वाला काम नहीं किया, ऐसा अच्छा किताब नहीं पढ़े, ऐसी कुछ अच्छी काम नहीं किए जिससे कि हमारा बच्चा ऐसा निकला जो समाज पर एक धब्बा हो जाता है। बहुत तरह की बुराइयां लेकर के जाते हैं, कभी कुछ तरह की शिकायत, कभी कुछ तरह की शिकायत। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जब हम गर्भ धारण करें तो एकदम अपने आप को ईश्वरीय प्रेरणा के साथ रखें, हमेशा इस सोच के साथ रखें कि हम जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं, हमेशा खुश रहने का प्रयास करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे अच्छे भजन सुने, अच्छी अच्छी बातें करें। ये सब करने से जो आप करेंगी वही आपका बच्चा करेगा और वही आपको आगे जाकर मिलेगा। आप अगर गर्भावस्था में हमेशा चिड़चिड़ा रहेंगी, गुस्सा रहेंगी, उच्च स्वर में बात करेंगी तो वही आपको उस समय के बाद मिलने वाला है, क्योंकि वो सब बच्चा पेट में ग्रहण कर रहा है कि हाँ ऐसे गुस्सा, ऐसे चिड़चिड़ा। तो इन सब से बचने के लिए हम महिलाओं के ऊपर, गर्भवती बहनों पर बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है कि हम किस तरह से अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें। और ये संस्कार गर्भ से ही शुरू होते हैं। जब हम अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चा हमारा निश्चित रूप से अच्छा होगा और समाज से बहुत हद तक बुराइयां घटेगी। बच्चे आजकल जो बुराइयां करते हैं आप हमेशा सुनती हैं, कभी कुछ हुआ। तो इन सब से बचने के लिए हम गर्भवती बहनों अपना दायित्व को बहुत अच्छी तरह से निभाएं, योग प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, जमीन पर बैठकर चादर बिछा करके बैठ जाएं, थोड़ा पैर को हिला लें, थोड़ा उंगली को मोड़ लें और सबको श्वासों के साथ करें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को आप जन्म देंगी जो आगे जाकर के भी एक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनेगा।

दोस्तों ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र FM के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे हैं प्रातकालीन सभा।

प्रातःकालीन सभा के तहत आपने सुना खेती की बातें, आपने सुना रामचरित मानस गान, आपने सुना योग करें स्वस्थ रहे विषय पर चिंतन, साथ ही आपने मौसमी की आवाज़ में सुना कई खूबसूरत आराधना भक्ति संगीत। दोस्तों, आपने सुना हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें योग शिक्षिका ममता शरण ने बतलाई गर्भवती महिलाओं के लिए योग क्या है, कैसे करना चाहिए। दोस्तों, अब वक्त हो चला है कि हम अपने दिल्ली केंद्र से जुड़ेंगे, जहां से हम बारी बारी से 6:55 पे सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 सुनेंगे हिंदी समाचार और 7:05 पर सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। तो आइए चलते हैं दिल्ली, सुनते हैं समाचारों को, लेकिन कुछ पल प्रतीक्षा कर लें।

That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग

0: योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन हैं वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honourable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honourable Prime Minister today made us all remember about the

0: प्रैक्टिस ऑफ योगा।
1: जी, और इस समय यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
1: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
2: हम सब,
1: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
0: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड एंड ही विल बी गोइंग टू द डेजिग्नेटेड एरिया एंड ही हैज जस्ट अराइव्ड देयर एंड ही विल बी परफॉर्मिंग द आसनास फ्रॉम हियर and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road, and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
1: Maa Kali ka aashirwad liye Swami Vivekanand aur Maharshi Arvind jaisi vibhootiyon ka darshan is bhoomi mein hai. Sanskritik, aadhyatmik aur baudhik virasat hai ye hamare yogiyon ki, hamare muniyon ki vishesh tayariyon ke saath aaj yahan yogabhyas kiya ja raha hai aur is samay griva chalan ka abhyas yahan par kiya ja raha hai. और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
1: जी।
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
1: जी।
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है
1: जी। यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ हैं, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से
1: जी। और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
0: Guruji, Munish Sharma ji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
4: Yes, actually asana ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness.

0: हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहां से शुरू होती है और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
1: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में।
0: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना। जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना। हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारी टोटैलिटी पर रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं।
2: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
2: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चलाए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है।
1: जी,
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं।
1: जी,
2: वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
1: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है।
0: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
0: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे। तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है।
1: जी yes, और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
1: जी।
2: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन।
3: Yes, and as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhamsa Yoganand set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: जी, यहाँ पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
2: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है।
1: जी, और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है सबसे बड़ी प्रेरणा।

0: यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूं कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नजदीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
1: And we can also see Neelam, and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them, and he is just pepping them up. This shows
0: जी
1: that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: जी बिल्कुल। और ये जो आसन है, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग-अलग आसन हैं। और यहां हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है, और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है,
0: जी
2: तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
0: जी। और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में। यहां पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए, बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
1: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here, and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just, as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी,
1: and now
0: अब
1: about this asana,
0: अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का। खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहां पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहां पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा, सभी इस आसन की मुद्रा में आ

0: आते हुए उत्तान मंडूक आसन। प्रतिमा जी, इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
1: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडूक आसन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडूक आसन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
0: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
2: And now I think the enthusiasts are performing Vakrasana.
0: So जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी,
1: बिल्कुल सही है कि ये हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
0: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटे प्रदेश जो है, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
1: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है।
0: जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और परखते हुए यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम टू डू
0: दी आसन, उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
2: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
1: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली फीट के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ है, टोज बाहर की तरफ है, तो ये पूरे बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है।
0: जी,
1: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये।
0: जी, और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है, तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं। और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा?
1: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे। ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है। और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है। स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है। ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी आसन बेनिफिशियल कहा जाता है। और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं।
0: जी गुरु मुनीष सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं। आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारे स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्सियसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं। और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूं कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं। इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं। बहुत ही सुंदर
0: जी,
2: बहुत ही।
0: और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन। इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी?
1: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन।
0: जी सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान से कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है। और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर। और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
1: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
0: जी।
1: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्तासन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेडली प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन।

0: ध्यान जो है वो मदद करता है हमारी।
1: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध
0: जी।
1: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें। इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है कि हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनके जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाए, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
2: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
0: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपालभाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोपनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपालभाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहां मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी गारंटी फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी। ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरैक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
3: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि से होती है डॉक्टर प्रतिमा?
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन की क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयामी लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामीन युक्तिन सर्वरोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है, लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्वरोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है, ये भी कहा गया है।

0: युक्तम त्यजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं
1: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
0: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतल प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
1: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से
0: व्यवस्थित कर देता है
1: जी। और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षणमुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
1: जी।
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें श्वास लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी जी। भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें,
0: और बाहर कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है
1: जी।
0: तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
1: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं जी।
2: नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज अ टाइम फॉर आर सेल्फ असेसमेंट एंड becoming one with the universe. Dr. Pratima,
0: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind.
1: जी,
0: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है
1: जी। और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
2: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपके जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है, और कई लोग ध्यान के सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है, और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें, मेरी खुद की लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन थ्री मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है, और जो परम स्वरूप है ना वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है
1: जी। आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना
3: शांति
1: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
3: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर।
1: और जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
3: और धीरे
1: इसकी
3: धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरु जी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है, और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूं जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं, और आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
4: And the Honorable Prime Minister is now making his way towards the exit of the Red Road, and everyone who were present here and who were led by the Honorable Prime Minister on the occasion of the 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: Ji, jal, thal, nabh, sabhi yog mein honge. Hum jante hain ki Bharat mein to suryodaya jab ho raha hai to humne namaskar kiya hai aur saath hi yoga abhyas kiya hai. Duniya ke aise bahut sare desh hain jinme जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे। और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है, और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
4: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशनड। And we would also like to inform our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga. And this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munish Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
2: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बनके 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें, एक समय चुनें 10 मिनट या 15 मिनट वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं, जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं। मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और फिर बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है, जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हमें बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहां पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
4: यस, एंड एज गुरु मुनीश सिन्हा जी मेंशनड एंड एज यू आल्सो मेंशन नीलम जी, दैट Today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the River Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our Border Security Force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे, और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं. इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया. योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं. 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए. और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं. हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं. और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है. तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं, और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है. स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं. आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है. और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी, कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं, उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है. और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है. सभी की निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना. विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा, और हम उन सभी विदेशों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं. आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग. आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना. मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स. मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
0: नमस्कार।
5: अभी आप रिड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। 8 बजने को हैं, अब कुछ पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट। नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रय तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
4: परीक्षा के सुरक्षित पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों समन्वयकों पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
6: धन्यवाद भरत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है, मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। सात सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। हिंदुस्तान की खबर है, पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: of the examination material and end-to-end secure handling of confidential materials to designated locations under sealed protocols. The NTA is also actively monitoring social media platforms to curb misinformation and prevent malpractice. Saqlain Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, has said the three Indian-flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo with 94 Indian crew members have successfully transited the Strait of Hormuz yesterday and are en route to India. These oil tankers are Desh Vaibhav, Desh Vibhor and Sanmar Herald. In a social media post, he said that under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi, the government is working on highest priority to secure India's maritime interests. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. It also predicted heavy to very heavy rainfall at isolated places over Assam and Meghalaya till Thursday. Northeastern states are expected to receive fairly widespread to widespread rainfall till the 26th of this month. As part of a series, People's Padma on Akashwani, we bring you a conversation with Professor Juzair Vasi, a pioneer in the field of semiconductors and solar photovoltaics. He has been honored with the prestigious Padma Shri.
2: India is emerging as one of the biggest major solar deployers, and I can see that we are going to also emerge as a major manufacturer of solar components.
1: To listen to the interview, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 10:30 a.m. You'll also listen to this interview on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. As part of our series, Prakriti Ki Baat, Akashwani Ke Saath, we bring you a discussion on the efforts of Jhumarmur Panchayat in Nagaon district of Assam, which has been recently awarded the National Panchayat Award in the Clean and Green Panchayat category. To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 9:10 a.m. You can also listen to this discussion on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. India A will take on Sri Lanka A in the Tri-Series cricket final, scheduled to be played in Dambulla today. The match will start at 10 in the morning. Smarting from an ill-tempered defeat in their previous match, India A will look to settle scores when they take on Sri Lanka A in the final, with teenage sensation Vaibhav Suryavanshi set to be in the spotlight once again. In FIFA World Cup, Germany defeated Ivory Coast 2-1 in Toronto, Canada, and clinched a spot in the knockout phase at the tournament. For Germany, Dennis Undav scored twice. Earlier, the Netherlands secured a commanding 5-1 victory over Sweden in Group F match at NRG Stadium in Houston, United States. Yesterday, in another match, Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
3: Thank you, Sunil. NEET UG re-examination is the top story on dailies today. All hams on deck for NEET retest, writes Hindustan Times. 1.38 lakh CCTV, 51,000 jammers for leak-proof NEET today, headlines The Asian Age. The war between Iran and Israel, too, continues to dominate front pages of dailies. Iran closes Hormuz amid Israeli attacks on Lebanon, reads the Hindu headline. On the 12th International Day of Yoga 2026, the Pioneer writes that 6 lakh people will perform yoga today with Prime Minister Modi in Kolkata. Two studies led by Ames have found that yoga may improve women's hormone and insulin levels, reports the Times of India. An AI-enabled queue management system will be implemented in Kerala's Sabarimala Ayyappa Temple from November, reports the Hindu. In just over 3 months, from the end of February until early June, Indian records in athletics were broken 20 times, reveals the Indian Express. And finally, the ASI has made significant discoveries at Rakhigarhi, perhaps the largest site of the Indus Valley civilization, with the recovery of 8 skeletons and pottery offerings, reports the Tribune. DNA testing is underway. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. International Yoga Day being celebrated across the globe today. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in practicing common yoga protocol from historic Red Road in Kolkata. Prime Minister to also commission three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. National Testing Agency to conduct NEET UG re-examination in India and abroad this afternoon. Three Indian-flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo successfully crossed Strait of Hormuz. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in cricket, India A to take on Sri Lanka A in tri-series final in Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैंसी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अभ्यास का किया नेतृत्व, कहा मानव जीवन को निरंतर विकास के लिए प्रेरित करता है योग। आज आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले प्रशासन चौकस, कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए राज्य भर के 67 परीक्षा केंद्रों पर की गई है व्यापक तैयारियां। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा करना आयोग की प्राथमिकता। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज से अगले दो दिनों तक के लिए आंधी और बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और 12वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीते 4 स्वर्ण समेत 18 पदक। और अब समाचार विस्तार से। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग मानव जीवन को निरंतर विकास और प्रगति के लिए प्रेरित करता है।
4: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
3: उन्होंने कहा कि योग के जरिए हम लोग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के प्रति अधिक मजबूत हो सकते हैं।
4: संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है।
3: इधर राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आज आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले प्रशासन पूरी तरह चौकस है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए राजधानी रांची समेत राज्य भर के 67 परीक्षा केंद्रों पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। विस्तृत ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: आज होने वाली नीट यूजी री एग्जाम 2026 को लेकर रांची समेत राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। रांची में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तथा सभी केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। परीक्षा से पूर्व कल जिला प्रशासन और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को हाई अलर्ट जारी करते हुए परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए। साथ ही फोटोकॉपी दुकानों, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थानों की विशेष निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने परीक्षा के दौरान भीड़ जुटाने, सभा आयोजन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
6: राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब 30 जून से 29 जुलाई तक BLO घर घर जाकर फॉर्म का वितरण करेंगे। हर मतदाता को अनिवार्य रूप से यह फॉर्म

0: झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिवंगत संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को पद्म भूषण से सम्मानित करेंगी। नागरिक अलंकरण समारोह में यह सम्मान उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रहण करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @handle@AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @handle@AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रय तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा मंदिर में दर्शन पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक स्थलों से नई ऊर्जा और सेवा की प्रेरणा मिलती है। साथ ही उन्होंने झारखंड वासियों की सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना की। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर उपायुक्त ने अफवाहों से सावधान रहने और स्थानीय थाना से समन्वय स्थापित कर निर्धारित रूट से ही जुलूस निकालने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज से अगले 2 दिनों तक के लिए आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान रांची, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो समेत 17 जिलों में तेज हवा और मेघ गर्जन होने की संभावना है। 12वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 पदक जीते। इनमें 4 स्वर्ण, 5 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकतर अखबारों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और दोबारा हो रही नीट परीक्षा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, ऋण पास का अध्ययन बताता है कि योग अभ्यास से छूट सकती है स्मार्टफोन की लत। हिंदुस्तान की हेडलाइन है, नीट परीक्षा को लेकर रिम्स मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट आज होंगे नजरबंद। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, एपीपी के 134 पदों के लिए जारी रिजल्ट पर विवाद, जेपीएससी सदस्यों ने नहीं किया हस्ताक्षर, फिर भी रिजल्ट जारी। दैनिक जागरण लिखता है, राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद एक ही दिन में टूट गया कांग्रेस का गुरूर, राजद माले के सामने नतमस्तक हुई पार्टी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अभ्यास का किया नेतृत्व, कहा मानव जीवन को निरंतर विकास के लिए प्रेरित करता है योग। आज आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले प्रशासन चौकस, कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए राज्य भर के 67 परीक्षा केंद्रों पर की गई है व्यापक तैयारियां। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा करना आयोग की प्राथमिकता। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज से अगले 2 दिनों तक के लिए आंधी और बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और 12वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीते 4 स्वर्ण।

0: समेत 18 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: हम आकाशवाणी।
1: नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सैका चटर्जी, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सदाबहार गानों का कार्यक्रम गीत गुंजन। दोस्तों, हमारे पलामू, गढ़वा और लातेहार के जितने भी श्रोता इस वक्त रेडियो से ट्यून करके बैठे हैं, उन सभी का आज के सुहाने सफर में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ फिल्में और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो वक्त के दायरे को पार कर जाते हैं। आज से करीब 43 साल पीछे चले, साल था 1983। उस दौर में रुपहले पर्दे पर दो नए चेहरों ने कदम रखा था। एक थे चार्मिंग डैशिंग सनी देओल और दूसरी थी बेहद खूबसूरत अमृता सिंह। फिल्म थी बेताब। इस फिल्म के गाने उस दौर में हर धड़कन की आवाज बन गए थे। प्यार का वो मासूम दौर, वो वादियों की खूबसूरती और उस पर आरडी बर्मन यानी कि पंचमदा का जादुई संगीत। आनंद बख्शी साहब ने जब इन जज्बातों को शब्दों में पिरोया तो एक ऐसा नगमा बनकर तैयार हुआ जो आज भी जब बजता है तो दिल सीधे 80 के दशक में चला जाता है। दोस्तों, मोहब्बत में वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन एक वादा ऐसा था जो उम्र भर साथ निभाने का था। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की मखमली आवाजों में सजा ये गीत आज भी हर प्रेमी जोड़े की जुबां पर

दोस्तों आइए इस जवां सफर में हम आपको ले चल रहे हैं साल 1972 में। उस दौर में पर्दे पर एक ऐसे अभिनेता का जलवा था जिनकी एक मुस्कान पर लाखों दिल धड़क उठते थे। जी हाँ, सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जी की। और उनके साथ ही अपनी बेहतरीन अदाकारी और चुलबुले अंदाज के लिए मशहूर आशा पारेख जी। फिल्म आई थी समाधि। इस फिल्म का एक गीत ऐसा था दोस्तों जो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि मोहब्बत किए जाने वाले उस अटूट विश्वास का ऐलान था जो जिंदगी के आखिरी सफर तक साथ निभाने का दम भरता है। आर डी बर्मन साहब की थिरका देने वाली धुन और महान गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब के वो लाजवाब बोल, और जब बात इस गाने को अपनी आवाज देने की आई तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने इसमें वो कशिश भर दी कि आज आधी सदी से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी ये गाना जब जब रेडियो पर बजता है तो पैर अपने आप धड़कने लगते हैं और दिल झूम उठता है। कहते हैं ना कि जब तक इस सीने में सांस है तब तक सर्प तुम्हारा ही नाम है। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं फिल्म समाधि का वो ब्लॉकबस्टर हिट गीत।

सुरों के दीवाने और रेडियो के कदरदान श्रोताओं को आकाशवाणी डाल्टनगंज से आपके इस दोस्त सैकत का सादर प्रणाम। आप सुन रहे हैं पलामू संभाग का सबसे चहेता संगीतमय सफर गीत गुंजन। दोस्तों, साल 1973 में एक फिल्म आई थी जिसने संगीत और इंसानी रिश्तों के ताने बाने को पर्दे पर अमर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऋषिकेश मुखर्जी की मास्टरपीस फिल्म अभिमान की। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी तो इस फिल्म में लाजवाब थी ही, लेकिन इस फिल्म की असली जान था इसका संगीत, जिसे तैयार किया था दादा सचिन देव वर्मन। फिल्म के बाकी गाने जहाँ थोड़े गंभीर और शास्त्रीय रागों पर आधारित है, वहीं एक गाना ऐसा है जिसमें उत्तर भारत के लोक संगीत की इतनी खूबसूरत मिठास है कि सुनते ही मन झूम उठता है। दोस्तों, माटी की महक से सराबोर, मजरहू सुल्तानपुरी साहब के बोल और उस पर लता मंगेशकर और मनहर उदास जी की जुगलबंदी, तो चलिए दिल थाम कर बैठिए और सुनिए पूर्वी तान और ढोलक की थाप पर सजा फिल्म अभिमान का ये बेहद

0: दोस्तों आप सुन रहे थे पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं एक और कार्यक्रम जो आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है और उसका नाम है जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

दोस्तों आज का ये कार्यक्रम जो हर पलामू में प्रस्तुति स्वर रहेगा मेरा यानी कि आप सभी का रेडियो साथी सैकत चटर्जी का, जबकि इसके संयोजन करता है श्री संजीव कुमार लाल। आइए दोस्तों जो हर पलामू सुनते हुए सबसे पहले जानते हैं कार्यालय जाने वालों के लिए योग कितना जरूरी है और वो योग करने के लिए समय कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आज है विश्व योग दिवस और आज हम योग पर ही बात करेंगे। आइए दोस्तों सुनते हैं ये वार्ता योग शिक्षक राजीव शरण जी से।

अनुलोम विलोम का अर्थ होता है उलट पलट, संस्कृत का शब्द है, अर्थात प्रथम हम अनुलोम विलोम क्रिया में दाएं नाक को दाएं हाथ के अंगूठे से बंद कर देते हैं और बाएं से पूरे सामर्थ्य का प्रयोग करके श्वास को भीतर खींचते हैं। उसके बाद मध्यमा और अनामिका से बाएं नासिका को बंद कर लेते हैं और जो हमने श्वास भर के रखा है उसको दाएं से बाहर छोड़ देते हैं। पुनः दाएं से छोड़ा तो दाएं से ही श्वास भरेंगे और उसको मध्यमा अनामिका से बंद कर अंगूठे से बंद करके और बाएं से श्वास को छोड़ देंगे। ऐसे हम निरंतर बाएं से श्वास लेके दाएं से छोड़ते हैं और दाएं से श्वास लेके बाएं से छोड़ते हैं। जब एक नासिका का प्रयोग करते हैं श्वास छोड़ने में या लेने में तो उसके बगल वाला नासिका बंद रहती है। यदि हम दाएं से श्वास ले रहे हैं तो बाएं को बंद रखेंगे और बाएं से छोड़ रहे हैं तो दाएं को बंद रखेंगे। इस प्रकार से 3 मिनट का, आप ज्यादा नहीं तो 3 मिनट का आप ये अनुलोम विलोम अवश्य करें। इस अनुलोम विलोम के करने से जैसे शरीर के भीतर हमारे धमनियों में जो रक्त की कोशिकाएं हैं वो सारा ऑक्सीडेटेड होती हैं और वो फिर सारा हमारा शरीर निरोग होता है। शरीर के भीतर की चाहे वो हृदय की समस्या हो, किसी को गांठों की समस्या हो, किसी को स्किन प्रॉब्लम

हो, ये सारा अनुलोम विलोम से ठीक होता है। इसके पूर्व हमने जो कपालभाति प्राणायाम की बात की, उससे आपका डायबिटीज, आपका मोटापा, आपका कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, आपका किडनी में समस्या हो, आपका लीवर में समस्या हो, आपका पेनक्रियाज काम नहीं करता हो, आपका अमाशय ठीक नहीं हो, लार्ज बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, इन सब इंटरनल पार्ट जो भी हमारे शरीर के पेट के अंदर के जो आंतरिक अंग हैं वो सब दुरुस्त होते हैं, वो सब मजबूत होते हैं इस कपालभाति प्राणायाम से। तो ऐसे एक मिनट का भस्त्रिका, तीन तीन मिनट का कपालभाति अनुलोम विलोम करके, फिर भ्रामरी उद्गीत, भ्रामरी अर्थात होता है भ्रमर की तरह गुंजन करना। इस क्रिया को करने के लिए हम उसी आसन में, एक आसन में जैसे बैठे वैसे बैठे रहते हैं, और प्रथम तर्जनी, अंगूठे की बगल वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं, उस उंगली को हम दोनों भावों के मध्य, जहां हम माताएं बंदे बिंदी लगाती हैं या पुरुष भाई जहां तिलक लगाते हैं, उसी आसपास में दोनों हाथ की तर्जनी को, यानी अंगूठे की बगल वाली उंगली को रखते हैं। शेष मध्यमा, अनामिका और कनिष्का, ये तीन उंगलियों को हम आंखों पे हल्का सा रखते हैं और अपने अंगूठे से कान के ढक्कन को दबाते हैं। कान के ढक्कन को इतना दबाना है, कान के भीतर अंगूठे को नहीं डालना है, इसकी सावधानी को ध्यान देंगे। कान के ढक्कन को दबाना है और दबाना इतना है कि आपको कोई बाहरी आवाज सुनाई नहीं पड़े। फिर आपको भ्रमर की तरह, जैसे भ्रमर गुंजन करता है ना, ये भ्रमर की तरह गुंजन करना है। तो इस क्रिया को जब आप करेंगे तो आपको बाहरी कोई ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी, आपको सिर्फ अपनी ध्वनि सुनाई पड़ेगी, जिसके चलते आपके भीतर एक जो ओम का नाद होगा, उस नाद से आपको बहुत शांति मिलेगी। आपकी बीपी की समस्या, आपकी अनिद्रा की समस्या, आपके तनाव की समस्या, आपका चिड़चिड़ाहट, आपका अवसाद, आपका तनाव सारा ठीक होता है इस भ्रामरी प्राणायाम से। तो इसको आप अपने आवश्यकता अनुसार तीन बार, पांच बार, सात बार, जितना बार भी करना चाहेंगे समय के अनुसार, कम से कम पांच बार अवश्य करेंगे। पांच बार करने में आपको मुश्किल से एक मिनट का समय लगेगा, डेढ़ मिनट का समय लगेगा। फिर दोनों हाथ को घुटने पर रख के, और आप चाहे ओम का जाप कर लें, या अल्लाह का, या आमीन कह लें, या यीशु मसीह, जो आपके हो, आप तीन बार गहरा लंबा श्वास भरते हुए, जो ओम का जाप करना चाहें तो ओम एक ऐसी ध्वनि है, इसको एक अलौकिक ध्वनि कहते हैं। ओम इज अ डिवाइन वर्ड। ओम के चैटिंग से एक मस्तिष्क में ऐसी तरंगे उठती हैं कि सिर्फ ओम के उच्चारण करने से हमारे बहुत सारे रोग नियंत्रित हो जाते हैं, मन को बिल्कुल शांति मिलती है। तो ये जो कार्यालय कर्मी है वो कम से कम 10 मिनट का अभ्यास इसमें जरूर करें। उसके बाद अगर 1 से 2 मिनट का मौन कर लें, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान की क्रिया, और उस ध्यान की क्रिया में क्या ध्यान करना है, हे प्रभु, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं का संतान हूं, मुझसे ही राष्ट्र की पहचान है, यदि मैं बीमार रहूंगा तो ये मेरा राष्ट्र बीमार कहलाएगा, यदि मैं स्वस्थ रहूंगा तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। हाँ, हम इदम राष्ट्राय इदं नमः, इस भावना के साथ हम 10 मिनट का समय, यदि अपने व्यस्तम समय का, आप कार्यालय में भी, कार्यालय भी जाते हैं तो 10 मिनट का भी समय आप निकाल लेते हैं तो आपके लिए ये काफी उपयोगी सिद्ध होगा। फिर ये संभव है, आप कार्यालय में बैठे हैं, 8 घंटा लगातार काम कर रहे हैं, आपके काम करने की स्थिति क्या है, कोई आज कंप्यूटर पर बैठा हुआ है, एक टक आंख टिकाए हुए कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पर बैठने से जो समस्याएं आज आप झेलते हैं उनमें मुख्य है कंधों का दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, कमर में दर्द होना, आंखों में जलन, आंखों की समस्या होना, ये सामान्य कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं जो हमारी वर्किंग स्टाइल, जिस शैली में हम बैठ के, अब एक तो यदि आप कंप्यूटर पे काम करते हैं
तो कभी भी अपने कंप्यूटर को आंख के लेवल

से नीचे या आंख के लेवल के बहुत ऊपर नहीं करें, पैरेलल टू द आई बॉल। आप कार्यालय में ऐसी व्यवस्था कर लें कि आपका कंप्यूटर आपके आंख के बिल्कुल समानांतर हो, तो इससे आपकी समस्या कम होती है। समानांतर होने से क्या होता है, आप बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहती है, तो आप कंप्यूटर में बैठते हैं आगे झुक के बैठते हैं तो कंधों में दर्द होती है। तो कार्यस्थल पर भी, अब हम यहां आपको छोटी सी जानकारी देंगे कि जो यदि आप 10 मिनट घर में कर लिए, फिर कार्यस्थल पर भी यदि आप बैठे हैं और वहां भी आप चाहें तो बीच बीच में थोड़ा समय निकाल के इधर उधर का गप नहीं करके, अब जैसे किसी को कंधे में दर्द होने लगा तो क्या करेंगे, दोनों हाथ को, उंगलियों को दोनों कंधे पे टिका लेंगे, दोनों हाथ की उंगली को कंधे पे टिका लेंगे और सामने केहुनी को सटा लेंगे और केहुनी के माध्यम से बड़ा सा शून्य बनाएंगे, अर्थात गोल गोल घुमाना, एक साथ दोनों हाथ को कंधों पे टिका के केहुनी को क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाएंगे। थोड़ा 5 बार 10 बार क्लॉकवाइज घुमा लिया, 5 बार 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया, इससे आपको यदि कंधों में दर्द की समस्या है तो उसमें थोड़ी राहत हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, ये मुश्किल से इस क्रिया को करने में आपको आधा मिनट लगेगा, फिर क्या करेंगे, दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लेंगे और बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ से, यानी एक दूसरे को इंटरलॉक करके हाथ को पकड़ लेंगे और फिर श्वास भरते हुए पार्श्व भाग में खिंचाव करेंगे, दाएं हाथ को दाईं ओर खींचते हुए बाएं कंधे से पीछे से, बाएं कंधे के पीछे से बाएं हाथ को लेके दाईं ओर झुकाएंगे और फिर दाएं हाथ को कंधों के पीछे से लेके बाईं ओर झुकाएंगे पार्श्व भाग में खिंचाव के साथ। तो इससे भी आपके कंधों में दर्द में जो होता होगा वो थोड़ा उसमें राहत आ जाएगा। फिर अगर कंधों के दर्द में और भी नहीं हो रहा है और आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो फिर अपने दोनों हाथ को कंध सामने से कंधों के समानांतर खोल लेंगे, दोनों मुट्ठियों को बंद करके सामने कलाई को गोल गोल घुमा लेंगे, हाथ पूरा बिल्कुल केहुनी को सीधा रखेंगे, इससे भी आपके जो कंधों में दर्द है तो वो फिर ठीक हो जाएगा। तो मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आप ये 3 क्रिया अपने ऑफिस में भी कर लेंगे तो उससे आपको कंधों के दर्द में राहत मिल जाएगी। फिर यदि आपको गर्दन में भी थोड़ा दर्द हो रहा है तो 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा ब्रेक लिया 1 घंटे में तो थोड़ा कंधे वाला अभ्यास कर लिया, फिर 1 घंटे में 1 मिनट का ब्रेक लिया तो थोड़ा गर्दन वाला अभ्यास कर लेंगे। गर्दन का अभ्यास क्या होता है, श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं ओर देखना, यानी ठुड्डी को कंधों के समानांतर ले आएंगे, जब दाईं ओर घुमाएंगे तो ठुड्डी दाएं कंधे के पैरेलल आ जाएगी और जब श्वास लेते हुए बाईं ओर घुमाएंगे तो ये ठुड्डी हमारी बाएं कंधों के समानांतर आ जाएगी। ऐसे दाएं बाएं कंधे गर्दन को घुमा लेना, थोड़ा ऊपर नीचे गर्दन को कर लेना, थोड़ा गोल गोल गर्दन को घुमा लेना क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये अगर बीच बीच में थोड़ा हम करते रहेंगे तो उससे हमारा ये गर्दन की भी यदि समस्या है तो ठीक होती है। एक और गर्दन की अगर थोड़ी ज्यादा समस्या लग रही हो तो दोनों हाथ को इंटरलॉक कर लेंगे और सर के पीछे लगाएंगे, सर के पीछे लगा के हाथ से सर पे और सर से हाथों पे, दोनों हाथ को इंटरलॉक करके सर के पीछे लगा लिया और फिर हाथ से सर पे और सर से हाथों पे धक्का देते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इससे भी फिर दोनों हाथ को इंटरलॉक करके थोड़ा सामने से लगा लिया, फिर दाएं हाथ से दाएं कनपट्टी को दबा लिया, दाएं हाथ से दाएं कनपट्टी, कान के ठीक जहां हम चश्मा लगाते हैं उसके पास एक पट्टी होती है जिसको कनपट्टी कहते हैं, तो कान के पट्टी के पास दाएं हाथ को लगा के उससे ताकत लगाएंगे, एंटी फोर्स लगाएंगे, हाथ से सर पे धक्का देंगे और सर से हाथ पे धक्का देंगे, तो इससे भी हमको गर्दन का एक अभ्यास हो जाता है। एक चीज खास ध्यान रखेंगे, गर्दन हमारे सभी जोड़ों में सबसे मुख्य और नाजुक जोड़ है। ये हमारे शरीर के जो 2 मुख्य पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उनका जंक्चर पॉइंट है, उनको जोड़ता है, ये काफी नाजुक है, इसलिए इसके अभ्यास को पूरे सावधानी पूर्वक करेंगे, बहुत झटका से नहीं करेंगे, एकदम आराम आराम से करेंगे।

0: दोस्तों, पलामू ज़िला साइकिल एसोसिएशन के द्वारा शनिवार को एक साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया। यह आयोजन चुस्ती, फुर्ती और नशे को ना कहने के लिए संदेश देने के लिए आयोजित किया गया था। स्थानीय ब्राइटलैंड स्कूल से लेके पुलिस लाइन मैदान तक आयोजित इस दौड़ में बहुत सारे स्कूलों के विद्यार्थी एवं अन्य संस्थाओं के लोगों ने भाग लिया। महिला एवं पुरुष वर्ग के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत साइकिल चलाते हुए वो हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को विदा करते हुए पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत व एसपी कपिल चौधरी ने किया। इस अवसर पर ब्राइटलैंड स्कूल की निदेशक रागिनी सिंह, संत मरियम स्कूल के प्राचार्य अविनाश देव, साइकिल एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस ऑफिसर संजय रंजन सिंह, एसोसिएशन के महासचिव रथिन भद्रा समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन राजीव मुखर्जी ने किया। इस अवसर पर झारखंड के पलामू जिले से संबंध रखने वाले गोल्ड मेडलिस्ट साइक्लिस्ट सुतत्व रिजू को उनके विशेष प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पलामू के उपायुक्त ने कहा कि
1: आपने सही मायने में ऊर्जा लोगों के बीच भर दी है और अब सही में सब लोग हमारी तरफ एक वायदे की अपेक्षा रखते हैं। तो इस सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित एसपी साहब, सभी पदाधिकारीगण, साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, स्कूल के टीचर्स, बच्चे, प्रेस एवं मीडिया के साथी, सभी को आज की सुबह का हार्दिक अभिनंदन, जोहार। और इससे बेहतरीन क्या हो सकता है कि आज की सुबह हम लोगों ने न केवल साइकिलिंग की बल्कि समाज में एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया है। और जहां तक मैं थोड़ा सा बात को और आगे ले जाऊंगा ताकि हमारे बच्चों को समझ में आए, हम लोग ज्यादा समझ के कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग का वो जो समय है वो चला गया। भारत एक ऐसा देश है, आज के समय में पूरे विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसकी सबसे ज्यादा आबादी युवा वर्ग में है। उसको इंग्लिश में हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। हम लोग जब यूपीएससी की पढ़ाई करते थे तब भी इस चीज को बार बार पढ़ते थे। हमारे देश में जब इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसमें भी इसकी चर्चा होती है। और लेकिन हम इसको सही मायने में समझ नहीं पाए कभी भी कि क्या ये हमारे ऊपर एक बर्डन है, एक बोझ है, या क्या ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं ये मानता हूं कि ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। जो प्रगतिशील है, जो विकसित होना चाहता है, लेकिन साथ में कैच ये भी है कि ये युवा वर्ग बहुत सी समस्याओं से ग्रसित है, बहुत सारी बाधाएं हैं उनके राह में। हम लोग जब युवा वर्ग में थे, जब हम लोग बच्चे थे, स्कूल में थे, अगर किसी चीज की टेंशन होती थी तो हम लोग एक दूसरे को शेयर करते थे। हम कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते थे, शाम में कहीं घूमने जाते थे। मैं जैसे क्रिकेट खेलता था, और भी स्पोर्ट्स खेलता था, उससे लोगों के बीच में इंट्रैक्शन होता था, तो मेरा जो स्ट्रेस है वो उस तरफ, उस डायरेक्शन में निकल जाता था और वो पॉजिटिवली आगे उभर के आता था। और जीवन इतना आसान नहीं होता है, संघर्ष सभी को करना है। आज हम लोग जिस पोजीशन पे हैं, मैं हूँ, एसपी साहब हैं, आईएएस प्रोबेशनर हैं, सभी पदाधिकारी हैं, एक बहुत ही कठिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम देके यहाँ पे आते हैं, तो अप्स एंड डाउन हमेशा रहते हैं। लेकिन जब भी ऐसी घड़ी आई, हम लोगों ने अपने आप को संभाला, मजबूत किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास में स्ट्रेस को दूर करने के लिए अच्छे माध्यम थे। हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, हम लोग लोगों से इंटरेक्शन रखते हैं, अपनी चीज़ों को लोगों से शेयर करते हैं। आज के ज़माने में हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है आइसोलेशन। हम लोग ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। दूसरा, मोबाइल फ़ोन स्ट्रेस है, मोबाइल फ़ोन में रील चला लेंगे, उससे टाइम भी कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद अगली स्टेज, जब ये डिप्रेशन की ओर एक बच्चा बढ़ने लगता है, तब अगली स्टेज आती है नशा, जो आपके दिमाग को सुन्न कर देगा और आपको रिलैक्स फील होगा उसमें। और ये जो फेक फीलिंग है रिलैक्सेशन की, ये कहीं ना कहीं आपको कैप्चर कर लेती है, फिर वो आगे से आगे आपको उस चीज की एडिक्शन की ओर लेके जाती है। और एक बार अगर नार्कोटिक्स का एडिक्शन हो गया, यानी कि ड्रग्स का, जैसे बता रहे थे गांजा, हेरोइन, इस तरह के केमिकल ड्रग्स का, तो ये साइकोलॉजिकली आपके दिमाग को बांध देगा और आपको विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे कि एक समय के बाद अगर आप उस नशे का सेवन नहीं करेंगे तो आप नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। और हमारा देश वाकई में, अगर मैं आपको सही बताऊं, इस पे मैंने रिसर्च भी किया, हमारे राज्य का भी रिसर्च किया, डिस्ट्रिक्ट का भी, नशा मुक्ति केंद्र हमारे डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं, राज्य के अंदर भी इसकी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो जैसा मैं कहता हूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें उसकी तरफ बढ़ना है। और क्या करना है, केवल ये सोचना है कि हमें एज पेरेंट्स और एज अवेयर सिटीजन्स हमें अगली पीढ़ी को इससे रोकना है। और इसको रोकने के लिए अपने आप को सही चीजों से जोड़ने की जरूरत है, सामाजिक कार्यों से जोड़ने की जरूरत है, वॉलंटियरी काम कहीं पे भी करिए, कहीं पे भी साफ सफाई कर लीजिए, कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ के साथ हाथ में हाथ मिला के चलिए, कहीं पे भी नशा मुक्ति अभियान हम लोग करते हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, कहीं पे भी प्लांटेशन ड्राइव चल रही है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, कहीं पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत सारे हमारे यहाँ पे ग्राउंड्स है, पार्क्स है, उसमें जाइए और उसको यूटिलाइज कीजिए। आई कैन टेल यू विद गारंटी कि अगर आप पॉजिटिव चीज़ों से अपने आप को जोड़ेंगे तो कभी नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे मैं वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपने परिवार में किसी नशे की चपेट में किसी युवक को, अपने परिवार के साथी को देखा है, वही इस चीज को समझ सकता है। इसलिए मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या साइकोलॉजी है, क्या मैकेनिज्म है। बट आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने बच्चों में। एक बहुत ही अद्भुत टैलेंट का अभी उनको हमने स्टेज पे सम्मानित किया।
0: इस अवसर पर SP कपिल चौधरी ने भी अपनी बातें रखी।
2: मौके पर हमारे बीच उपस्थित मंचासीन उपायुक्त महोदय, IAS प्रोबेशनर ऋत्विक, DDC साहब, हमारे बीच पलामू डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय सर, बाकी जिले के सभी वरीय पदाधिकारीगण, सभी स्कूल से आए हुए प्रिंसिपल और बाकी सब टीचर्स, सारे स्कूल के बच्चे, हमारे बीच उपस्थित मीडिया बंधु, आज सभी को जोहार। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम था पहले एक साइकिलिंग इवेंट की तरह से आयोजित होना था। उपायुक्त महोदय के द्वारा इसमें एक बहुत अच्छी पहल की गई कि इसमें जो नशे के विरुद्ध अभियान है इसको ऐड किया गया। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस पूरा महीना हम नशे के विरुद्ध अभियान को चलाया जा रहा है और पूरे राज्य में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि नशा कितना खराब है और हमारे युवकों को इस नशे से दूर रहना चाहिए। इसके लिए माननीय CM सर के साथ साथ पूरा राज्य सरकार अपने हर स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर ये अभियान चला रही है और उसी का अभियान को चलाने में आज इस साइकिलिंग एसोसिएशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को एक तरह से सपोर्ट किया गया। इसके लिए मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन का भी धन्यवाद देता हूं। आज का जो अभियान है इससे दो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। पहला, साइकिलिंग के माध्यम से एक मैसेज है कि आप साइकिलिंग करके अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। साइकिलिंग आपके हेल्थ के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए, दोनों के लिए लाभदायक है। जितना आप डेली लाइफ में साइकिल को यूज करेंगे, इससे आपका समाज, इससे आपका एनवायरनमेंट और इससे आपकी हेल्थ, सभी चीजें अच्छी रहेंगी। तो आप सभी को यही मेरा मैसेज है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने और अपने आसपास साइकिल का उपयोग करें। जो डे टू डे बेसिस पे अपना छोटा काम रहता है उसको जाने के लिए, अगर घर में भी अगर साइकिल का इस्तेमाल किसी के द्वारा किया जाता है तो उसको एक प्रेरणा की तरह देखने की जरूरत है, ना कि इसको डिमोटिवेट होने की जरूरत है। तो डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन से मेरा अनुरोध रहेगा कि साइकिलिंग को डे टू डे बेसिस में, नॉर्मल जो काम में आने वाली, जब हम व्हीकल यूज करते हैं तो बाइक की जगह हम साइकिल यूज करें, इसकी उपयोगिता बढ़नी चाहिए। सेकेंड, जो नशे के खिलाफ अभियान है, जैसा बताया कि नशा अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। नशा ना केवल अपने

0: पर्सनल लाइफ के लिए बल्कि समाज के लिए भी खतरा है। जितना भी अपराधी हैं उसमें से काफी अधिक संख्या में अपराध नशे की हालत में होते हैं। तो नशा करने से व्यक्ति ना केवल अपने करियर का लॉस करता है, ना केवल अपने परिवार को हानि पहुंचाता है, बल्कि पूरे समाज को भी हानि पहुंचाता है। तो हम सभी, समाज के सभी व्यक्ति, सभी बच्चे मिलकर ये संकल्प लें कि हम नशे से दूर रहेंगे, और नशा दूर करने में समाज का जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। ना हम खुद नशा करेंगे, ना हम दूसरे को नशा करने देंगे। इसके लिए यदि आपके आसपास, जैसे कभी स्कूल के आसपास यदि कोई नशे की दुकान है, यहाँ कहीं गांजे की बिक्री होती है या कहीं तंबाकू की बिक्री होती है, उन सभी की सूचना पुलिस को दें, या आप अपने गोपनीय तरीके से जिसको भी प्रशासन को सूचना देना चाहते हैं उसकी सूचना दें। और हम पुलिस प्रशासन की ओर से आपको ये आश्वस्त कराते हैं कि हम अपना पूरा 100% प्रयास करेंगे कि इस तरह का जो नशीले पदार्थों का खरीद बिक्री है उस पर हम पूरी तरह से रोक लगाने में आपका सहयोग करेंगे। आज फिर से आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे बीच उपस्थित हुए, स्पेशली बच्चे जो सुबह सुबह 6 बजे से उठकर अभी यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट साइक्लिंग एसोसिएशन का, मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
1: दोस्तों, समापन समारोह के दौरान पुरस्कार वितरण के पहले ब्राइटलैंड स्कूल की 2 छात्राओं ने नशा के खिलाफ अभियान के तहत अपनी बातों को रखा।
2: के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि एक ऐसे जन आंदोलन का हिस्सा बने हैं जिसका उद्देश्य है नशा मुक्त भारत का निर्माण। नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र को कमजोर कर देता है। यह युवाओं के सपनों का पतन कर देता है, उनकी प्रतिभा को नष्ट कर देता है और उन्हें अंधकार की ओर धकेल देता है। लेकिन आज का युवा जागरूक है, आज का युवा संकल्प ले चुका है कि वह नशे को नहीं बल्कि शिक्षा, खेल, योग और संस्कारों को अपनाएगा। आज इस साइक्लोथॉन का प्रत्येक चक्र, प्रत्येक पैडल और प्रत्येक कदम समाज को यह संदेश दे रहा है कि हमारी मंजिल सफलता है, नशा नहीं। हमारी पहचान संस्कार है, व्यसन नहीं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जो युवा खेल के मैदान में पसीना बहाता है, कभी नशे के दलदल में नहीं फंसता। इसलिए हमें अपने जीवन में खेल, योग, अनुशासन और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। आज मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करती हूँ कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें, क्योंकि गरल पीकर जो जीते हैं वो केवल शव कहलाते हैं। स्मरण रहे, गरल पीकर जो जीते हैं वो केवल शव कहलाते हैं। जो व्यसन से युद्ध जीत लें वही पुरुषार्थी कहलाते हैं। तलवारों से यह राष्ट्र नहीं, चरित्रों से होता है। और नशे में डूबा युवक राष्ट्र का नहीं, विनाश का संतान होता है, सिर्फ और सिर्फ विनाश का संतान होता है। मैं माननीय उपायुक्त महोदय एवं सभी उपस्थित अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस अभियान को नई ऊर्जा प्रदान की है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हम कभी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे, न ही किसी को इसके लिए प्रेरित करेंगे। हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देंगे। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगी, यदि युवा नशे से दूर रहेगा तो देश विकास की ओर बढ़ेगा, यदि युवा स्वस्थ रहेगा तो भारत सशक्त।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू। आइए दोस्तों, अब आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर सुनते हैं आप सबके पसंदीदा एक और कार्यक्रम जिसका नाम है फिल्म संगीत। दोस्तों, आज इस सुनहरे दौर की याद के सफर में मैं रहूंगा आपके साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट सैकत चटर्जी। दोस्तों, आज का हमारा ये सफर उस दौर की तरफ मुड़ रहा है जहां जज्बात सिर्फ शब्दों में बयां नहीं होते थे बल्कि सुरों में घुलकर सीधे रूह में उतर जाते थे। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 1961 में आई फिल्म छाया की, एक ऐसे नगमे की जिसने मोहब्बत की परिभाषा को एक

अलग ही गहराई दी। जी हाँ दोस्तों, इस गाने के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि ये जो गाना हम सुनाने जा रहे हैं, यानी कि इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, इस धुन को महान संगीतकार सलील चौधरी जी ने तैयार की थी और ये धुन मशहूर पश्चिमी संगीतकार मोजार्ट की 14th सिम्फोनी से प्रेरित थी। सलील दा ने वेस्टर्न क्लासिकल को भारतीय संगीत के सांचे में इस कदर ढाला कि ये गाना आज भी हमारे दिलों को छू जाता है। जब इस धुन पर राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे शब्द सजे तो यह महज एक गाना नहीं बल्कि मोहब्बत का एक खूबसूरत फलसफा बन गया, जहां प्रेमी अपने महबूबा से कहता है कि मुझसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत न कर, क्योंकि मेरी मंजिल का कोई ठिकाना नहीं, मैं तो एक आवारा बादल की तरह हूं।

दोस्तों जब बात 80 के दशक के रोमांस की हो तो फिल्म लव स्टोरी और कुमार गौरव विजेता पंडित की वो मासूम जोड़ी आंखों के सामने तैर जाती है ना। आज का हमारा गाना इसी फिल्म से है जो प्यार की मीठी तकरार और गहरे एहसास को बयां करता है। जी हाँ दोस्तों, अमित कुमार और लता मंगेशकर की जादुई आवाजों में सजा कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा। आनंद बख्शी साहब के लिखे इस गाने को आर डी बर्मन यानी पंचम दा ने अपनी बेहतरीन संगीत से अमर बना दिया था। तो चलिए दिल की धड़कनों को थोड़ा और बढ़ाते हैं और सुनते हैं 1981 का यह एवर ग्रीन रोमांटिक ट्रैक।

दोस्तों, जब भी 70 के दशक के सुपरहिट गीतों की बात आती है तो फिल्म कारवां का नाम आ ही जाता है। जितेंद्र का वो मस्त मौला अंदाज, आशा पारेख की खूबसूरती और आरडी बर्मन यानी पंचमदा का जादुई म्यूजिक। ओहो, आज का हमारा ये गाना जो आप सुनाने जा रहे हैं इसी फिल्म से है, यानी कि कारवां फिल्म से, जो वादों इरादों और सच्ची मोहब्बत की बात करता है। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की सदाबहार आवाज़ों में सजा आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की थाप आज भी पैर थिड़कने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए दोस्तों, यादों की इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इस एवर ग्रीन गीत को।

दोस्तों कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहले ही लाइन से सीधे दिल में उतर जाते हैं। आज का हमारा ये ब्लैक एंड व्हाइट नगमा भी कुछ ऐसा ही है। शम्मी कपूर साहब का वो बेमिसाल रोमांस, माला सिन्हा की नज़ाकत और संगीतकार शंकर जयकिशन की अमर धुन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की जादुई करिश्माई आवाज़ों से सजे इस मास्टर पीस की, जिसमें हसरत जयपुरी साहब के लिखे गीत में मोहब्बत का जो करार है वो आज के दौर में मिलना मुश्किल है। तो चलिए अपने दिल के दरवाजे को खोलिए दोस्तों और खो जाइए 1962 की इस एवरग्रीन रोमांटिक सफर में।

मेरे फिल्म संगीत के दीवाने दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैकत चटर्जी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रस्तुत एवरग्रीन क्लासिक फिल्मी सॉन्ग। दोस्तों, जब भी भारतीय सिनेमा में रोमांस और बारिश का जिक्र होता है तो जहन में सबसे पहली तस्वीर कौन सी आती है? जी हाँ, कुछ कुछ लोग सही पकड़ रहे हैं, एक काली छतरी, रिमझिम बरसती बारिश और राज कपूर के साथ नरगिस की जोड़ी। साल 1955 में आई थी फिल्म श्री 420 और इसके गीत महज एक गाना नहीं बल्कि रोमांस की एक अमर गाथा है। मन्ना और लता मंगेशकर की सदाबहार आवाजों में सजा प्यार हुआ इकरार हुआ। जी हाँ, शैलेंद्र साहब के लिखे इन जादुई शब्दों को संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी ने एक ऐसी धुन में पिरोया जो आज 70 साल बाद भी उतनी ही ताज़ा और खूबसूरत लगती है। तो चलिए, थामिए अपने हम सफर का हाथ और भींग जाइए यादों की सुरीली बारिश में, सुनिए इस लाजवाब गीत।

1983 में एक फिल्म आई थी वो सात दिन। इसमें अनिल कपूर ने बतौर लीड एक्टर कदम रखा था फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म में अनिल कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे और नसरुद्दीन शाह की बेहतरीन अदाकारी तो थी ही, लेकिन इसका एक गाना हर आशिक की कमजोरी बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्यार किया नहीं जाता हो जाता है का। शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ों में सजा यह गाना दिल के उस कोने को छूता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्ची मोहब्बत रहती है। आनंद बख्शी साहब के लिखे इन जज्बाती शब्दों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बहुत ही सुरीले संगीत से सजाया है। तो चलिए दिल को थोड़ा सा भावुक कर लेते हैं और सुनते हैं 80 के दशक का ये बेहद खूबसूरत नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जब दिल के किसी कोने में किसी की याद हो तो जेहन में बस एक ही गाना गूंजता है, साल 1965 की ब्लॉकबास्टर फिल्म जब जब फूल खिले का वो जादुई नगमा, जिसने कश्मीर की हसीन वादियों में रोमांस का एक नया रंग दिया था। शशि कपूर का वो मासूम भोलापन, नंदा की वो खूबसूरत अदाकारी और सुरों की मलिका लता मंगेशकर की मखमली आवाज में सजा वो गीत, आनंद बख्शी की कलम से निकले इसके रुमानी लफ्जों को संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने एक ऐसी धुन दी थी जो आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, सुनते हैं इस मौसम में उस एवरग्रीन क्लासिक फिल्मी गीत को।

0: दोस्तों ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर आप आनंद ले रहे थे फिल्म गीतों का। अब ये सफर ही समाप्त होता है लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम जुड़ने जा रहे हैं अपने दिल्ली मुंबई और रांची केंद्रों से, जहां से हम बारी बारी से आपको सुनाएंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार और विविध भारती से प्रस्तुत कई कार्यक्रमों को। कृपया बने रहें हमारे साथ और कुछ पल इंतजार करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में

0: योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: अमेरिका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
2: सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
0: इन पोतों का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सन्मार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्त चित्र, लघुकथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गईं। आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माही में भी मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 12th International Day of Yoga is being celebrated across India and around the world today with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road, where thousands of people joined him in performing the morning exercises. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, June 21st, which marks the longest day in some parts of the earth, has now become largest community celebration day because of yoga.
1: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
3: The Prime Minister said yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group. It is an expression of human spirit. Since the inception of the International Day of Yoga in 2015, Mr. Modi has led celebrations from various locations, including New Delhi, Chandigarh, Lucknow, Mysuru, New York, Srinagar and Visakhapatnam. President Draupadi Murmu was chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event was held at Garrison Ground in Sadar. Meanwhile, several union ministers, organizations and eminent personalities are participating in yoga sessions across the national capital region to celebrate the 12th annual International Day of Yoga. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda attended the Yoga Day celebrations at Shantipath. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar participated in a yoga session at Nehru Park in New Delhi. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya also participated in the International Day of Yoga celebrations at Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. Actor Akshay Kumar joined the Sports Minister in the yoga session. Special yoga programs were organized across Uttar Pradesh. Governor Anandibhen Patel performed yoga at Raj Bhavan. Chief Minister Yogi Adityanath led the yoga session at Jhansi Fort. Prime Minister Narendra Modi has dedicated three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrey in Kolkata today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination will be conducted today. It will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The examination will be held in the afternoon from 2 to 5:15 p.m. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. Ahead of the examination, the National Testing Agency, NTA, conducted nationwide mock drill yesterday to verify all systems, jammers, CCTV, frisking staff and biometrics. The NTA said it is fully prepared for smooth, fair and transparent conduct of the examination. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today urged students to take the exam without fear and wish them the very best. The Education Minister also assured that all necessary arrangements have been made for the smooth conduct of the examination. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. IMD also predicted heavy to very heavy rainfall at isolated places over Assam and Meghalaya till Thursday. The Met Department noted that the northeastern states are expected to receive fairly widespread to widespread rainfall till 26th of this month. India A takes on Sri Lanka A in the Tri-Series cricket final being played in Dambulla today. Smarting from an ill-tempered defeat in the previous match, India A will look to settle scores with Sri Lanka A in the final with teenage sensation Vaibhav Suryavanshi in the spotlight once again. And that is the end of this news bulletin.
4: मनमोहिनी
0: अच्छा मनमोहिनी
4: उसके जो अल्फाज चल रहे ना इतने फास्ट है उनको मैच करना डांस में लाइव स्टेज में फिल्मों में क्या है कट कट करके कर सकते हो आप हर एक शब्द को लेके फिल्म कर सकते हो लेकिन स्टेज पर कैसे हर एक शब्द को वो और वो इतने फटाफट बोल रहे हैं और वो लड़की का मतलब एक औरत क्या होती है एक लड़की क्या होती है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं हीरोइन का डिस्क्रिप्शन है पहला शॉट है सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू यू नो कोरियोग्राफ ऑन स्टेज

मोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो फिर गदा भर से झर झर झर झर झर झर झर झर नाच चमक चमक वो बिजली दीवानी है बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई तुझ में है कुदरत सारी खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई

0: गाना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, लाइक ब्रेथलेस ऑल्सो भी जो गाना है वो बहुत डिफिकल्ट है. और कभी कभी जो ऐसे गाने होते हैं जिनके यू नो म्यूजिक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो बहुत वेरिएशंस होते हैं.
1: मसलन
0: जैसे इन्हीं लोगों ने तो मैं चाह रहा था कि इन्हीं लोगों में मैं कथक ना करूं, मैं सोचा कि ये गाने पे मैं जैज करूं विदेशी स्टाइल, तो बॉब फॉसी वाला स्टाइल. तो मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि हमारा चैलेंज था कि एक पुराने गाने को लेकर आप नए अंदाज में इसको पेश करोगे, फिरंगी अंदाज में पेश करोगे इसको. तो अभी इन्हीं लोगों ने वो गाना सेट है सब लोगों के दिमाग में, किस तरीके से वो किया गया है उसको अभी जैज बॉब फॉसी हैट टेलकोट वैसा वाला चमकीला वाला कॉस्ट्यूम पहना के वो कराना है. तो जो इसके बीट थे ठक ठक ठक ठक, हर एक बीट होता है तो वो पकड़ना पड़ता है. तबला है उसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं पकड़े तो फिर वो आपकी कमजोरी है कि आपको समझ नहीं है एज अ कोरियोग्राफर कि वो आपने छोड़ दिया. आप सब कुछ नहीं पकड़ सकते हैं हर बीट को, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया वो एक प्रोमिनेंट बीट को, तो ये आपकी कोरियोग्राफिक गलती है. तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप ऐसे गाने को लेते हो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही कमाल का हो, एंड देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल.

0: जो आपने बात की कि संजय लीला बंसाली की फिल्म का ये गाना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर आपने संजय लीला बंसाली जैसे डिफिकल्ट म्यूजिक डायरेक्टर की फिल्म भी की है, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैं रामलीला की बात कर रहा हूँ।
1: देखिए मेरा उसमें, मैं सही में कह रहा हूँ कि जब आप दूसरों का पता नहीं लेकिन मैं खुद का जरूर कहूंगा कि जब आप संजय लीला बंसाली सर के साथ काम कर रहे हैं, यू हैव टू रियलाइज कि वो एक कमाल के टेक्नीशियन है और वो खुद एक कोरियोग्राफर है। उनको डांस की जो समझ है ना वो हमसे भी ज्यादा है, सो यू लर्न मोर फ्रॉम हिम। वो बोलेंगे कि आपने ये छोड़ दिया, ये तो है, ही इज दैट गुड, सो दैट इज वन। दूसरी बात ये कि ही इज नॉट जस्ट टेक्निकल, उनका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ और ही लेवल का है। थर्ड लेवल, वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो यू कैन प्लीज हिम वेरी इजिली, और उनका बहुत क्लियर विजन है। अगर किसी का विजन क्लियर है तो उनका है। मोस्टली जब गाने शूट होते हैं तो डायरेक्टर रिलैक्स करता है, ले लो कोरियोग्राफर काम करो तुम लोग, और हम 5-6 दिन के लिए लगातार काम करते हैं। डायरेक्टर को भी बोलते हैं आपको ये अच्छा लगा सेट, ये शॉट अच्छा लगा। वो तो कभी कभी कोरियोग्राफी भी दिखते नहीं है, उनको पता है, वो ट्रस्ट भेज जाता है कि हाँ कमाल का ही काम करेंगे। लेकिन संजय लीला बंसाली जी नहीं, उनको हर एक शॉट का डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन चाहिए, फिर वो उस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, फिर वो सुझाव देंगे, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। जो डिस्कशन होती है बिफोर वी इवन टीच द आर्टिस्ट वो 5 दिन की होती है, सो इट इज सो डिटेल्ड। मैं बताऊं रामलीला के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं गया था सेट पे शूट करने के लिए तब कॉस्ट्यूम ब्लैक वाला था, ब्लैक एंड रेड। हमने 2 दिन शूट कर दिया, फिर 2 बजे रात को संजय सर का मैसेज आया, आर यू अवेक? तो मैंने पढ़ लिया, सर हाँ सर मैं, सर ओके कॉल मी। सो मैंने कॉल किया, सर देखिए मुझे गाना मजा नहीं आ रहा। सर तो मुझे डर गया कि मेरा काम पसंद नहीं है, कुछ चेंज करें। सर नहीं नहीं तुम्हारा काम ठीक है, मुझे कॉस्ट्यूम में मज़ा नहीं आ रहा, दीपिका वो नहीं लग रही है जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा विजन था वो नहीं आ रहा, तो हम फिर से शूट करेंगे कल। ऐसे कॉस्ट्यूम रातों रात हो जाएगा, मैं आपको अभी भेजता हूँ, आप बोलो एज अ कोरियोग्राफर क्या ये कॉस्ट्यूम ज़्यादा बेटर लगेगा। तो रातों रात दीपिका की जो कॉस्ट्यूम है वो हम लोग शॉट पे, उसने वाइट कपड़ा चढ़ाया है उसी ब्लाउज पर, काले ब्लाउज पर, और उसने मुझे फोटोग्राफ भेजा कि डू यू थिंक व्हाइट विल लुक बेटर, एंड फॉर मी व्हाइट इज माय फेवरेट कलर। आई सेड सर दिस विल लुक फिनोमिनल, बिकॉज ब्लैक में वो थोड़ा यू नो इट इज लुकिंग लाइक, इट वाज लाइक अ वेरी राजस्थानी कालबेलिया काइंड ऑफ अ कॉस्ट्यूम, बट ये व्हाइट में एक अलग ही एक यू नो एक
0: क्रेज है।
1: एंड प्लस सी वो ही थिंक्स मेटाफोरिकली, अच्छा ये सॉन्ग अंग लगा दे इस सुहागरात वाला सॉन्ग, वो अभी भी शादी करके आए हैं, दोनों के परिवार ने दोनों के भाइयों को मार डाला है, दोनों शोक मना रहे हैं, और इस माहौल में दीपिका को यू नो रणवीर को रिझाना है और इसको बोलना है कि सब भूल जाओ और हम लोग अपनी दुनिया बनाते हैं। सो इट्स ऑल्सो द सुहागरात वाला सीन, एंड येट इट हैज बी डन वेरी टेस्टफुली। फॉर हिम इट वॉज लाइक नॉट ब्लैक, ब्लैक इज ऑलरेडी फर्स्ट टाइम एक लड़की, सो व्हाइट, इट शुड बी व्हाइट, उनके दिमाग में वो चलने लगा कि विजुअल, सो ही थिंक्स, उनके हर सीन में ना एक कलर स्कीम होता है। तो वी शॉट द सॉन्ग ऑल ओवर अगेन, 2 डेज वापस शूट किया हम लोग ने। तो एक अलग ही लेवल का एक यू नो कमिटमेंट है और डिटेलिंग होता है, और एक इंसान सामने से इतना इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो हमें भी बहुत रुचि होती है कि यार कुछ अच्छा ही बन रहा है।
0: जाहिर है, हाँ, जहां आपकी काम की सराहना भी हो रही है,
1: हाँ,
0: और आपको समझ में आ रहा है कि अगला बंदा भी आपके साथ उतना ही डूब
1: चुका है, तो मजा आता है काम करने का। और हम भूल जाते हैं कि अभी टाइम हो चुका है, कैसे वक्त निकलता है पता ही नहीं चलता हमें, मुझे पता ही नहीं चला कब। We'll be right back.

0: सेकेंडली मैं एक और मजे की बात करूंगा, यू नो एक चलने का शॉट है, वो लेके धूप लगाती है ओके तन्वी के सर पे, और फिर उसको चल के वापस आना है और बिस्तर पे लेटना है। तो मैंने दिखाया था कि ऐसे जाके ऐसे बैठना है, तो दीपिका ने समझ लिया, लेकिन उनका जो घाघरा था वो सही रूप में बिस्तर पर नहीं आ रहा था। अब हम दीपिका के चेहरे और एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मैंने वहां पे फोकस ही नहीं की कि घाघरा किस तरीके से यू नो बिस्तर पर फैलेगा। उन्होंने एटलीस्ट 10 कट लिए, क्योंकि दीपिका ने सभी एक्सप्रेशन लिया लेकिन वो घाघरा बराबर नहीं आया बेड पे। ही इज दैट डिटेल। फिर वो दूसरा शॉट जो धनुची है उससे जो धुआं निकलता है वो सीजी में नहीं किया है, वो एक्चुअली धुआं निकला है। तो देयर वाज अ असिस्टेंट ओनली फॉर द धनुची कि तुम्हें धनुची, और वो सबसे घबरा हुआ इंसान था क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि धनुची अगर वो नहीं है और उसका जो धुआं नहीं निकला तो उसको मार पड़ती थी। तो वो सबसे डरा हुआ इंसान हमारे सेट पे वही वाला था कि अगर वो धुआं नहीं निकला धनुची से, क्योंकि वो शॉट था कि वो अपने बालों को धनुची को अंदर रखती है, वो धूप अपने फेस पे लेती है और वो गा रही है और वो फेस से फिर वो अपना बालों को यू नो सरकाती है और वहीं से बालों से निकलता हुआ उसको वो धुआं चाहिए था। तो वो शॉट वो भी वो इस तरीके से ताकि वो जले नहीं, और वो कोयला है और मेकअप
1: भी नहीं, उसमें से चिंगारी निकल जाए
0: मेकअप क्रैक भी नहीं होना चाहिए। इट वाज सच अ ट्रिकी शॉट। तो बहुत ही वाज लाइक दैट डिटेल कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो सीजी करवाना नहीं है, मैं लेके रहूंगा। और

0: देखिए कितनी बारीक बातें आपने बताई हैं, और हालांकि कोरियोग्राफी सुनने की चीज नहीं, देखने की चीज है।
1: करेक्ट।
0: लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं, हमारे जितने श्रोता हैं वो शायद इसे देख पा रहे होंगे। बहरहाल अब हम एक खास सवाल आपसे करेंगे। शुरुआत में जब आपसे बातचीत शुरू हुई तो आपने कहा कि, जैसे मैंने कहा था कि अभी बहुत से कई आसमान आपको छूने हैं,
1: हाँ।
0: आपने भी कहा कई मकाम है।
1: हाँ।
0: क्या क्या सोच रखा है आपने?
1: खाना हाथ में और खाना हलक में बहुत फर्क है। तो मैं सोचता हूँ कि कभी किसी को बताओ मत, क्योंकि फिर आप पे बहुत प्रेशर हो जाता है कि मैंने सबको बताया, अभी तो करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो सहज रूप में हो जाए। जब हो जाएगा तो हम उसको सामने रख देंगे। कोई प्रेशर नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए कि इसने ऐसा बोला था, अब क्या हुआ, वो दबाव में नहीं आकर करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने जो अरमा है वो अपने पास ही रखता हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अरमा है। मैं चाहता हूँ कि अपने आप पर, अपने काम पर, अपने आप पर भी, अपने व्यक्तित्व पर भी काम करूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत, मेरा पूरा एक लिस्ट है फ़ोन पे कि इस पर। ये साल 2020 में मेरा कोई लिस्ट, मेरा एक बड़ा लिस्ट था। 2021 में मैंने ऑलरेडी मेरा एक लिस्ट बनाया कि किस किस पर मुझे काम करना है, मेरे निजी लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे सोशल लाइफ में, किस तरीके से मुझे काम करना है, कैसे मैं अपने आप को उठकर लेके आना हूँ। बहुत सारे चीज़ें हैं।
0: अब दो सवाल और हैं।
1: हाँ।
0: एक तो बहुत ही इजी है।
1: हाँ।
0: दूसरा बड़ा कठिन है। इजी सवाल यह है कि एक्टिंग वेक्टिंग करने का इरादा है आपका?
1: हाँ। हाँ, लेकिन वो हीरो वाला नहीं है
0: मेरा। अब तो खैर आपको कैरेक्टर रोल ही करने
1: पड़ेंगे। मुझे कैरेक्टर रोल ही पसंद है, और मुझे इंटेंस और जो मीनिंगफुल कैरेक्टर्स हैं, जब मैं पंकज त्रिपाठी को देखता हूँ, नवाजुद्दीन को देखता हूँ, या ऐसे कई किरदार हैं जो वो प्ले करते हैं जो हीरो के नहीं है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट और इतना बहुत ही सटल परफॉर्मेंस देते हैं, और वो दिल चुरा लेते हैं। मेन वन मुझे ज्यादा पसंद है कि मैं सामने ना रहूं लेकिन साइड में रहकर भी मैं किसी का दिल जीत लूं, वो ज्यादा मुझे पावरफुल लगता है। तो आई फील इट्स नाइस। आई मीन अगर मेन कैरेक्टर मिल जाए तो ग्रेट, नॉट एस्पेशली इफ इट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे ना, मैं भी थोड़ा चूजी हूँ, क्योंकि मुझे अब मेरी फिल्में जो मैं कर रहा हूँ, या मैं एक्टिंग की जो मुझे जो मैं अपने अरमान पूरा करना चाहता हूँ, इट्स नॉट बिकॉज मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, नहीं, मैं फ्री में भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर रोल इतना अच्छा हो या जो मेरे दिल के करीब हो, और रोल ऐसा क्यों अच्छा लगेगा मुझे अगर वो ब्लैक एंड वाइट ना हो। मुझे ब्लैक एंड वाइट रोल्स मुझे बहुत ही बकवास लगते हैं। मुझे ग्रे कैरेक्टर के जो रोल्स बहुत पसंद है, एक इंसान या एक कैरेक्टर में वो सब अच्छा नहीं हो सकता, उसमें शेड्स होने चाहिए, ग्रे होना चाहिए। वो ग्रे एरिया जो है वो हम दिखाते ही नहीं है। हम पिक्चर को बहुत ही, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आजकल दौर में एटलीस्ट फिल्में अच्छी बन रही हैं, बट मुझे वो हीरो विलन बहुत बोरिंग लगता है। अगर ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जहाँ पे एक इंसान है लेकिन तुम्हें पसंद भी है, लेकिन उसमें कोई दो तीन तीन चीज़ें उसकी खोट भी है, बिकॉज दैट इज नेचुरल, एवरीवन इज लाइक दिस,
0: खोट तो होती है।
1: एग्जैक्टली। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है ना, जो जनरली फिल्म मेकर्स मेक की एक हीरो अच्छा है और ये विलन है, मुझे बहुत ही बकवास लगती है। एंड आई डोंट लाइक दोज रोल्स, बिकॉज देयर इज नो चैलेंज एंड देयर इज नोबडी लाइक दैट, इट्स अनरियल, इट्स अ फेरी टेल। तो अगर रियलिस्टिक, अगर ऐसे फिल्में बनती हैं एंड रियलिस्टिक रोल्स, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं आज की तारीख में, जैसे अनुराग बासु या अनुराग कश्यप जी जो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। जोया अख्तर ने बहुत अच्छी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो मुझे बहुत पसंद आई। बहुत सारे अच्छे मीनिंगफुल डायरेक्टर्स हैं, जैसे मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं असगर फरीदी, जो ईरान के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक फिल्म सेपरेशन और

0: सीन में कि जो दूसरा सामने वाला जो देख रहा है इसको पता भी नहीं कि कैमरा चल रहा है, ये तो ऐसे ही निकल गया, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। इट शुड नॉट फील कि अच्छा ये एक्ट कर रहा है, तो वो एक अलग लेवल का
1: अब एक
0: हाँ
1: बड़ा कठिन सा सवाल है।
0: हाँ
1: सवाल यह ऐसा है कि जो जो मैं पूछना चाहता हूं उसमें जो आदमी एक्टिंग नहीं भी करता उसको भी एक्टिंग करनी पड़ जाती है फिर इस मोमेंट के बाद, और वो
0: अच्छा
1: है कि शादी के
0: देखिए मेरी जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग है। मैंने कहा है कि मेरे लाइफ में हमारे फैमिली में सभी मेरे सातों भाई बहन ने शादी कर ली, उनके बच्चे हैं, लेकिन मेरी माँ को अगर एक एक तो चाहिए ना जो संतान जो एकदम अलग करे, तो
1: बारे।
0: वो मैं हूँ। और सोल्स कॉल माई सेल्फ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, क्योंकि मेरी जो विचारधारा है कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ जल्दी, किसी के साथ के, किसी इंसान के साथ भी और किसी चीज के साथ भी। मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, और मैं किसी एक के साथ नहीं जुड़ा रख सकता। सो आई नो कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, तो अगर ऐसा इंसान हो तो फिर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे के जीवन नष्ट कर सकता है। मैं रिलेशनशिप में रहा हूँ और मैंने देखा है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं ये पहले क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि मैं फिगर ही नहीं करता। मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपनी मंजिलें पर ज़्यादा अमल करना चाहता हूँ, और मुझे इट्स नॉट कि मुझे कोई किसी का साथ चाहिए। मैं अपने आप खुद, मैंने पूरी लाइफ खुद ब खुद जी है, की है, तो मुझे कोई लगता नहीं कि मुझे किसी की इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इमोशनली मैंने अपने आप को संभाला है बचपन से।

0: एक और बात है,
1: हाँ,
0: कि आपने अब ये तो तय कर लिया, बता दिया कि, हाँ, ये नहीं करना है,
1: नहीं करना है,
0: लेकिन आपके अंदर जो कला है,
1: हाँ,
0: देखिए कला बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे आपकी अलमारी में रखा हुआ आपका धन,
1: करेक्ट,
0: जिस तरह से अलमारी में रखा हुआ धन बाप अपने बेटे को दे के जाता है, उसी,
1: हाँ,
0: तरह से अपने अंदर की कला विरासत में अपने बच्चों को दे के जाता है,
1: हाँ,
0: तो आप अपनी

0: विरासत किसको देंगे?
1: एक जो आप कह रहे हैं, लोग बहुत कहते हैं हाँ ये जो आपके गुण हैं वो आ जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे बाप में क्या डांस का गुण था जो मेरे में आ गया? कुछ नहीं था ना, मुझे विरासत में डांस तो मिला ही नहीं, लेकिन एक एक लगाव आ गया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आप किसी को भी आप अपना मानते हो, और मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, बच्चों जो मेरे साथ सीखते हैं उनको मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन, चीज़ें जो मैंने सीखा है समझा है दे दिया है उनको। जो मेरी विरासत है वो वैसे भी मेरी नहीं है, मुझे सौगात में मिली थी, मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला था, तो मैं अपने पास नहीं रख सकता उसको। मेरा फर्ज है कि मैं जो मुझे मिला है, जिसकी वजह से मुझे धन संपत्ति और शौहरत मिली है, मैं उसको बांटूं, क्योंकि ये करेंसी है, ये चलनी चाहिए, ये लक्ष्मी है, ये दुर्गा है, ये सरस्वती है, ये एक के पास नहीं देनी चाहिए। ये जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना आते जाएगा, इट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो। तो मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, और बहुत लोग जैसे शक्ति हो, पुनीत हो, बहुत बड़े बड़े, ये तो फिर भी जाने माने लोग हैं जो पर्दों में दिखाई देते हैं, बट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, जिन्होंने मुझसे सीखा है और जो आगे लेके जा रहे हैं, और अगर वो उसकी उसकी बात कर रहे हैं तो उसकी कोई कमी नहीं है। मैं किसी को भी अपना मना सकता हूं और उसको बता सकता हूं, अगर उसको इंटरेस्ट है या उसको सीखना है, मैं अपने पास रखना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं तो, हम क्या है, हम तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा काम है या जो हमने दिया है, जो हमने समझा है, वही हमें बांटना है। हम एक खुशबू की तरह आए हैं और खुशबू की तरह चले जाएंगे।
0: मधुबन।

0: खुशबू की तरह तो अभी नहीं जाने देंगे हम आपको, एक सुरीली खुशबू जरूर हम चाहता हूँ कि आप फैलाएं। यहाँ पे क्या लगता है आपको कि ये जो इतनी लंबी बातचीत जो हुई, अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें आपने आज विविध भारती के श्रोताओं के साथ बांटी हैं, पहले तो ये बताइए कैसा लगा आपको?
1: बहुत ही अच्छा। जिस तरीके से आपने माहौल पैदा किया है, जो कंफर्ट लेवल आपने पैदा किया कि मैं भी खुल गया, मैं बहुत सारी चीजें शेयर कर पाया। कभी कभी बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी आप फील करते हैं कि नहीं, आप अगर जो आपका सत्य है, अगर आप प्रेम से बात करें और जो सामने वाला भी है जो आपको कंफर्ट महसूस कराए, तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल करवाया। और जो सवाल जो आपने पूछे वो बहुत ही कुछ निजी थे, कुछ प्रोफेशनल थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा और जिस तरीके से आपने उसको गाइड किया बहुत मज़ा आया। और ऑल्सो मैं बहुत ओवरवेल्म हो चुका हूँ बिकॉज विविध भारती ये शब्द मेरे बचपन से जुड़ा है, बिकॉज हम से रेडियो सुनते थे। आजकल के बच्चे शायद ये बहुत कम सुनने में आएगा कि विविध भारती, जो मिलेनियल्स बोलते हैं ना हम उनको क्या है विविध भारती क्या है, लेकिन हमें पता है कि इसकी अहमियत क्या है बिकॉज हम ये सुनते आ रहे हैं। तो फॉर मी व्हेन जब आपका कॉल भी आया ना, तो मैंने इमीडिएटली बोला हाँ मुझे जाना है क्योंकि इतनी ये जो आपकी जो विरासत है, जो आपकी जो परंपरा है जो चली आ रही है 1957 से, एक अलग ही परंपरा है और इसके साथ जुड़ना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
0: सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यहाँ एक मैं चाहता हूँ, वो एक सुरीली खुशबू की जो मैं बात कर रहा था, आपको क्या लगता है यहाँ कौन सा गाना हमें सुनना चाहिए?
1: कौन सा गाना जो एकदम लोगों को खुश कर देना? है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आ

0: इस गाने में एक लाइन थी, न जाने किस पे आएगा।
1: करेक्ट।
0: आपका दिल तो अब छोड़ देते हैं,
1: पे आया
0: पे आया और अपनी जगह पे
1: आया है और चला गया अभी,
0: और फिर वापस अपनी जगह पे आ गया,
1: आ गया हाँ।
0: लेकिन एक खास बात है, हमारे जितने सुनने वाले हैं सबका हाँ। दिल आप पर आ गया।
1: अरे क्या बात है।
0: और फिलहाल तो मेरा मन तो नहीं हो रहा, इतनी लंबी बातचीत के बाद भी लगता है बैठ के बात करते रहे आपसे हाँ। लेकिन आज के लिए हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर एक बार एक किसी और आसमान पर जब आप पहुंच जाएंगे
1: हाँ।
0: तब हम आपसे फिर एक और मुलाकात करेंगे।
1: जरूर जरूर।
0: और आज तमाम सुनने वालों की तरफ से मैं अमरकांत आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहता हूं। और ये हमारी बहुत खुशनसीबी रही कि आपने न सिर्फ टाइम दिया बल्कि इतने इत्मीनान से इतनी सारी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अमरकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया ताकि मैं दिल खोल के बात करूं, तो शुक्रिया। क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही एंडियरिंग है, जब प्यार सामने से आता है तो एक इंसान भी खुल जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव। और जभी सभी जो सुनने वाले हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, आप ज़रूर ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे सर पे सर रहा, तो बहुत सारे जो मकाम है ज़िंदगी में मैं ज़रूर हासिल करना चाहूँगा आपके आशीर्वाद से।

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: आज की जो विविधा है इसमें फुहारों की बात होगी, लेकिन ये जो वर्षा है ये सुरों की वर्षा है और सुरों की इस रस वर्षा में हम भीगेंगे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में

0: दो महान संगीतकारों की बात, एक ऐसे संगीतकार की बात जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को बहुत कर्णप्रिय की दिए, और एक और संगीतकार की बात जिनके बारे में सिर्फ एक ही शब्द निकलता है और वो है वर्सेटाइल। तो हमारे श्रोता समझ रहे हैं हम किनकी बात करने जा रहे हैं।
1: दो संगीतकारों की हम बात करने वाले हैं, इनमें जो सीनियर है, वरिष्ठतम है, उनकी बात पहले करते हैं।
0: जी,
1: कल्याण जी वीर जी शाह।
0: वाह, एक से एक सुंदर मीठे धुनों के रचयिता कल्याण जी वीर जी शाह।
1: मूलतः ये शाह परिवार गुजरात का जो कच्छ इलाका है
0: जी,
1: वहाँ के कुंद्रोड़ी गांव का रहने वाला था, और कल्याण जी के पिता मुंबई आ बसे थे व्यापार करने के लिए
0: जी।
1: और दोनों भाई कल्याण जी और आनंद जी उन दिनों व्यापार में अपने पिता का हाथ भी बटाते और संगीत सीखा करते।
0: हाँ, और बड़ी दिलचस्प बातें उस समय से जुड़ी हुई हैं जो कई बार हमारे श्रोताओं ने भी सुनी है, मुझे लगता है उन्हें भी पता है। लेकिन ये जरूर है कि उनके जो शॉप थी, उनकी जो दुकान थी, वहाँ एक संगीत रसिक आया करते थे
1: जी, जी।
0: और उनके साथ ये बातचीत जुड़ी हुई है।
1: वो संगीत शिक्षक थे असल में, वो कल्याण जी के पिता की उसी दुकान के ग्राहक थे, बहुत पुराने ग्राहक थे, और सौदा ऐसे ही तय हुआ करता था हमेशा कि जो पैसे उन्हें देने होते हैं उसके बदले वो कल्याण जी और आनंद जी को संगीत सिखाया करते थे।
0: क्या बात है, देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे संगीत रचा बसा है। एक दुकान है जहाँ पिता के साथ दो पुत्र हैं और वहाँ संगीत का जो है माहौल बना हुआ है। क्या ही सुंदर दृश्य होगा और क्या ही सुंदर बातें हैं ये जो हम सुनते हैं।
1: और जिस इलाके में ये लोग रहा करते थे शाह परिवार, वहाँ बहुत से गुजराती और मराठी संगीत प्रेमी बसते थे।
0: हाँ।
1: जी, पूरा माहौल ऐसा था कि गणेशोत्सव हो या दुर्गा उत्सव हो, अलग अलग अवसरों पर संगीत के कार्यक्रम वहाँ हुआ करते थे, और कल्याण जी और आनंद जी को बचपन से ही मौका मिलता रहा संगीत वो सुना करते, सीखा करते, बहुत से वाद्य वो बजाया करते। और चूंकि कल्याण जी बड़े भाई थे, वो पहले इंडस्ट्री की तरफ आए, और 1954 की बात है कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि वो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो विदेश से आया था, उसका नाम था क्लेवियोलाइन, और इसमें किसी कीबोर्ड या पियानो की जैसी कीज थी
0: जी जी,
1: और उस कीबोर्ड पे इन्होंने वो धुन बजाई थी जिसे हम नागिन धुन के नाम से जानते हैं।
0: हाँ, हेमंत दा ने अपनी फिल्म नागिन में उसी धुन का प्रयोग किया है, और हमारे श्रोता बखूबी जानते हैं कि कल्याण जी भाई ने इस धुन को बजाया और अमर धुन हो गई है।
1: बिल्कुल, और फिर तो सिलसिला चल पड़ा। पहले वाद्य बजाते थे, बाद में कल्याण जी भाई असिस्ट किया करते थे हेमंत कुमार जी को, और फिर उन्हें मौका मिला स्वतंत्र रूप से एक फिल्म के संगीतकार बनने का, और वो फिल्म थी सम्राट चंद्रगुप्त।
0: और क्या ही मीठे गीत सुनके हैं। तो श्रोताओं, आज हम इतनी बातें कर रहे हैं कल्याण जी वीर जी शाह की, उनकी पहली फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त तक की जो यात्रा है उसका एक संक्षेप में विवरण अभी तक जयंत जी ने दिया, और मुझे लगता है ये समय आ गया है जब बाकी की बातें जो हैं या इसके अलावा जो बातें हैं वो स्वयं हम कल्याण जी के स्वर में ही क्यों न सुने। और आज श्रोताओं, कल्याण जी वीर जी शाह जी को हम याद कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम विविधा में। 30 जून उनका जन्म दिवस है, तो आज विविधा में जो सबसे पहली प्रस्तुति है वो यही है। श्रोताओं, संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह से बातचीत की ये रिकॉर्डिंग जिसे हम अपने संग्रहालय से लेकर आए हैं, और कल्याण जी से बातचीत की है गणेश शर्मा ने।
2: ये सब जानते हैं कि नागिन की वो मशहूर बीन आपने, कल्याण जी भाई ने ही बजाई थी, उसकी कुछ यादें हमें बताइए।
3: शॉर्ट में कहूँगा कि वो क्लेवलिन इंस्ट्रूमेंट था, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था, जो उस टाइम फर्स्ट सिंथेसाइजर आया था, उसके बाद तो अभी सिंथेसाइजर की दुनिया हो गई, और उसमें वो कॉम्बिनेशन था नहीं एक्चुअली नागिन बीन, क्योंकि फॉरेन में तो बीन समझते नहीं, तो हमने कुछ कॉम्बिनेशन बना के वो एक नाग पंचमी करके एक पिक्चर थी, नाग कहीं जा बसी और मेरे पिया को न दसी हुई। उसके बाद ये सुन के वो मुझे लगता है जालान साहब ने सुना था, और उनके बाद हेमंत कुमार जी ने, वो नागिन पीछे बन रही थी उसके लिए मुझे बुलाया गया, और फिर उसमें नागिन बीन बजाई मैंने, और वो आप पूछेंगे कि उसमें कोई कोई इंटरेस्टिंग बात सुनाइए, तो मुझे याद है बरोबर कि लता जी उस टाइम ही कह रही थी कि रेहान जी कुछ भी बोलो मुझे लगता है कि ये गाना ऐसा सुपरहिट होने वाला है कि आप याद करेंगे, मेरी बात याद करना, आज भी हम याद करते हैं। सही लता जी ने कहा था उससे।

0: कलंजी भाई, फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने संगीत दिया, और उस फिल्म में लता मंगेशकर ने आपके लिए गीत गाए। उसके बाद तो आपका लता जी के साथ में एसोसिएशन बहुत सारे गानों में रहा, कुछ बताइए।
1: लता जी के बारे में कुछ कहना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनका गाना ही कह रहा है कि वो क्या थे। अभी हमें लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश का होता है, वो हमें इस साल का मिला, तो वहाँ भी मैंने कहा कि इंदौर में जन्म हुआ उनका, और इंदौर में जन्म हुआ उसी टाइम से लगा कि फिल्म संगीत का जन्म हुआ, इससे ज़्यादा वर्ड मेरे पास नहीं है। और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं कह सकता हूँ कि जब भी हम गाना रिकॉर्ड करके आते हैं तो वही गाना हम जब सुनते हैं तो, और किसी भी सिंगर का गाना जब भी सुनाते हैं ऐसा लगता है कि ज़रा और यहाँ कुछ करते तो और अच्छा हो सकता था। लेकिन ये एक ऐसी सिंगर कि जब भी हम गाना लिखे कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं नहीं नहीं अभी कुछ कम रह गया, कम रह, बस यही, बस इनकी खूबी, ऐसे आगे कुछ नहीं।

0: वीर हो।
1: कलंजी भाई, स्टेज प्रोग्राम्स आपने सबसे ज्यादा किए हैं। एक खास बात यह भी रही है कि उसमें सभी स्टार्स, सभी फिल्म स्टार्स आपके स्टेज शोज में रहे हैं। तो स्टेज आपने कब से शुरू किया और कुछ बातें उस बारे में बताइए हमें।
2: एक्चुअली क्या था कि हम फिल्म लाइन में आए उसके पहले स्टेज की दुनिया में थे। हमारी एक पार्टी चलती थी कल्याण जी विजयन पार्टी, तो उसमें काफ़ी शो करते थे हम। मतलब उसमें क्या, उस टाइम के रतन और इस टाइप के गाने पॉपुलर होते थे, वो गाने बजाने के और पब्लिक को खुश करना। उसके बाद तो नागिन की बीन आई, उसके बाद तो स्टेज की दुनिया हमारे लिए बहुत ईजी हो गई। लेकिन हमारे माइंड में ऐसा हमेशा चलता था कि अगर कोई पॉपुलर सिंगर और पॉपुलर एक्टर अगर स्टेज के ऊपर आ जाएं तो बहुत ही बड़ी बात बन सकती है, क्योंकि पब्लिक उनको सुनना चाहती है, देखना चाहती है। तो सिंगरों को उस टाइम हेमंत कुमार, अपने मुकेश जी, पहले वो शर्माते थे क्योंकि आदत नहीं है ना, जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनको स्टेज पे ज़रा प्रैक्टिस नहीं होती है ना, कुछ बोलना भी पड़ता है कभी कुछ भी। लेकिन सबको प्रैक्टिस डालते डालते और सभी अच्छे हो जाए उस टाइम। फिर आए किशोर कुमार। किशोर कुमार तो पहले एकदम डरते थे ऑडियंस के सामने आना करें, पर बड़ा उनको ऐसे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गए थे फिनेंशियल, तो उनके जो एडवाइज़र था वो बोले किशोरदा आप स्टेज पे आ जाइए तो बहुत पैसे मिलेंगे। हम भी बोलते तो बोले नहीं, स्टेज के ऊपर मैं जाऊँगा तो मैं गिर जाऊँगा। तो हम उनको कैसे समझाते थे, एक दिन मैंने समझाया उनको, किशोरदा आप क्यों डर रहे मेरे को समझाइए कि आपके सामने जो भी बैठे हैं वो 7 जन्म तक किशोर कुमार नहीं बन सकते। क्यों कि सामने कोई बैठे हुए ऐसे तो नहीं है कि लता मंगेशकर बैठी हैं, कि बड़े गुलाम अली बैठे हैं, कि आमिर खान बैठे हैं, कि आपको डर लगे कि अरे बार पॉइंट अच्छा अच्छा है, फिर से बोलो मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब वो अगर हों तो ठीक है भाई, हमको डर लगे कि भाई वो क्या होने, ये तो बेचारे ऑडियंस है एकदम, जिसने गाना खा लिया, आपके इतने फैन है यार, एक दो दफे बोलते रहो बस यार, यार मैं क्यों डर रहा हूँ, फिर क्यों डर रहा हूँ, नहीं डरूंगा, ऐसे करके करके उनको स्टेज पे ले जाते थे और डरते थे। पर बाद में तो ऐसे मास्टर हो गए कि ओहो आप बिलीव नहीं कर सकते, उनके तो इतने किस्से हैं, कभी मैं सुनाऊंगा आपको तो लगेगा। एक दिन क्या हुआ, हम कलकत्ता में गए, उनके प्रेजेंटेशन में बताता हूँ, तो योडलिंग उन्होंने निकाली, मतलब योडलिंग, तो हम लोग बैठे कोई प्लान बना थे, मतलब किशोरदा एक सवाल मैं पूछूंगा फिर आपने, तो हम बड़े, तो मेरा किशोरदा आप जो ये योडलिंग जो निकाले वो कैसे आपको आइडिया आया। वो बोले मैं छोटा था बच्चा एकदम, तब मैं बहुत शरारती था, मेरी माँ बहुत मारती थी मेरे को, तो बाद में क्या हुआ मैं अच्छा हो गया, फिर भी मेरे को पिट रही है। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्यों मार रही है मेरे को माँ पूछ। तो वो बोले तुम रोते हो तो एक आवाज़ निकलती है हमको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बोला कि किशोरदा अभी वो आवाज़ निकाली आप, इतने अच्छे आप बात कह रहे थे। तो बोले नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, मेरे को मारो तुम। अरे मैंने कैसे मारेंगे इतने ऑडियंस के बीच में, मैं आपको मारूँ ऐसे? तो बोले तब मैं तो नहीं निकलूँगा। तो हमने ऐसे प्लान किया था, मैं ऐसा एक दौर से एक ऐसे लाफा मारा, तो हमने दौड़ करके और उसमें से रो के फिर उसमें आवाज़ निकल के उन्होंने गाना शुरू किया, बस ये स्टाइल।

0: बहुत बड़े बड़े अवार्ड से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट किसी अवार्ड फंक्शन का अवार्ड लेते हुए आप श्रोताओं को बताइए।
1: कोई भी अवार्ड मिलता खुशी तो होती है, उसमें कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन मुझे लगता है कि जनता का जो अवार्ड है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं और पहला ही जनता के सामने जाते हैं और उनकी क्या खुशी हुई है, वहीं हमें अवार्ड मिल जाता है। बाकी तो फिर किसने रिकग्नाइज किया कि नहीं किया उसमें नहीं, लेकिन जब भी कोई अवार्ड लेते हैं तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि हम चाहते हैं कि कितने प्यार से लोगों ने हमें अवार्ड दिया है, तो हम इस संगीत के जरिए क्या समाज की सेवा कर सकते हैं, क्या देश की सेवा कर सकते हैं, क्या हमारे आने वाले भाइयों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, ये हमारा हमेशा माइंड में रहता है। इसलिए जब भी कोई अवार्ड लेते हैं हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है, बस यही है। फिर आप अगर मजा की बात करें तो जैसे फिल्म फेयर अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, तो हमें कोरा कागज़ के लिए मिला, लेकिन बहुत लेट मिला था, 25 साल कुछ 27 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद हमें मिला था। तो वहाँ पूछते हैं कि ये अवार्ड मिलने से आपको क्या महसूस हो रहा है आप, तो मतलब भाई बहुत खुशी हो रही है, क्यों नहीं खुशी हो, क्योंकि बड़ी उम्र में लड़का हुआ है।
0: कल्याण जी भाई, इस तरह के जो जोक्स हैं, जो एक चुटकुले और आप बातों बातों में कहते हैं, जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बहुत मशहूर है, आप जोक्स बहुत अच्छा बोलते हैं और चुटकुले आप बहुत अच्छा बोलते हैं।
1: जब ये ह्यूमर का सब्जेक्ट निकाला है तो मुझे लगता है कि ह्यूमर को मैं बहुत महत्व देता हूँ, कि वो क्या कि जहाँ हम जाएँ कोई लोग हंसते नहीं हो सब है। तो और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसने इंस्पायर किया हो तो आचार्य रजनीश जी, अब ओशो, उन्होंने मुझे बोला था कि कल्याण जी आप में जो आर्ट है इसको आप डेवलप कीजिए, वो कमाल का आर्ट है, बिल्कुल अगर हमारे में भी हो जाता तो मैं तो जो मेरा सब्जेक्ट है प्रीचिंग ना लगे इसलिए मैं आपसे काफ़ी चीज़ें एडॉप्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, इसलिए मैंने बहुत स्टडी किया, मैंने ह्यूमर की क्लासेज भी शुरू किए थे। अभी आप बोलेंगे कोई जोक सुनाई, जैसे मैंने बोला अभी बड़ी उम्र में लड़का पिक्चर साइन की थी नन्ना फरिश्ता, तो हमको पहली मद्रास की फिल्म थी हमारे पास, तो वहाँ स्टोरी राइटर बड़ी सीरियस स्टोरी सुना रहा था कि हमारी स्टोरी देखो ये है ये, और उसमें लास्ट में बोला कि इसमें एक लोरी आती है बस, दिस इज द बेस्ट आके पिक्चर में, वो लोरी बहुत काउंट करती है, लोरी लोरी लोरी बहुत अच्छी, कल्याण जी भाई बस बनाना बना। तो मैंने ऐसे बोला कि हमारे तो ऑर्डनरी गाने में लोग सो जाते हैं, तो लोरी में तो हम जान लड़ा देंगे, सवाल ही नहीं। तो इतना बड़ा लाफ्टर आया, तो बोले वो क्या, वो समझे नहीं, बाद में उनको समझाया गया कि हम सही नहीं बोलते।

0: अखिलेश जी को आपने उनके करियर के सबसे ज्यादा गाने गवाए हैं, बहुत से हिट गाने मुकेश जी के आपके द्वारा संगीतबद्ध हैं।
1: मुकेश जी के बारे में कुछ कहना हो तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जब भी वो गाते थे तो सीधे हार्ट तक पहुंच जाते, सीधा हृदय, कोई दिमाग के ऊपर गाना नहीं जाता था कि मेरे टूटे हुए दिल से अगर गाते हैं तो ऐसा लगता है कि सही इनका दिल टूटा हुआ है। बस ये इनकी एक खूबी थी, वो फुल ऑफ एक्सप्रेशन, और जितने वो अच्छा गाते थे इतने ही अच्छे इंसान थे, ग्रेट आर्टिस्ट। सभी गाने उन्होंने बहुत प्यारे गाए, लेकिन शमीम जयपुरी जिनका पहला ही गाना हमने मतलब उन्होंने लिखा था, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, अर्जुन हिंगोरानी की पिक्चर दिल भी तेरा मेरा,

0: कल्याण जी भाई, गायक गायिकाओं की बात हम कर रहे हैं और मोहम्मद रफ़ी का जिक्र अगर ना हो तो प्रोग्राम पूरा नहीं कहलाएगा।
1: मुझे लगता है कि रफ़ी जी एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए गिफ्ट जिसको बोल सकते हैं। रफ़ी जी वॉज ए ऑलराउंडर आर्टिस्ट। जैसे क्रिकेट में हम चाहते हैं कि भाई बैट्समैन भी हो, विकेट कीपर भी हो, बॉलर भी अच्छा हो, अच्छा फील्डर भी हो, किसी भी रंग का गाना गवा लीजिए आप, क्लासिकल से लेके कॉमेडी गाना, पैथोस गाना। और एक हीरो के लिए कोई भी हमें दूसरा सिंगर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अभी इसके लिए और सिंगर ढूंढ, बस ये इनकी खूबी थी और बहुत प्यार से गाते थे, बस यही।

0: कल्याण जी भाई, कोई ऐसे संगीतकार हमारे और वरिष्ठ संगीतकारों में जिनके काम ने आपको इंस्पायर किया हो?
1: कोई भी आदमी किसी भी सब्जेक्ट में जब आगे बढ़ता है तो उस सब्जेक्ट के जो टॉप लोग होते हैं उनको जरूर सुनता है, देखता है क्या किया है उन्होंने। तो हमारा म्यूजिक का सब्जेक्ट रहा, तो हमने अपने टाइम में देखा कि नौशाद जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग, क्या बात है। फिर उस टाइम के सी रामचंद्र, उन्होंने बहुत अच्छा किया। मदन मोहन, उन्होंने अच्छा किया। शंकर जयकिशन, उन्होंने अपना एक रंग अलग दिखाया था। संजीव चौधरी, अनिल विश्वास, ये सब ने। लेकिन अगर हमें पूछे कि भाई आपको ज़्यादा में ज़्यादा किसने, तो मैं एसडी बर्मन को बहुत मानता। काहे के लिए कि एक 4-5 मिनट का हमारा गाना होता है, उस 4-5 मिनट के अंदर 2-2.5 मिनट सिंगर गाता है, बाकी ऑर्केस्ट्रा बजता है। तो उसमें ऐसा एक एटमॉस्फेयर पैदा करो कि सिर्फ कानों से दिखाई देने लग जाए कि ये बनाया है, ये बनाया है, वो बहुत मुश्किल है। और वो बना देते तो हम उसको बहुत स्टडी करते थे, क्या किया गया इन्होंने, कि अगर कोई सीने के बादल है तो लगता है कि बादल गरज रहे हैं, ये गरज रहे हैं, ऐसे हर रंग में उन्होंने अपना अपना रंग। सुन मेरे बंधु, उनका जो अपने स्टाइल से गाया है वो सुना, ये बहुत मज़ा है।

0: कल्याण जी भाई, हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए एक ग्रुप जिसका नाम है लिटिल वंडर्स, वहाँ बच्चों को, छोटे बच्चों को परफॉर्म करते देख, गाते देख, बजाते देख, विश्वास ही नहीं होता कि बच्चों में इतना टैलेंट हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि ये ग्रुप को फॉर्म करने में ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको ये सोचने के लिए मजबूर किया कि बच्चों के साथ कुछ काम किया जाए?
1: फिल्म की दुनिया और स्टेज की दुनिया, तो उसमें देखा कि जब भी कल्याण जी आन जी नाइट होती थी तो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्कोर कर जाए तो बाल कलाकार कर जाता था। कितने भी बड़े आर्टिस्ट आए हों लेकिन जब भी एक छोटा कलाकार आ जाता था तो भले वो उतना उसका अच्छा नहीं भी परफॉर्मेंस हो, फिर भी इतनी क्लैपिंग ले जाता, तभी सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा हो कि पूरा शो अगर बच्चों का हो जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। और फिर बच्चों में क्या है कि मैं दिखाऊँ को बहुत फास्ट डेवलपिंग, उनको कोई टेंशन नहीं होता ना, उनको जो काम दिखा देंगे बस वही काम करना है उनको। तो देखा कि ट्राई करें हम, और आज देखते हैं कि मुझे लगता है कि सभी लोगों का ये कहना है कि शो की दुनिया का सबसे बड़े बड़ा शो है, क्योंकि तीन पीढ़ियों को बच्चे संभालते हैं। एक तो छोटे बच्चे आते हैं, फिर उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, ये तीन पीढ़ियाँ एक ही, और वो तीन घंटे बच्चे ऐसे परफॉर्म करते हैं कि अगर जिसने शो देखा हो कोई बता सकता है कि वो बहुत है। और हम बहुत लकी रहे कि बड़े बड़े जितने आर्टिस्ट हैं, अमिताभ जी, दिलीप कुमार जी, सुनील दत्त, वहाँ से लेके जितने अभी गोविंदा जी आए थे, अमरीश पुरी आए थे, सभी ऐसे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल काम छोड़ के अपने बिल्कुल आते हैं और बिल्कुल सिखाते हैं। ये एक शो देखा हमने कि कोई की आदमी को जेलसी नहीं होती है, सब एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं, बस यही एक खूबी है।
0: बच्चों की बात चली है, मैं चाहता हूँ एक कोई ऐसा गाना आप सुनवाएं श्रोताओं को जो आप ही का कॉम्पोजिशन हो और बच्चों के लिए हो। जो गाना
1: बजाइए, एक बट्टा दो, दो बट्टे चार, कालीचरण में था जिसमें अनुराधा पौडवाल और कंचन जी ने गाया था, और मुझे लगता है वो दोनों का पहला ही गाना था उसे।

0: कलन जी भाई, संगीत सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है जिस पे आप काम कर रहे हैं। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और बहुत से साधु संतों का सत्संग भी आपको मिला है, तो आपकी जिंदगी की फिलॉसफी, जिंदगी का फलसफा क्या है, हमें बताइए।
1: अच्छा सवाल है ये, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम बचपन में जब भी कोई ज़्यादा तो एजुकेटेड है नहीं, लेकिन पिताजी मेरे वो भी कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छी बातें करते थे और प्रैक्टिकल में ना आचरण उनका बहुत स्ट्रांग था। तो कहते थे बेटा देखो कोई भी लाइन में जाना, लेकिन जीवन की ज़रूरत कोई ज़्यादा नहीं है, और वो ज़रूरत से अगर आगे निकल गए तो बाकी का चीज़ है वो बांटना, ऐसा हो ना पैसा काम कर रख के बैठे हुए कुछ बड़े, वो भी बात हमें अभी भी माइंड में बिल्कुल, और बड़ों की इज्जत करना ये करना, तो वो सब हमारे बचपन में जो डाले हुए संस्कार हैं वो अभी तक हैं। तो हमने देखा कि हम संगीत में आगे बढ़ गए तो मनी तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो बाकी सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर आदमी को निजी आनंद लेना हो तो दूसरों के लिए हम कुछ करते हैं तो ये अच्छा लगता है। तो ये उनकी वजह से हम जितना भी कुछ अपना जो भी कुछ है तो उस चैरिटी में डालने की कोशिश की, फिर अपने शो की दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं उनके लिए जो भी कुछ कर सके तो ये करते हैं। तो ये इसका एक आनंद है, वो एक बहुत ही बड़ा आनंद है और सभी को इसमें लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

0: चलना।
1: मनीषा जी, इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के कैसा अलग सा आनंद महसूस कर रहे हैं हमारे श्रोता भी निश्चित रूप से इसको अनुभव कर रहे होंगे।
2: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जयंत जी आपने। और संगीत में वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो इंसान के मन मस्तिष्क को शीतल कर देती है, ठंडा कर देती है। बहुत परेशान अगर कोई इंसान है, डिप्रेशन में है, तो वो एक मधुर संगीत सुन के आनंदित हो उठता है, और अगर आनंद में है तो उसका आनंद जो है वो द्विगुणित हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: संगीत का सौंदर्य जिन कलाकारों को ये गुण मिला है, जिनको माँ सरस्वती ने ये आशीर्वाद दिया है, वो वाकई बहुत पुण्यात्मा होंगे जिन पर ये आशीर्वाद माँ सरस्वती का है। एक ऐसे ही कलाकार हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी, और वो हैं राहुल देव बर्मन।
1: वाह क्या बात है।
2: जिनके लिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था ना शुरुआत में, वर्सेटाइल।
1: वर्सेटाइल, वैविध्यता पूर्ण कलाकार।
2: जी हाँ। और आपको नहीं लगता जयंत जी की राहुल देव बर्मन

0: तारीफ ही कर रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और
1: विविधता ये जो शब्द है इसको सार्थक किया है आरडी बर्मन के संगीत ने।
0: जी हाँ,
1: आप उनका पहला गाना ले लीजिए या उनका आखिरी गीत कंपोजिशन ले लीजिए।
0: जी हाँ, एक लंबा दौर आरडी बर्मन साहब का रहा संगीत में। और पहला गीत जिसका जिक्र भी जयंत जी कर रहे, छोटे नवाब का
1: बिल्कुल,
0: गीत
1: बिल्कुल,
0: जो उनकी पहली फिल्म थी, घर आ जाए घिराए बदरा सावरिया,
1: रोंगटे खड़े हो गए।
0: जी हाँ, शास्त्रीय संगीत की छाप उसमें स्पष्ट दिखाई देती है। और फिर उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सर्वाधिक प्रयोग धर्मी संगीतकार भी राहुल देव बर्मन रहे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, न केवल संगीत रचनाओं में जिस तरह के वाद्य इस्तेमाल किए जाते थे, वो कई बार ऐसे वाद्य होते थे जो लोक गीतों में हमें सुनाई देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: या कई बार नए तरह का वाद्य वो बनाते थे, यानी कि बाल्टी में किसी यंत्र को डुबा करके और उसमें से आवाज निकालना, लोहे की किसी चीज को पानी में डुबा करके उससे आवाज निकालना, ऐसे कई प्रयोग उन्होंने किए।
0: बहुत इनोवेटिव जिसे कहा
1: जी,
0: जाता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: बहुत नए नए प्रयोग करने वाले आरडी बर्मन साहब के बारे में हम आपको क्या बताएं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे राहुल देव बर्मन संगीत नहीं रचते थे, संगीत का एक अनुष्ठान करते थे। और उस अनुष्ठान का जो उद्यापन है वो हुआ था 1942 अ लव स्टोरी के साथ,
1: वाह वाह,
0: जो उनकी आखिरी फिल्म थी। जयंत जी,
1: जी,
0: एक ऐसे प्रयोग धर्मी संगीतकार राहुल देव बर्मन, जिनका जन्मदिन 27 जून को सभी संगीत प्रेमियों ने मनाया और अभी तक उसका असर हम सबके दिलो दिमाग पर है।
1: जी जी
0: श्रोताओ, आर डी बर्मन साहब के बारे में हम जब इतनी बातें कर रहे हैं, तब आपका ध्यान जरूर इस बात पर आकृष्ट हुआ होगा कि हम किस कार्यक्रम को अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। तो आप शायद बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मुझे जयंत जी के चेहरे से भी लग रहा है कि वो समझ गए। तो श्रोताओं, हमने जो आज ये रिकॉर्डिंग्स आपके लिए चुनी है, ये एक लंबी श्रृंखला है विविध भारती की, और इसकी प्रोड्यूसर छाया गांगुली जी हैं, जो खुद एक बहुत अच्छी गायिका, बहुत अच्छी कलाकार। और छाया जी का तो ये उपकार है कि उन्होंने तीन महान कलाकारों को एक साथ विविध भारती के मंच पर,
1: यही विशेषता इस श्रृंखला की है कि आर डी बर्मन साहब के संगीत पर केंद्रित हैं, मगर उनसे बातें जो कर रहे हैं वो भी महान कलाकार है,
0: जी हाँ,
1: आशा जी और गुलजार साहब।
0: जी हाँ, और जब इन तीनों कलाकारों का एक कुंभ होता है तो ये कार्यक्रम बन के निकलता है, और वो है मेरी संगीत यात्रा, जो सीरीज विविध भारती की बहुत पॉपुलर सीरीज है। श्रोताओं, आप आज जो सुनेंगे ना, उसमें हम तीन अंक उसके प्रसारित करेंगे। तो पहला जो अंक है उस बारे में आप बताइए।
1: जी मनीषा जी, पहला हिस्सा जो है उसमें आरडी साहब ने अपनी पहले फिल्म की, यानी छोटे नवाब के संगीत की बात की है।
0: तो पहले उसी हिस्से को सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: जी जी,
2: मेरा पहला गाना गुलजार छोटे नवाब फिल्म का था, और उसमें पहला गाना जो है दीदी, मतलब लता जी खुद गाई थी, और उस गाने के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी है।
3: अच्छा,
2: ऐसा है कि पुराने चावल जैसा होता है, बहुत घमंडी होते हैं सब।
3: अच्छा।
2: तो मेरे पिताजी भी बहुत घमंडी थे, दोनों का कुछ अनबन हो गया था और दोनों कुछ बोलचाल बंद हो गया था।
3: अच्छा अच्छा, कट्टी हो गई थी।
2: कट्टी हो गई और दीदी गा नहीं रही थी पिताजी के लिए, तो पिताजी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, किसी और से गवाएंगे। तो कुछ दिन तक गाना उनके बगैर ही हुआ। तो मेरा वो पीरियड में ऐसा हुआ कि मुझे वो पिक्चर मिली और मैंने दीदी के पास गया, जाके कहा कि दीदी ये मेरा पहला गाना है तो आपको गाने पड़ेगा। तो कहा क्यों नहीं गाऊंगी, कौन सी डेट है बताओ। तो डेट फिक्स करके बताया। तो उन दिनों में क्या होता था कि रिहर्सल हुआ करता था।
3: अच्छा।
2: मतलब दो या तीन लता भाई जैसे आर्टिस्ट ही है, आशा बोलो, कोई भी हो, रफी साहब बोलो, लेकिन आजकल दुर्भाग्य है कि आजकल उतना
3: रस्म नहीं रही,
2: रस्म नहीं है। तो वो आए हमारे घर पे रिहर्सल करने के लिए, और रिहर्सल में गाना सुन के बहुत आशीर्वाद दी। उन्होंने कहा कि पिताजी से नहीं मिलाओगे? तो मैंने बोला कि वो दरवाजे पे खड़े हैं दूसरे कमरे में, वो आने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने आवाज दी, दादा अंदर आइए।
3: रूठे हुए थे,
2: रूठे हुए थे। पिताजी आए आके, बोला लता कितना डेट दे सकते हो तुम मुझे? वो ऐसे बात करते थे, बोला आपको जितना डेट चाहिए, एक महीना का चाहिए ले लीजिए। तो उसके बाद हमारा गाना तो हुआ ही, पहला गाना हुआ घर आजा घिरा, और उसके बाद से फिर पिताजी के साथ लता भाई के अच्छा हो गया।
3: अच्छा,
2: और गाने गाए बहुत सारे पिक्चर।
4: एक बात मैं आपसे पूछूं?
2: बिल्कुल,
4: सच बताने का।
2: हाँ बताइए।
4: जब आपने लता मंगेशकर को
2: जी
4: पहले रिहर्सल के लिए
2: ये कुछ
4: गाना शुरू किया,
2: घिराव करके मेरे तरफ आ रहे,
4: तब आप अंदर से कांप रहे थे?

0: बिल्कुल कांप रहा था। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए, पहली दफा उनको मिला मैं मेरे ख्याल से 1950-51 में मिला, वो ठंडी हवाएं करके एक गाना था, उसके रिकॉर्डिंग में मिला।
1: अच्छा।
0: एंड शी वाज सो सिंपल, मतलब लगता ही नहीं था कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, क्या है नहीं है। लेकिन जब मेरा पहला गाना गाया तो मेरा बहुत मेरा भागी चमक,
1: क्या बोल कैसे उस गाने के,
0: घर आ जा घिर आए

0: तो शुरुआत हुई आर डी साहब की और उसके बाद
1: अब उसके बाद मैं उस गीत की बात करना चाहूंगी जिसे हमारे जो श्रोता है वो दीवानों की तरह चाहते हैं, और उसमें आर डी बर्मन साहब ने ऐसा संगीत दिया है और ऐसा मधुर गीत है, आप समझ रहे हैं, जिसमें वो रेल लगातार चल रही है रेलगाड़ी और उसके साथ जी हाँ फिल्म जी, किताब जी, का जी, वो एक जबरदस्त गीत है स्वयं आर डी बर्मन साहब की आवाज में। आइए वो गीत कैसे बना, उस गीत से जुड़ी यादें क्या थी, इसको सुनते हैं। आर डी बर्मन साहब के साथ गुलजार जी हैं और हैं आशा जी।
2: आप सबको तो गवाते हैं
3: जी,
2: जब आप खुद गाना गाते हैं तब मैंने देखा है कि आप क्या क्या करते हैं, कहते आज नहीं गाऊंगा मैं कल गाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं परसों गाता हूँ, परसों आएंगे तो कहेंगे मैं नर्सों गाता हूँ, अच्छा छोड़ दे तू भी मत गा आज, कल करते हैं परसों करते हैं,
4: बिल्कुल इसी गाना तरह की हरकत है आयशा जी, वो भी इसी तरह की एक फोक सी धुन है इनकी, मतलब गाने की रेंडरिंग पर बहुत कुछ मुनसर है
2: जी,
4: मतलब नॉर्मल गाना जिस सिचुएशन का, जिस तरह से आपने एक गाना है इसी को किसी और आवाज में गा लो और किसी और तरह से गा लो तो वो रेंडरिंग उसके बदल दीजिए तो

0: गाने का कैरेक्टर बदल जाता है। ये बात मुझे पंचम ने समझाई थी और बताया था, और मैंने वो घंटी इसी के गले में बांध दी थी कि आप गा के बताओ। वो तो पिक्चर में भी इन्होंने गाया, वो गाना किताब फिल्म में है,
1: धन्नों की आंखों में। इसका कमाल
0: वो नॉर्मली कोई सिंगर गा नहीं सकता, या नॉर्मल सिंगर नहीं गा सकता,
2: ज्यादा बेटर
0: है। उस गाने को कैरेक्टर मिला सिर्फ उस रेंडरिंग से।
2: उसमें एक गिटार का जो पीस
0: है, एक एक्सपेरिमेंट है इनका, इन्हीं से पूछे बताएंगे।
1: ये मैं अमेरिका में था और वहाँ पे एक गैजेट जैसा है, उसको फ्लेंजिंग कहते हैं, फ्लेंजिंग।
0: अच्छा,
1: तो वो मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस कैन चेंज अ कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ, जैसे गिटार में अगर वो लगा दीजिए तो अलग ही साउंड करेगा। तो हमने वो खरीद कर लिया और इधर आ गए। वो सुनने में थोड़ा बेसुरा जैसा लगता था, सब लोग हंसते थे क्या लेके आए, इट्स अ नॉइज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग सिंथेसाइज्ड साउंड जो अच्छी तरह अगर यूज किया जाए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करता हूँ, काफी विजिलेटेड करते होंगे, लेकिन अच्छी तरह यूज किया जाए तो बहुत अच्छा सुनाई देता है, लेकिन लोग खराब तरीके से
0: भी। मेरा ख्याल है वही एक इंस्ट्रूमेंट, वही मेजर या मेन इंस्ट्रूमेंट वही था, वही था। और तो कुछ भी नहीं।
2: उसी के ऊपर
1: कैसा गा रहे थे हम,
2: क्या
1: चलिए गाना सुन के

0: फिल्म किताब का जो गीत श्रोताओं ने इस कड़ी में सुना, मनीषा जी आरडी साहब की प्रयोग धर्मिता यहाँ देखने को मिलती है। और अब हम बात करेंगे उनके एक नॉन फिल्म एल्बम की। आशा भोसले, गुलजार साहब और आरडी बर्मन ने मिल करके ये एल्बम बनाया था, दिल पड़ोसी है।
1: और दिल पड़ोसी है दरअसल हमारी भी दिल के बहुत पड़ोस में रहता है, बल्कि हम तो कहते हैं कि दिल में ही रहता है। इतना सुंदर एल्बम है, क्या बताएं, इसको तो जितनी बार सुना जाए उतनी बार।
0: इस एल्बम के दो वॉल्यूम है, जितने भी गाने हैं हर गाना अलग

0: अलग है, हटके है। उस गाने का रिदम पैटर्न देख लीजिए, अलग है
1: जी। तो आज कौन से वाले गीत का जिक्र है जिसकी कड़ी हम सुनवा रहे हैं?
0: जी जी, इसमें गुलजार साहब का लिखा हुआ वो गाना है जिसमें बांसुरी की बात है।
1: अच्छा।
0: बांसुरी को एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने देखा है। सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना।
1: क्या बात है, ये तो बहुत ही सुंदर कड़ी है इस श्रृंखला की। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं।
2: पड़ोसी में आप गाना।
3: हाँ, मैं यही कहने वाली थी।
2: कौन सा गाना?
3: सातों बार बोले बंसी।
2: इसके बारे में तो गुलजार बताए।
4: सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना। तन की लागी सारी बोले, मन की लागी बोले,
3: बोले
4: ना। ये गाने में खास बात ये है कि बांसुरी को टोटल परसोनिफाई करके देखिए आप।
2: कैसे?
4: जितनी फूंक तन पे लगती है उतनी बोलती है, अंदर की बात नहीं बताती। सुर उसके साथ हैं, सातों बोलते हैं। जो चुप रहती है जिस बात पे वो नहीं बोलती। उसमें खूबसूरत बात सिर्फ यह है कि उसे परसोनिफाई करके देखिए किस तरह से वो उठ के कृष्ण के मुंह लगती है, मुंह लगी हुई है, मुंह चढ़ी हुई है, और वो सारी बात कहती है। एक जो उसका अपनापन है, जो अपने पास रखती है, वो चुप है, जो नहीं बोलती। वो सात सुरों के अलावा है। उसके सारी इलिटरेशन जितनी है वो बांसुरी के साथ परसोनिफाई करके देखिए आप।
2: ये गाने में थोड़ा सा लयकारी भी किया था, सरगम भी किए थे, बड़ा अच्छा था मतलब।
3: और इसमें एक बहुत अच्छी थी कि बांसुरी साथ में बोल रही है और आवाज भी आ रही है।
4: हाँ।
3: तो समझ नहीं आता कि बंसरी बोल रही है कि राधा बोल रही है।
4: जी हाँ, बस वही तो उसमें पर्सोनिफिकेशन है सारी की सारी। जैसे फूंक फूंक के बोलती है
3: जी।
4: अब वो फूंक से ही एक्चुअली बोलती है बांसुरी।

0: क्या बात है, प्रीत की पीड़ा जाने मुई छाती छेद पड़े।
1: क्या बात है,
0: उठ उठ के फिर मुंह लगती है कान्हा संग लड़े। बांसुरी की इस बात को सुन करके मनीषा जी
1: कुछ और सुनने का मन रहता है क्या?
0: जी जी जी, लगता है इसी अनुभूति के साथ रह जाएं।
1: जी हाँ, तो अब हम यहीं रह जाते हैं श्रोताओ, आपके साथ इन्हीं स्मृतियों में हम भी खोए हुए हैं और आगे बात नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। इसी तरह के मधुर कार्यक्रमों को लेकर एक बार फिर हम लौटेंगे। अभी इस वक्त तो दीजिए अपनी मित्र मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर को इजाजत। नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
2: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वासना फिल्म का ये गीत।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।

0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।
4: हर दिल जो प्यार करेगा वो गा

0: हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई शंकर जय किशन ने। और श्रोताओं, इस गीत के पहले आपने संगम फिल्म का गीत सुना था, उस गीत में भी तर्ज थी शंकर जय किशन की। इस वक्त आप सुन रहे थे शिकार फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी का गाया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, फिल्म फर्ज का गीत आपने सुना।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुआफा करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में, वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। यही थी आज के कार्यक्रम यादों की महफिल की आखिरी पेशकश।

0: पाकिस्तानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में।
2: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
3: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi says India has begun to move forward with a new vision for the shipbuilding sector. Mr. Modi said this after commissioning 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata, West Bengal today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said, India is strengthening its entire maritime ecosystem.
3: भारत आज अपने पूरे maritime ecosystem को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
4: The Prime Minister emphasized that the commissioning of these warships is a sign of India's future. In his address, Mr. Modi also said that in the coming years, India's maritime sector has the potential to create lakhs of new jobs. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. The 12th International Yoga Day is being celebrated across India and around the world with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group, but it is an expression of human spirit. President Draupadi Murmu also performed yoga at Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh. Addressing the event, the president said, yoga is a celebration of India's great tradition. She said yoga has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life. The National Testing Agency, NTA, has issued guidelines for the students appearing for the NEET UG re-examination today. Over 22.79 lakh candidates will sit for the exam in 551 cities in India and 14 cities abroad. The NTA said entry to the examination centres will close at 1:30 in the afternoon. It has asked the students to carry their admit cards and valid photo ID. The admit cards for the exam can be downloaded from the website neet.nta.nic.in. Talking to media in New Delhi, Union Education Minister Dharmendra Pradhan assured that all necessary arrangements have been made for the smooth conduct of the exam. The 19th Mumbai International Film Festival, MIFF, will draw to a close today. The biennial festival of documentaries, short fiction, animation and AI cinema began on 15th June and will conclude tonight with a grand closing ceremony. One of the key attractions on the final day of MIFF will be the screening of V. Shantaram, the Pioneering Spirit, marking the 125th birth anniversary year of the legendary filmmaker. U.S. Vice President J.D. Vance has arrived in Switzerland. Mr. Vance earlier said the United States will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation from Tehran is also on the ground and has warned that talks won't advance without first addressing Lebanon. Hours after Tehran said it closed the Strait of Hormuz because of Israel's attacks in Lebanon, and warned that little might be achieved if the fighting doesn't stop, U.S. President Donald Trump, in response, unleashed a new threat to impose American controls in the crucial waterway. In cricket, India A were 291 for 6 wickets in 42 overs against host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
5: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 हो चुके हैं, वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचार का।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। योग दिवस पर राज्य भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी ने योग के नियमित अभ्यास का किया आह्वान। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए झारखंड को 2 राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड मिले। जच्चा बच्चा की डिजिटल निगरानी और रेफरल व्यवस्था में सुधार के लिए मिला सम्मान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज होने वाली नीट परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों को दी शुभकामनाएं। कहा, परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी, बिना किसी भय के परीक्षा दे अभ्यर्थी। शहीद पुलिसकर्मियों और जवानों के बच्चों के लिए रांची में बनेगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। और खूंटी में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान PLFI कमांडर घायल होकर गिरफ्तार। अभियान में 6 अन्य उग्रवादी भी दबोचे गए। जंगल में तलाशी अभियान जारी। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज राज्य भर में बड़े पैमाने पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने लोक भवन में बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में 253 लोगों के साथ योग किया। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि आज योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने झारखंड में योग को आगे बढ़ाए जाने की भी घोषणा की। डॉक्टर अंसारी आज रांची में आयोजित योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने योग के महत्व को रेखांकित किया।
7: आप योगा करोगे तो स्वस्थ रहोगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। योगा करने से मन स्वस्थ, बुद्धि बढ़ेगी और अनुशासन आएगा और आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी एनर्जी लेवल हाई होगी। तो योगा तो भारत की संस्कृति, महर्षि पतंजलि का जो योगा है आज हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के घर घर में पहुंच गया। कोरोना में देखा हम सब, तो योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से देश स्वस्थ रहा।

0: नाम का युद्ध हम
1: वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में आयोजित एक कार्यक्रम में योग को स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी बताया।
2: स्वस्थ जीवन के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्तर पर इस बात को सिद्ध किया है और विश्व ने माना है और आज लगभग 177 देश अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस के रूप में मना रहा है। स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन होना जरूरी है और स्वस्थ मन के लिए योगा करते हैं। जब नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे।
1: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज राज्य के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। साहिबगंज, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो, देवघर, जामताड़ा, गुमला, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा सहित कई जिलों में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा बलों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने योगाभ्यास में भाग लिया। कार्यक्रमों में योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया तथा लोगों को योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि नियमित योगाभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, तनाव कम होता है तथा कई बीमारियों से बचाव संभव है। राज्य भर में आयोजित कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने भाग लेकर योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए झारखंड को 2 श्रेणियों में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला पुरस्कार जच्चा बच्चा की डिजिटल निगरानी के माध्यम से रेफरल दर में 50% वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मिला है, जबकि दूसरा पुरस्कार स्वास्थ्य जागरूकता वाहनों के जरिए जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए प्रदान किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आज आयोजित नीट यूजी पुनर्परीक्षा में 22 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दे। इधर रांची समेत राज्य भर के 67 केंद्रों पर स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के टेंडर ग्राम स्थित झारखंड जगुआर कैंप में शहीद पुलिसकर्मियों और जवानों के बच्चों के लिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस विद्यालय में पहले से 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध रहेगी। 6 एकड़ भूमि में बनने वाले संस्थान में शिक्षकों और कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था भी होगी। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है।
3: ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: धनबाद में कोयला परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के लिए कपड़ा उद्योग लगाया जाएगा। इसके तहत एक फैक्ट्री स्थापित होने से 1100 लोगों को रोजगार मिलेगा। BCCL के CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि उद्योग के लिए जमीन समेत अन्य सुविधाएं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड उपलब्ध कराएगा, जबकि उद्योग की स्थापना निजी कंपनियां करेंगी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर निजी कंपनियों और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई है। खूंटी जिले से पुलिस ने एक अभियान के दौरान नक्सली कमांडर समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि इलाके में सर्च अभियान जारी है।

0: सूचना प्राप्त हुई जीए और इसके साथ ही कुछ एक बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से इकट्ठा हुए हैं। छापेमारी किया गया तो वहां पे ये व्यक्ति हम लोगों को पकड़ा गया और उनके पास से दो हथियार मिले। हथियारों के साथ 21 गोलियां भी प्राप्त हुई। पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा बताया गया कि इसके पास कुछ और भी हथियार और गोलियां हैं। कुल मिला के 4 हथियार हम लोगों को बरामद हुए हैं। 28-29 गोलियां भी हम लोगों ने बरामद। इनके पास से जब्त में हम मोबाइल भी मिले हैं, PLFI के बहुत सारे पर्चे मिले हैं।
1: देवघर जसीडी बाईपास लाइन के निर्माण कार्य के कारण आसनसोल रेल मंडल में कल और परसों कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अगले 2 दिनों के लिए जसीडी झाजा, जसीडी क्यूल तथा देवघर झाजा पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से किया जाएगा। धनबाद पटना एक्सप्रेस, आनंद विहार डांकुनी स्पेशल और हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस को भी रास्ते में नियंत्रित कर चलाया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पूर्व ट्रेनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज से अगले 2 दिनों तक के लिए आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। योग दिवस पर राज्य भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी ने योग के नियमित अभ्यास का किया आह्वान। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए झारखंड को 2 राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड मिले। जच्चा बच्चा की डिजिटल निगरानी और रेफरल व्यवस्था में सुधार के लिए मिला सम्मान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज होने वाली नीट परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों को दी शुभकामनाएं। कहा, परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी, बिना किसी भय के परीक्षा दे अभ्यर्थी। शहीद पुलिसकर्मियों और जवानों के बच्चों के लिए रांची में बनेगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। और खूंटी में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान PLFI कमांडर घायल होकर गिरफ्तार। अभियान में 6 अन्य उग्रवादी भी दबोचे गए। जंगल में तलाशी अभियान जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

आप सुन रहे थे वीर दुर्गादास फिल्म का ये गीत। आपको बताना है कि ये किस की रचना थी। वैसे ये तर्ज थी SN त्रिपाठी की, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थीं। और आपको राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य भी बताना है कि कौन सा है श्रोताओं, और क्या आपने दाल बाटी चूरमा और घेवर का स्वाद चखा है, तो ये भी आप बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो राजस्थानी रंग छा जाएगा। ऐतिहासिक किलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किले इस राज्य में मिलेंगे। शौर्य पराक्रम का जीता जागता उदाहरण है राजस्थान। ये राज्य तभी तो इसे कभी भी जीता नहीं जा सका, या फिर इस पे अलग तरीके के किले नहीं बनवाए जा सके। वैसे बहुत सारे किले हैं वैसे यहाँ पर श्रोताओं, और तमाम बहुत कुछ है इबारत पढ़ने से पता चलता है। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर की इबारत में मेरे रंगीलो राजस्थान की महिमा का खूब बखान किया गया है। तो आप सब पधारो मारे धोरा रोर देश राजस्थान में। राजस्थान की संस्कृति, रहन सहन, परिधान, खान पान और वहाँ की भाषा बहुत मीठी है। व्यंजन में चूरमा बाटी, गत्ते की सब्जी और कैर सेंगरी की भाजी का क्या कहना। मारो राजस्थान सबसे निरालो, जयपुर की चुनरी का क्या कहना। ऐसा है मारा राजस्थान, धोरा की धरती, अब तो प्रकृति भी यहाँ खूब मेघ बरसा रही है। और गीत को भी इन्होंने चुना है, तू चंदा मैं चांदनी, पीतल की गागरी। एक और श्रोता लिखते हैं, कहते हैं जीवन में एक बार जरूर कश्मीर जाना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में एक बार राजस्थान भी जाना चाहिए। मैंने भी सपरिवार एक बार राजस्थान के दर्शन किए हैं, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। खास तौर पर मुझे राजस्थान की रेत के दर्शन करने थे, और कई वर्षों की इच्छा पूर्ति हुई। जैसलमेर में समुद्र में जहाज पर चलते समय जिस तरह चारों ओर पानी ही पानी दिखता है, वैसे ही यहाँ चारों ओर सिर्फ रेत दिखती है। एक नया अनुभव प्राप्त होता है, रेत पर जीप से घूमा जाता है, घूमते हुए इक्का दुक्का घर भी दिखते हैं। मैंने जीप रुकवा कर एक घर के अंदर जाकर उन लोगों के रहन सहन, भोजन इत्यादि के बारे में जाना। जी हाँ, और इन्होंने आगे भी बहुत लंबी चौड़ी इबारत लिखी है। तो एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत सुनना, संगीत को महसूस करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी कभी एक ही धुन किसी के लिए सिर्फ संगीत होती है, और किसी दूसरे के लिए एक याद या भावना या एक कहानी की तरह होती है। आपको कलाकार पहचानने हैं श्रोताओं, और फिल्म

संध्या और प्रशांत पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी सेहरा, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। और इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था वीर दुर्गादास का, आपसे गीतकार पूछा था, जी हाँ आपने ठीक लिखा है, भरत व्यास का लिखा नगमा था, एस एन त्रिपाठी की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं एक महीना श्रोता लिखती हैं कि एक महीना जोधपुर में मैं रही थी, तब जैसलमेर में घूमी थी। वहाँ का रहन सहन, खान पान, वहाँ की रंग बिरंगे बाजार ने बहुत मनमोहा था। बहुत तीखा खान पान है वहाँ के पकवान, घेवर, मावा, कचौरी, मिर्ची पकौड़ा, गट्टे की भाजी का मजा लिया था। जी हाँ, आपने रंग बिरंगे बाजार की बात की है श्रोताओं, तो राजस्थान में आप क्या बता सकते हैं मीना बाजार कहाँ लगता है, तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं, हम जब छोटे थे सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब राजस्थान गए थे मामा जी की बारात में। वहाँ का तापमान, पानी का स्वाद, तीखे भोजन की विविधताएं, अनोखी वेशभूषा, रेगिस्तान की गर्म रेत और कुछ विशेष स्थानों की याद अब तक मन मस्तिष्क में अंकित है, जिसमें मुख्यतः चौमुंडा देवी मंदिर, पुष्कर नाथ, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, जहाँ यहाँ कौन सा मेला लगता है ये अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए, क्योंकि आपने इस मंदिर की बात की है। मंदिर के दर्शन भी किए और देवी के दर्शन किए और चमकीले पत्थर अब तक सहेज कर रखे हैं, जी हाँ आपने लाए होंगे। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, घूमर कलबील या नृत्य, भवाई नृत्य राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य और दाल बाटी चूरमा, खेर सांगरी की सब्जी, गट्टे की सब्जी और भी बहुत से लोकप्रिय व्यंजन हैं यहाँ के। जी हाँ, तो क्या आप श्रोताओं राजस्थान का कोई सुंदर सा पंछी बता सकते हैं? एक और श्रोता लिखती हैं कि रेगिस्तान में मीलों तक फैले रेत के टीले जिसे धूर कहा जाता है के साथ साथ चट्टानी पथरीले मैदान भी शामिल हैं। थार में कई खारे पानी की झील भी है। सब आप ही बता दे रहे हैं श्रोताओं, तो फिर बताइए खारे पानी की कौन सी मशहूर झील है ये भी आप बता दीजिए, जिसमें, जी हाँ इन्होंने लिखा है लेकिन मैं ये आगे नहीं पढ़ूंगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि राजस्थान का सबसे प्रमुख और राज्य नृत्य घूमर है, इसे नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जैसे कलबेलिया, तहताली, भवाई और गैर। राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य घूमर है, इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर और राजस्थानी संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। हालांकि राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति विविधता के लिए जाना जाता है, इसीलिए यहाँ कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य भी प्रचलित हैं।

गीत में श्रोताओं, एक दुल्हनिया हैं जिनके सर पे घूंघट है, आप क्या उन्हें पहचानते हैं? इस कलाकार का नाम आपको बताना है।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म राजपूत से, राजेश खन्ना और जो दुल्हन थी वो नज़र आती हैं हेमा मालिनी। श्रोताओं, और इसका जवाब भी हमारे श्रोताओं ने खूब दिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये जून का महीना गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना, ऐसे में विविध भारती के सुरीले सफर जैसे प्रोग्राम मन को तसल्ली देता है। आज इबारत पढ़ते हुए हमारे राजस्थान के टूर की याद आई, रेगिस्तान राजस्थान का नाम सुनते ही गर्मी महसूस हुई, लेकिन हम दिसंबर महीने में गए थे इसलिए ठंडी उतनी ही थी जितनी गर्मी के दिनों में गर्म हवा होती है। पीतल की मुरी गागरी और मंगवा दे, और पीतल की मेरी मंगवा दे कहकर हमने वहाँ के लोकल ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाए। जहाँ लोकल ड्रेस जहाँ की भी हम घूमने जाते हैं वहाँ की तो होती है, तो इसकी अगर कोई यादें आपके पास हों तो आप हमसे बांट सकते हैं। वैसे हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि चेतक कविता क्या आपने पढ़ी है, तो इस बारे में हमें ज़रूर लिखें और चेतक कौन था। एक और श्रोता लिखते हैं, बींद इबारत में एक शब्द है, बींद मतलब राजस्थानी में दूल्हा, जी हाँ, और बींदनी बोलते हैं दुल्हन को। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर में राजस्थानी छटा के बिखेरेंगी रंग, यहाँ की संस्कृति पहनावा खान पान बहुत ही शानदार है, महिलाएं आज भी हाथों में सफेद चूड़ियां पहनती हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मिल खाती हैं, जब खुदाई हुई तो कई साक्ष्य मिले जो अब भी राजस्थान में मौजूद हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है राजस्थान की संस्कृति।

0: चांदी।
1: आप सुन रहे थे ये गीत मेरा गांव मेरा देश से, जहां छोटी छोटी छतरियां दिखाई गई हैं श्रोता, और आशा पारेख होती हैं, धर्मेंद्र होते हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी एक छतरी है जो कहां स्थित है ये आपको बताना है। कुछ हमने सवाल आपसे पूछे थे सोने की मीनाकारी के और कुंदन या और भी जेवरों के, तो खास अगर बात की जाए सोने की मीनाकारी और कुंदन के जड़ाऊ जेवरों की, तो बीकानेर बड़ा ही प्रसिद्ध है यहाँ का और इन्हीं चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे लाख की चूड़ियों का भी कारोबार बहुत बड़ा होता है राजस्थान में, तो क्या इस शहर में आपने कुछ खरीदारी की है? ये लाख की चूड़ियाँ कहाँ मिलती हैं राजस्थान में ये आपको बताना है। और झीलों की नगरी के बारे में हमने आपसे पूछा था, तो राजस्थान में उदयपुर कहा जाता है, लेक सिटी पैलेस, ऐतिहासिक इमारतें, जग मंदिर और तमाम चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। और छतरी के बारे में आपको बताना है, और कठपुतली जो होती है यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध होती है, तो कठपुतली की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध जो भारत की कठपुतलियों के नाम हैं वो आपको बताने हैं। और चेतक के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि क्षमा चाहूंगी, चेतक की वीरता कविता श्याम नारायण पांडे की है, मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा था, कोई बात नहीं, लेकिन चेतक के बारे में तो सभी जानते हैं और हमने भी सबने कविता पढ़ी है। चेतक महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे, इस बारे में लिखा है हमारे एक श्रोता ने, और हल्दी घाटी का युद्ध तो सभी को याद होगा, सबने पढ़ा होगा इस बारे में, तो चेतक की वीरता का क्या कहना। एक श्रोता लिखते हैं कि हमने चेतक कविता पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि महाराणा प्रताप सिंह जी का घोड़ा जिसका नाम चेतक है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। इसके आगे इन्होंने नहीं लिखा, तो रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, इस तरह की ये कविता थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। एक और श्रोता लिखती हैं कि सूरत मेरे फ्लैट के सामने तपती नदी बहती है, सर्दियों में खास करके वहां साइबेरियन पक्षी आते हैं, चार महीना बसेरा करते हैं, हमें ये नजारा देखने का मौका हर रोज मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान का रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर के बीच स्थित है, जो दुर्लभ जीवों जैसे चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है। जैसलमेर के सैम और खुरी के टीले डेरा डालने और ऊंट सफारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सफारी की कुछ यादें हो तो आप जरूर लिखिए हमें श्रोताओं। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ये कलाकार आपको पहचानने हैं, और क्या ये इस गीत की शूटिंग के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?

हेमा मालिनी और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे धर्मात्मा फिल्म से। वैसे इस गीत की शूटिंग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अफगानिस्तान के रेतीले इलाकों में शूट हुई ये पहली फिल्म मानी जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जोधपुर कभी जाएं तो बिना रस के गुलाब जामुन जरूर खाएं, तो ये तो नई बात पता चली है। और पीतल की मोरी गागरी इस गीत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर राजस्थान में हम जो है वो घूमने जा रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने कुछ फादर्स डे के बारे में लिखा है। जी हाँ, फादर्स डे की आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज फादर्स डे के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखती है, चेतक कविता स्कूल टाइम में पढ़ी है, चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत ही साहसी और फुर्तीला। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी और अगर बोलना शुरू करें शायद अभी तो आधी ही याद होगी इन्हें। और एक और श्रोता लिखते हैं कि रेगिस्तान की मखमली रात में चांद जब रेत पर उतरती है तो केसरिया रंग में रंगा राजस्थान अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सामने आ जाता है। और मेले की रौनक, चुनर के रंग, महल, अटारियां सबके बारे में इन्होंने लिखा है। और हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि मीना बाजार कहाँ लगता है राजस्थान में। जी हाँ, जयपुर में लगता है। और दो कठपुतलियों के बारे में हमने आपसे पूछा था जो राजस्थान की तो नहीं मानी जाती है लेकिन राजस्थान कठपुतलियों के लिए बहुत ही मशहूर है। और इस रिवाज को, इस परंपरा को हम सबको बढ़ाए रखना है, बनाए रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भारतीय कलाकारों की जो कलाकारी है बड़ी ही कम अब देखने में आती है। और कठपुतलियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे जयपुर में लगता है मीना बाजार।

कैफी आजमी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना मैन पुरुषोत्तम की आवाजों में दो बूंद पानी फिल्म से, जो सिमी ग्रेवाल और सिखियों पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर कई ऐतिहासिक छतरियां, स्मारकी गुंबद मौजूद हैं। हालांकि राजस्थान की कला संस्कृति में शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी सीकर जिले रामगढ़ में है माना जाता है। इसे सेठ रामगोपाल पोद्दार की छतरी के नाम से जाना जाता है। पंचकुला की छतरियां जो हैं वो बड़ी ही प्रसिद्ध है। श्रोताओं, आप इसके बारे में भी जरूर देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी छतरी है और राजस्थान की सबसे बड़ी छतरियों में मानी जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक कविता मैंने पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत शूरवीर बहादुर योद्धा थे वो। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप युद्ध में थे तो चेतक खुद गंभीर रूप से घायल था, तब उसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए बहुत गहरी खाई में छलांग लगाई थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि इन्होंने लिखा है पुष्कर मेले के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में हमने आपसे पूछा भी था। पुष्कर का मेला लगता है और ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ, और ये मेला बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जहाँ तक नमक के रेगिस्तान की बात हमने आपसे पूछी थी, कच्छ की रण जो गुजरात की तरफ है, वो नमक का रेगिस्तान बड़ा ही सुंदर है। खासकर अगर इस जगह को आप चांदनी रात में देखेंगे तो आपको बड़ा ही अलग अनुभव होगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमने आपसे पूछा था। जी हाँ, थार का रेगिस्तान जो है राजस्थान से शुरू होता है और बहुत गुजरात, पंजाब और आगे भी फैला हुआ है, तो ये बड़ी ही सुंदर बातें हैं। और गुलाबो और शिताबो ये दो कठपुतलियां हैं, आप इनके बारे में जानते हैं तो हमें लिखें कहाँ की ये कठपुतलियां हैं।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना, मधुमती और हेलन का नृत्य बड़ा ही खूबसूरत इस गीत में नजर आता है श्रोताओं। और माउंट आबू जो राजस्थान का एक हिल स्टेशन है, यहाँ एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप जानते ही होंगे दिलवाड़ा टेंपल। क्या आपने ये टेंपल मंदिर देखा है तो आप यहाँ की कलाकारी के बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है वो तो कलाकारियों का शहर या प्रांत ही माना जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सांभर झील के बारे में लिखा है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो मुख्य रूप से जयपुर और नागौर जिले की सीमा अजमेर के निकट पर स्थित है। और भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने यहाँ के सुंदर पंछियों के बारे में लिखा हुआ है श्रोताओं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में मीना बाजार मुख्य रूप से जयपुर में आमेर के किले के बाहर और वर्ल्ड ट्रेड पार्क जैसे बड़े मॉल्स में स्थायी बाजार के रूप में मौजूद है। इसके अलावा राज्य भर में लगने वाले त्योहारों मेलों के दौरान समय समय पर विशेष अस्थायी मीना बाजार भी लगाए जाते हैं। यहाँ एक और इमारत है श्रोताओं, इस इमारत के नाम पर विविध भारती का एक कार्यक्रम भी है, क्या आप बता सकते हैं?

0: Tehran, led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, has named Binab 168 in tribute to the 168 victims of the tragic school strike. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions three indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के तीन पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युग चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
1: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
2: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के 3 पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला

0: जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांतिवार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: एसएच बिहारी के बोलों को सुरों में ढलाऊ पिनैयर ने आशा भोसले का गाया सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत से पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया सूरज फिल्म का नगमा, हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्जी, मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

पराया धन फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और गीतकार आनंद बख्शी।

0: एक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीन नौसैनिक जहाजों आईएनएस दोनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का जलावतरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने निर्माता से निर्णायक बनने का मंत्र दिया। श्री मोदी ने बताया कि भारत का रक्षा उत्पादन निर्यात लगातार बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखंड समेत देश दुनिया में आज योग साधना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन के बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का अमूल्य उपहार है, जो शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर स्वस्थ और अनुशासित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो शुरू प्रदान करवाया, वो दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। और निश्चित रूप से ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो अपने जीवन में थोड़ा समय इस काम के लिए निकालें।
0: योग दिवस पर राजकीय समारोह का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोग ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुई और योग को स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी बताया। पाकुड़ में भी कई स्थानों पर योग दिवस के सिलसिले में शिविर के दौरान लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। आयुष विभाग द्वारा आयोजित योग शिविर में उपायुक्त मेघा भारद्वाज और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने योग को भारत की प्राचीन विरासत और अमूल्य धरोहर बताया।
3: हमारे देश की धरोहर है और हमारे देश का मतलब एंशिएंट प्रैक्टिस है, इसको हम कह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आज के भागदौड़ के जीवन में शारीरिक मतलब जो बीमारियां हैं उनको दूर रखने के लिए प्रिवेंटिव बहुत अच्छा काम करता है और मानसिक भी शांति, जैसे अभी हम लोगों ने प्राणायाम किया तो इससे काफी जो है रिलैक्स फील होता है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज दोपहर 2 बजे से ली जा रही है। एनटीए ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए देश भर में अभूतपूर्व सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जरियागढ़ थाना क्षेत्र के तिलमी जंगल में हथियार बरामदगी के लिए ले जाए गए नक्सली संगठन पीएलएफआई के कमांडर श्रवण दास ने एक पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर भागने और फायरिंग की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि अभियान के दौरान 6 अन्य उग्रवादियों को भी दबोच लिया गया है। सुरक्षा बलों ने जंगल से हथियार, कारतूस और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान जारी है। हजारीबाग के सदर प्रखंड स्थित सखिया में आज टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर स्वास्थ्य जांच कराई तथा टीबी से बचाव और उपचार संबंधी जानकारी प्राप्त की। मौके पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने ग्रामीणों को टीबी उन्मूलन अभियान से जुड़ने तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रोत्साहित किया। राज्य में बारिश के बावजूद तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान पारा ऊपर की ओर चढ़ा है। हालांकि अधिकतम तापमान में 2 दिनों बाद थोड़ी गिरावट हो सकती है। राज्य में 27 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01:30 हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम में। कहीं धूप खिली है श्रोताओ, कहीं बादलों के डेरे हैं। दोपहर के इस समय कहीं आराम और गपशप, तो कहीं कुछ कामकाज की मसरूफियत। तो चलिए आपके बीच विविध भारती के गीतों का ये अफसाना जरा हम भी छेड़ देते हैं। देखिए मन चाहे गीत कार्यक्रम का ये गीत कहीं आपकी पसंद का गीत तो नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

शोर मचाए शोर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। और इस गीत की पसंद भेजी हमारे पास रायगढ़ खालापुर रायगढ़ से श्री प्रमोद पाटिल, श्रीमती ज्योति पाटिल, योगेश कुलकर्णी, शर्मिला महात्रे इसी गीत को सुनना चाहते थे। अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, भीष्म दास मानिकपुरी, ये फरमाइश थी छत्तीसगढ़ से। और तिलहारा महाराष्ट्र से उर्वी बेन, नायाब बेन, प्रीति बेन, मनाली निधि सेजल की ये फरमाइश थी।

ये गीत आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे। इस गीत की पसंद भेजी राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभु दयाल खटक ने, और उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर की ये फरमाइश थी।

खिलौना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोता, इस गीत की पसंद की कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। इसी गीत को सुनना चाहा बीकानेर से कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और कोटा से शिखा, सीमा, प्रीति, सपना, संध्या मानस और शालू ठाकुर की फरमाइश थी।

अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी है ये वादा है। अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है तो। अरे रानी माँ से मुझको भी ममता।

धर्मवीर फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी मुकेश की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं, इस गीत को पसंद किया भाटापारा से, छत्तीसगढ़ भाटापारा से गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम, छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्बल देवांगन और शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार, नसीन परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा, हिना कौसर, सितारा और इस गीत की फरमाइश की जालंधर से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। विविध भारती का ये कार्यक्रम है मन चाहेगी।

लता मंगेशकर का गाया फिल्म आंखें का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत है श्रोताओं ये, और इस गीत को पसंद किया इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धामतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम और सावित्री साहू।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार।
2: जुडू।
3: यस सर।
2: बेंजामिन कुछ बता रहा है? कुछ मुंह खोला उसने?
3: नहीं सर, कुछ नहीं बोलता।
2: व्हाट, 48 घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे? दरअसल बात यह है जुडू कि तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है, तभी उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ सी जाती है।
3: क्या क्या कह रहे हैं आप सर?
2: मैं ये कह रहा हूं कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज दो, अपने आप मुंह से बोल फूट पड़ेंगे।
3: मिस्टर थॉमसन, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर क्या करूं, कमबख्त के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रही। बात के बदले कस के सिर्फ खून निकल रहा है।
2: खून के साथ साथ बातें भी निकालनी होगी, इट्स मस्ट, कमिश्नर साहब का हुक्म है। चलो एक बार मैं खुद ही कोशिश कर देखता हूं।
3: यस सर।

0: हेलो मिस्टर मोलाइज, अपने बारे में नए सिरे से कुछ सोचा आपने?
1: अपने बारे में बाला, मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने खुद ही ले रखी है।
0: फिलिस सिलेपी का खून आपने नहीं किया?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने, किन लोगों ने किया, इसे तो आप जरूर जानते होंगे।
1: नहीं जानता।
2: हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को जान से मार डालने के लिए आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी।
1: एक काले आदमी के लिए अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगा है?
0: ये देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
1: कानून व्यवस्था या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन।
0: जासूस समझकर उसे बुलेट से छलनी बना डाला, वाह बहुत खूब।
1: बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है, मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है।
0: कविताएं लिखता है क्यों? यू ब्लैकी रास्कल, उस साथ को हम जॉन्सबर्ग ट्रेजरी लूटते वक्त इसी हाथ में राइफल थी ना? क्यों थी ना?
1: नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी। अगर अगर किसी दिन रही तो समझिएगा, उसे ऐसा करने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है।
0: हम लोगों ने?
1: हाँ, आप लोगों ने। आप लोग बहुसंख्यक काले लोगों के पैरों में बेड़ियां डालकर सारे देश को लूट रहे हैं। मार खाते खाते दीवारों से लग गई है पीठ हमारी, लेकिन लेकिन जिंदा रहने की खातिर अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो क्या ये अन्याय है?
2: 100% अन्याय है।
0: जिडो, इस तरह काम नहीं चलेगा, इसके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे मुंह नहीं खुलता।
2: यस सर।
0: बोलिए, कुछ तो बोलिए मिस्टर मोलेस, नहीं तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। आग की तरह लाल दो सलाखें आपके बदन के कुछ खास हिस्सों पर तबाह कर रखी जाएंगी, कुचला जाएगा उन हिस्सों को सलाखों से। अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो नजारा क्या होगा।
1: आप लोग खुद को शिष्ट समझते हैं, शिष्टाचार का दम भरते हैं, लेकिन लेकिन जी, जंगल के पशु भी शर्माते हैं आप लोगों के व्यवहार से।
2: सर, मैं रेडी हूं।
0: ठीक, देन स्टार्ट।
2: कहिए, फिलिप्स का खून किसने किया? बताइए, कब खून किया, कहां किया?
1: नहीं मालूम, नहीं मालूम,
2: नहीं मालूम,
1: नहीं मालूम,
2: नहीं मालूम, नहीं मालूम।
0: बोलिए बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए ना, ये तो बेहोश हो गया। लगता है सहन शक्ति बहुत ही कम है। होश मिलाओ इसे, बाद में फिर कोशिश करेंगे।
2: ओके सर।

0: ना ना जिनी, तू मुझे खाने के लिए जिद ना करो बेटी। कोई भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा।
1: जरा सा दूध तो पी लो मौसी।
0: ना ना, इस वक्त कुछ नहीं लूंगी बेटी।
1: तुम बैठो, मैं गरम करके लाती हूँ।
0: जेल में बेंच को शायद खाने को भी नहीं देते हो। अब फिर कौन आ गया? क्या बात है, आप लोग फिर आ गए?
2: सॉरी मिसेस मोरेस, आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए।
0: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?
2: बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे।
0: उसके पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल के सीखचों के अंदर बंद किया गया है?
2: फिलिप सिलेपी की हत्या के जुर्म में।
0: झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरे बच्चे ने हत्या नहीं की है। क्यों झूठ मूठ मेरे बेटे को खून के इल्जाम में फंसा रहे हो?
2: हम लोग तो कानून के गुलाम हैं मिसेस मलेज।
0: आप लोगों के कानून तो हमारे जैसे काले लोगों की गर्दन दबोचने के लिए हैं।
2: ओह नो नो नो नो, ये आप लोगों की गलत धारणा है।
0: अच्छा साहब बहादुर, क्या आप लोग कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जिसे बदन पर लगाने से हमारे शरीर के रंग भी सफेद हो जाएं?
2: सुन रहे हो जुडू, मिसेस मोलाइज क्या फरमा रही हैं?
3: हाँ सर, सुन रहा हूँ।
4: अच्छा मान लीजिए, अगर आप लोग सफेद चमड़ी के होते तो क्या करते मिसेस मोलाइज?
0: तो हमारे लिए कांटे वाले तारों से घिरा बांडुस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
3: सर लगता है बेंजामिन ने अपनी माँ को भी तैयार कर पक्का कर दिया है।
2: अरे वो तो करेगा ही जुडू।

0: रविन कावरकर, मिस्टर।
1: नहीं, ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने।
2: मौसी, दूध ठंडा हो रहा है, ले आऊं?
1: नहीं, मैं ही आऊंगी थोड़ी देर बाद।
0: ये कौन बोले? किसी युवती की आवाज लगती है।
1: मेरे एक पड़ोसी दोस्त की लड़की है।
0: जरा उसे बुलाइए।
1: क्यों, उसकी क्या जरूरत है?
0: घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए अब जरा हमें यह भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना जाना है।
2: ये लीजिए, मैं आ गई, देखिए।
0: क्या नाम है तुम्हारा?
2: जिनी पैराम्बा।
0: क्या करती हो?
2: कॉलेज में पढ़ती हूँ।
3: सर, लगता है इसे कहीं देखा है।
2: कहीं सड़क, बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया होगा।
3: ऐसे नहीं, कहीं और देखा है।
0: यस, याद आया, अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी ना?
3: हाँ, वहाँ चुपके चुपके प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी। क्यों, गई थी ना?
0: क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को चाहती हो? अच्छा, तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी?
2: जी हाँ, चाहती हूँ, बहुत तेरे चाहते हैं।
0: पर क्या तुम ये जानती हो कि बेंजामिन जिस हाथ से कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी करता है?
2: जी नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ चारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी।
2: जी, मेरी? अब इसे बीच में क्यों घसीट रहे हैं अफसर साहब?
0: प्लीज मिसेस मुलायर। जिनी, तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर फिर तुम्हारे बीच वापस आ जाए?
2: आप कहना क्या चाहते हैं?
0: मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये चाहता हूं सिर्फ थोड़ी सी मदद जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी। आ, मेरे साथ आओ।
1: नहीं, वो क्यों जाएगी?
0: ओहो, डरने की कोई बात नहीं है।
2: मैं कहां जाऊंगी?
3: मेरे साथ?
1: नहीं
3: सर, मैं ये कह रहा
0: हूं। जिडू, फिर वही बात। आओ चलो जिनी, डरने की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है। हाँ, देखो ना, अब इस बात को उसकी माँ के सामने तो पूछा नहीं जा सकता ना।
1: नहीं, वो नहीं जाएगी। जिनी, तुम अंदर जाओ।
0: नहीं, वो मेरे साथ ही जाएगी।
3: सर, मैं कह रहा था कि
0: जिडू, जबरदस्ती पकड़ के ले चलो इसे।
2: नहीं।
0: It's my order.
2: मौसी।
0: शराब।

लगता है बाहर से मेरा तन, सुलग रहा अंदर से मेरा मन। हर अश्वेत माओं के घर घर में, धरती के कण कण में, अंबर में उमड़ पड़ा लाशों का एक जुलूस, काले ताबूतों का एक जुलूस, रंग भेद के कुत्सित लिए विचार मिले श्वेत गिद्धों को नए शिकार। माओं के कोमल अंशों को नोच, खून सनी है इनकी पैनी चोंच, इन सफेद गिद्धों के दल छाए मन की आग ज्वाला सी बन जाए, फैले चारों ओर आग की ज्वाल, अंगारे बन जाए जयमाल। लगातार 2 सालों से चल रहा है शारीरिक उत्पीड़न।

0: और जारी है स्वीकारोक्ति वसूलने की असफल चेष्टाएं। लेकिन
1: क्या सोच रहे हैं मिस्टर मोलेस?
0: कौन? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं।
1: जरूर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। हाँ,
0: ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है? जो कुछ ना कुछ मुझे सोचना ही रहना होगा। कुछ नहीं सोच रहा हूं मैं। आप लोग जा सकते हैं।
1: किसी के बारे में सोचना क्या आपको अच्छा नहीं लगता मिस्टर मुलाइज? मान लीजिए चीनी के बारे में। कितने दिन हो गए जिनी से आपकी मुलाकात नहीं हुई?
0: जिनी?
1: जी हाँ, जिनी आपकी महबूबा, जिसे लेकर ना जाने कितनी कविताएं आपकी कलम से अब तक निकल चुकी हैं।
0: तो अब आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन की खोज लेने आए हैं? धन्यवाद
1: मिस्टर मोलेज। आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज दो।
0: सरप्राइज मुझे?
1: हाँ। गार्ड, 4 नंबर सेल का दरवाजा खोल दो।

0: कौन? जिनी? जिनी को यहां क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं जिनी को यहां?
1: तुम कैसे हो वेज?
0: जिनी, जिनी, मैं जिंदा हूं जिनी। तुम कैसी हो? माँ कैसी है? अच्छे हैं ना सब?
1: हाँ, ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं।
0: इसे इसे यहाँ क्यों लाए हैं? कहिए कहिए, क्यों लाए हैं इसे यहाँ?
2: फिलिप सिलेपी का खून किसने किया?
0: नहीं मालूम।
2: आपने नहीं किया इसका मुझे यकीन है, लेकिन दल में कौन कौन थे ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम है। बस उतना ही बता दीजिए।
1: बेंच, बेंच, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। मुझे डर लग रहा है।
0: जी,
2: कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, वहां कोर्ट के सामने कहने से भी चलेगा।
1: बेंच, ओ बेंच,
0: जी
1: बचाओ।
0: जी,
1: बेंच,
0: जी,
1: बेंच, मुझे तुम बचाओ।
0: मिस्टर थॉमसन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनी क्या क्या कसूर है, उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, उसे क्यों लेकर आए हैं, बताइए।
2: सिर्फ लेकर ही नहीं आए, अभी तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है।
1: हाँ,
2: बता डालिए, फिलिप्स की हत्या के समय वह कौन कौन थे? कहिए, बोलिए।
0: मिस्टर थॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों की जो मर्जी हो आप कर सकते हैं। मिस्टर थॉमसन, मिस्टर थॉमसन, जितना भी सताना हो मुझे सताइए, पर उसे छोड़ दीजिए।
2: सॉरी मिस्टर मोलाइन, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी की वजह से
0: मिस्टर थॉमसन,
2: आपकी फूल जैसी जिनी को कीड़ों ने काट खाया।
0: मिस्टर थॉमसन, मिस्टर थॉमसन, थॉमसन।

0: taking as well all other aspects into account, Benjamin Molloy has been proved guilty in the eye of law.
1: दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सरकार द्वारा गठित सर्वोच्च अदालत ने अश्वेत तरुण कवि बेंजामिन मोलेयेस को जघन्य नरहत्या, राष्ट्रद्रोहिता एवं सरकार विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त रहने के अपराध में प्राण दंड से दंडित किया है।

0: मिस्टर मोलेस, मुझे सख्त अफसोस है।
1: कौन? मिस्टर थॉमसन।
0: इस वक्त बीती बातें याद कर आपको पछतावा नहीं हो रहा मिस्टर मोलाइस?
1: नहीं, कोई पछतावा नहीं, वजह भी तो नहीं, बल्कि मुझे गर्व है।
0: अब भी वक्त है मिस्टर मोलाइस, अपनी राय बदलकर अगर आप सच्चाई बता दें तो।
1: धन्यवाद। आपको और कोई जरूरी बात न करनी हो तो आप जा सकते हैं।

0: दंडित कवि की मां ने प्रिटोरिया की बोखा सरकार से पुत्र की प्राण भिक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उस आवेदन को ठुकरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत कवि बेंजामिन मोरेस को दी गई मौत की सजा को माफ कर देने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्र नेताओं ने प्रिटोरिया सरकार से निवेदन किया है।
1: वो इंसान नहीं है जिनी, वो इंसान नहीं है। आवेदन निवेदन किसी का भी कोई मूल्य नहीं है उनके पास, कोई चीज उन्हें नहीं छूती।
2: इतने बड़े झूठ को उन्होंने जबरदस्ती अपनी मनमानी जालसाजियों से सच साबित कर दिया। इस तरह का जुल्म नहीं चल सकता।
1: उनके लिए सच नाम की कोई चीज नहीं है बेटी, ना इंसाफी और झूठ उनके कानून है, उनके औजार है।
2: ओ बेंच, तुम्हारी कविताएं कब सच होंगी बेंच?
1: कब कब?

मुझे गर्व है अपने ऊपर, मेरा जीवन गौरव मंडित, जितना जीवन मैंने भोगा मुझे गर्व है उस जीवन पर। मातृभूमि के मस्तक पर लो मैंने अपने क्रुद्ध रक्त से तिलक किया है, बंदी गृह की लौह सलाखा मेरे प्राणों को बंधन में रख सकने में कभी नहीं हो सकती सक्षम। निकल पड़ूंगा मुक्ति राह पर, मुझे मिला था मात्र एक जीवन जो मैंने सौंप दिया है स्वतंत्रता को।

18 अक्टूबर 1985 को सारे विश्व के जनमत को ठुकराकर जोहान्सबर्ग के केंद्रीय कारागार में स्वाधीनता संग्राम के सिपाही रंगभेद नीति का विरोध करने वाले कवि बेंजामिन मोलहेस के प्राण दंड के आदेश को क्रियान्वित किया गया।

0: Bendy! Bendy, where are you, Bendy? Bendy, Bendy, Bendy! आप लोग मेरे बेंच को सिर्फ एक बार देखने दो, सिर्फ एक बार देखने दो।
1: हमें अफसोस है मिसेस मुलाय, सब कुछ खत्म हो चुका है। बेंजामिन अब सिर्फ एक लाश भर है।
0: खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर उसका निस्तेज ठंडा शरीर ही मुझे दे दो। मैं केवल एक बार देखूंगी उसे, सिर्फ एक बार देखूंगी।
1: सचमुच मैं बहुत दुखी, लाश देने का ऑर्डर नहीं है।
0: ऑर्डर नहीं है साहब, मैं उसकी माँ हूँ। माँ, वो मेरा खून है, उसे 28 सालों तक मैंने पाला पोसा है। मैं माँ होकर अपने मरे बेटे का मुंह तक नहीं देख सकती साहब।
1: Really? We are sorry.
0: बेंजी, अपनी कविता की कापियां भी तू ले जा, बेंजी, ये सारी कापियां ले जा, ये ले सब ले जा।
2: मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का। मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।

मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: उस

0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखंड समेत देश दुनिया ने आज योग साधना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन के बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का अमूल्य उपहार है, जो शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर स्वस्थ तथा अनुशासित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। योग दिवस पर राजकीय समारोह का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। राजधानी रांची समेत राज्य के 67 केंद्रों पर नीट यूजी की पुनर्परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा के सुचारू संचालन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इधर रांची के नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। खूंटी जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता मिली है। जरियागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में नक्सली संगठन PLFI के टॉप कमांडर श्रवणदास घायल हो गया। वहीं संगठन के आधा दर्जन सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्री बरामद किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया थाना क्षेत्र में आज दो मालवाहक वाहनों के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए। दोनों चालकों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: दोस्त यूनुस खान और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, जो एक और बहुत ही खास शख्सियत को याद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। कार्यक्रम का नाम ही उजाले उनकी यादों के है, तो आज का कार्यक्रम है उजाले सदाशिव अमरापुरकर की यादों के। और ये उजाले बांटने के लिए मौजूद हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। बहुत बहुत स्वागत रीमा जी।
4: धन्यवाद धन्यवाद।
3: पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में आते हुए जो पहली फीलिंग है वो क्या है?
4: आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियोज में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, इससे बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामास, एड फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी 2 शोज कर चुकी हूँ, जिसमें मैं वॉइस आर्टिस्ट थी। और सबसे ज़रूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है जो उन्होंने आकाशवाणी के साथ की है,
3: परभणी में।
4: तो वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके, तो ये टिके ही कहना सही होगा, बिकॉज उनकी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि वो जॉब करे। क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी, तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी।
3: ये सोचकर कितना मजेदार लगता है कि वो मराठी में बोलते होंगे आकाशवाणी का ये परभणी केंद्र है।
4: और उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी, आज भी है। मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स की तो हमारी आंखें भर आती है। उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की, तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे। और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब तो ठीक ही बात है।
3: वाह वाह वाह। ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो?
4: हाँ, तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसा मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे।

दिमाग में 24 घंटे वही चलता था। और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मजे वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़े। लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की, वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था। तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं ये सुनंदा ने करना चाहिए हमारे साथ काम, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी। और फिर वो थिएटर में मम्मी जो घुस गई तो फिर साइंस वायंस सब पीछे रह गया, थिएटर ही चलता रहा।

0: लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्यानगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूँ। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी। उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई, और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, वहां पर जॉब करती थी। तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि
1: अपने मन का जियो।
0: हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूंगी, मैं कमा रही हूँ, अपने बच्चों को हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी 2 बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी। हाँ, तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी, और पापा का ऐसा था, वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में, और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया।
1: वेरी गुड।
0: हाँ, और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया ऐसे ऐसी ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरे मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ उस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफ कोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर। और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में।
1: वाह।
0: तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी, तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त, जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की, एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, मतलब विशेषतः मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर्स है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझ में क्या है, शायद मुझ में कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है।
1: उबारा है।
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप, हमारी फैमिली का इस तरह से
1: कितनी
0: है।
1: सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहां सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहां वो उनके रास्ते एक साथ हुए। कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहां ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है? वो कोई एक मोमेंट था जहां ये हुआ?
0: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला सांब जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब। तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक, और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा। पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी,
1: पहला कदम उनकी
0: पहला
1: तरफ से नहीं
0: कदम
1: आना था।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया, लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, तो वो दोस्तों के सामने खोलेंगे जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा,
1: तमाशा
0: इतना
1: बन
0: डर
1: जाएगी।
0: मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी, तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय, और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है। और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है मैं जॉब कर रही हूं, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे। और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई, लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
1: वाह वाह।
0: तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
1: क्या प्यारी
0: तो
1: बात है। यहाँ एक बहुत क्यूट बात सामने आई है और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हम जिस समय और समाज में हैं वहां ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया, उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया है, इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ ओके, तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं, खुल
0: ओके
1: मतलब उतना सा। खुलभर दुधाची कहानी, सो उतने से दूध की ये कहानी है,
0: हाँ,
1: ये
0: सवाल
1: है।
0: आता है कि ये आखिर
1: हाँ
0: क्या है
1: क्या
0: ये?
1: है, राइट। श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में, या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं, वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहां पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा, वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है, तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं वहां, फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने? बोले नहीं नहीं मैं अभी जा ही रही हूं। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियां पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया, वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया।
0: वाह,
1: तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है। ओके,
0: वाह वाह
1: सो
0: वाह,
1: बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे, तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है, बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला, और दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते, फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई आते एज ऑफ 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और
0: वाह,
1: अभी ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा ने भी, पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है, वो उस विश्वास की वजह से है।
0: बहुत ही सुंदर घटना है ये, जो किताब के नाम की घटना है और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है, ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए हैं तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे,
1: सही बात
0: क्योंकि
1: है।
0: बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी।
1: राइट।
0: दोनों की बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही। पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं।
1: राइट, सो उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं
0: जी।
1: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी अणी बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजेट कॉम्पिटिशन होती थी। ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी, तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था। और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विद ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं, मतलब मम्मी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी, तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था, अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल। तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
0: बहुत सही,
1: ठीक है,
0: बहुत ही सही।
1: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था। और उस समय लाइट चली गई तो माइक नहीं थे तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कंपटीशन में वो थी तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिपसिंग किए स्टेज के ऊपर।
0: वाह वाह, क्या प्रयोग।
1: इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ प्ले के लिए। जो भी डेट चाहिए जब भी चाहिए वो अवेलेबल होती थी।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग अलग शहरों में गांव में जाना होता है। उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी, उनकी बात करते हैं।
1: उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे, वो निर्देशक भी थे। राइट, सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखर एका राजा जी ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकायची ये भी एक था, पर काही स्वप्ने विकायची थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था, बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूँ, जैसे छिन्न का बहुत जिक्र मिलता है, हैंड्स अप का जिक्र मिलता है, काही स्वप्ने विकायची अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसका भी खूब जिक्र मिलता है कि अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
1: किया है,
0: कामयाबी।
1: तो काही स्वप्ने विकायची ये जो प्ले था ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था। तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं और उस वक्त पापा की उम्र थी 23-24 ज्यादा। उस समय उन्होंने काफी सारे उस पे INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड जीते थे उस एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, यू नो उम्र में ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उस समय पापा की आंखें चली गई बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था
0: और वो भी पापा के निर्देशन में.
1: एग्जैक्टली. तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को, क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट दोनों चीजें हुई थी. उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान. कन्यादान में डॉक्टर श्रीराम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय.
0: बिल्कुल.
1: और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें. छिन्न और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टेब्लिश किया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे. और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है.
0: ऐसा हम उस
1: मुझे
0: दौर की बात कर रहे हैं जब टेलीविजन उस तरह से
1: नहीं आया था
0: और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज और उनकी दास्तानें आज तक कही जाती है.
1: करेक्ट करेक्ट. तो ये प्ले था. उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था, बखरे का राजा जी. तो बखरे का राजा जी ये जो प्ले था, इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे, वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था. पर उस समय वो प्ले चला नहीं. कमर्शियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल और INT को काफी लॉसेस झेलने पड़े थे बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था. तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया अब मैं जो करूंगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूंगा. पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने. तो इसलिए उन्होंने दो प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी. एक प्ले तो था छू मंतर जो उन्होंने डायरेक्ट किया था. और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेरडे को फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था.
0: गजब.
1: इट वॉज इज लॉन्च. तो और वो प्ले बहुत चला बिकॉज इट वॉज अ आउट एंड आउट कॉमेडी और बहुत मजा आया लोगों को. और एक लक्ष्मीकांत बेरडे जैसा कलाकार आया, पापा थे, लक्ष्मीकांत बेरडे थे, तो इट

0: अप लाइक हाउ। उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने, जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसे पांच छह बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट उसमें थे, और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले। और दैट वाज अ हिस्टोरिकल प्ले, मैं इसलिए
1: बिल्कुल
0: कहूंगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निहलानी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंड्स अप का प्ले देखो, बिकॉज उस समय निलानी जी अर्धसत्य का कास्टिंग कर रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है ये तो पता था, बिकॉज तेंदुलकर साहब ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है, ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता है, तो तुम देखो। तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले, और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की।
1: वाह
0: और फिर उसके बाद तो इट इज जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है। उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया और वो काफी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए। तो थिएटर वो करते रहे पर बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बाद में वो करते रहे।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए वो हैंड्स अप, ये एक जो प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड्स अप का ये एक मजेदार किस्सा है। उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी, तो दिन में दो दो तीन तीन शो लगते थे एक प्ले के। तो और उस वक्त जैसे अब है, मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था। आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पापा के पास उस वक्त एक टू व्हीलर थी, तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था। और ये मैं उस समय की बात कर रही हूं जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये सब इतना अच्छा नहीं था बंबई में।
1: हाँ जी
0: तो पापा स्कूटर पे जाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए, और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके। और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे, उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है, कुछ अर्जेंट काम होगा, तो सॉरी सॉरी सर करके तो ये कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं, कि वो
1: वाह
0: उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस, और उन्हें
1: क्या
0: कुछ नहीं
1: प्यारी बात
0: दिखता।
1: है। वाह, यहां भी गाने की जगह बन रही है, और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहां पर।
0: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है, मेरे महबूब में क्या नहीं,
1: वाह
0: वो
1: वाह
0: वाला
1: वाह, क्या बात क्या बात क्या बात, सुनते हैं ये गाना।

0: बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर, और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं आपसे सुनना चाहता हूं।
1: तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे.
0: बिल्कुल
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था. रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे ये बहुत अलग था. तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी, पर सुहास अउचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था. एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया. और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे.
0: गजब।
1: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है ये बहुत बड़ी बात थी. तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था. जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो,
0: वाह वाह,
1: बस उतना ही. तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था. दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली, तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे,
0: किस
1: तो
0: इलाके में?
1: अंधेरी में ही लिया था उन्होंने बिकॉज उस वक्त बैंड्रा बहुत महंगा था, तो इसलिए उन्होंने अंधेरी में लिया था. तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था. और 2 साल बाद वो घर मालक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है. तो रातों रात एक हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है. तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर. उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम. उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए. तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए. उस समय चव्हाण साहब सीएम थे. उन्होंने वो लेटर देखा और 1 मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया. उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था
0: आर्टिस्ट
1: कलाकारों
0: का।
1: के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए. तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली नगर, वहां पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाड़ा का मिला. तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वाज अमेजिंग. जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं. तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही, मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया. तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो या उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 थी,
0: हाँ, उसकी बात आगे करेंगे।
1: उसकी आगे करेंगे, पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 सीन थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे,
0: बिल्कुल
1: रामा शेट्टी छा गया था कैरेक्टर, तो वो फिल्म हो. तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य साधारण महत्व हमारी पूरी फैमिली की लाइफ में है.
0: बिल्कुल। एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अर्धसत्य में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें।
1: उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार कलाकार होता है. क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं, राइट?
0: बिल्कुल
1: सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे

0: से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है इस तरह से, और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना, उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला। और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे। हालांकि उस वक्त बात ये हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर हैंड्स अप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था, और ये रामा शेट्टी का रोल इन्हें ऑफर किया गया था। तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था, पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा। तो उन्होंने कहा था, तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो, दैट डज नॉट मैटर, ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत। तो वो पापा ने सुनी उनकी बात और ही इज वेयर ही रीच्ड।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक कलाकार की ताकत ये है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो, अपनी मौजूदगी, अपनी आमद को कैसे
0: निश्चित,
1: साबित किया जा सकता
0: सही
1: है।
0: बात
1: उसकी
0: है,
1: मिसाल है अर्धसत्य। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास रच दिया।
0: राइट।
1: लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी,
0: नहीं थी
1: तो
0: तो
1: पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी, वो कैसे मिली उसका जिक्र कीजिए।
0: वो कैसे मिली इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी,
1: जी
0: लेकिन पूना में उस वक्त पापा रहते थे ज्यादा करके, और वहां पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने कास्टिंग में उन्हें तिलक का रोल दिया गया था, और पापा उस वक्त एकदम पतले, दुबले पतले से ऐसे थे, तो जयू और नचिकेत पटवर्धन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त। तो आप करोगे? उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, नो प्रॉब्लम, चलो। मतलब पापा कहते थे कि अभी दुकान ही खोलकर बैठे हैं, तो जो आएगा वो करना तो पड़ेगा, इस तरह
1: यस
0: से उन्होंने वो किया था। तो लेकिन उन्होंने वो रोल किया उस वक्त, जयू और नचिकेत पटवर्धन ये अभी तो बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड ये है, पर वो भी काफी यंग थे उस वक्त। और फिल्म में मुझे याद है पापा ने बाद में जब राज से स्वराज तक में लोकमान्य तिलक का रोल किया, तब उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की थी, क्योंकि उन्हें समझ में आया था कि ये जो फिल्म हमने की है जयू नचिकेत के साथ, इसमें हालांकि मैं तिलक लग रहा हूं फीचर्स के तौर पर, लेकिन जो उसका क्रिटिक आया था वो ऐसा आया था कि मैं मराठी में ये वाक्य कहती हूँ, यजतला लोकमान्य टिळक हा रामोशा सारखा दिसतो। रामोशी मतलब जो क्लीनर्स होते हैं ना ऑफिसेज में या घर में, उन्हें रामोशी कहा जाता था एक जमाने में, अब तो नहीं कहते कोई, तो इस तरह से वो दिखता है। तो इसलिए उसके बाद जब पापा ने राज से स्वराज तक की, जब उन्हें फिर से एक बार तिलक करने का मौका मिला, लोकमान्य तिलक का किरदार निभाने का मौका मिला, तब पापा ने बाकायदा 6-8 महीने, उस समय ये नहीं होता था, लेकिन जिम जाकर, बिकॉज लोकमान्य तिलक की जो बॉडी थी ही वॉज वेरी वेल बिल्ट, तो इस तरह से दिखने के लिए पापा ने वो सारे एफर्ट्स लेकर वो काम किया हुआ था। ये फिल्म के बारे में जब भी पापा से बात होती थी तो वो कहते थे मैं तो थ्रिल था कि मुझे फिल्म में लिया है। हाँ, बिकॉज उनकी उम्र भी काफी कम थी उस वक्त। और क्या करना चाहिए जब आप कोई इस तरह का किरदार, जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंसान का किरदार जब आप निभा रहे हो, तब क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें उन्हें उस फिल्म से समझ में आई। आज भी जब वो दूरदर्शन पे वो फिल्म लगती है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच।
1: बिल्कुल, राज से स्वराज का जो जिक्र आया है, मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा और पढ़ा है कि बहुत ही प्रिय रहा है ये रोल उनके लिए।
0: हाँ,
1: और जब भी कभी उनसे ये पूछा गया कि आपके फेवरेट रोल्स कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम मशहूर रोल्स को छोड़ के इसका जिक्र किया है, वो क्यों है?
0: क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज से स्वराज तक में जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है, ये एक उनके लिए एक लर्निंग कर्व रहा है। 22 जून 1897 ये फिल्म में जयू नचिकेत पटवर्धन उन्हें डायरेक्ट किया था लोकमान्य तिलक की भूमिका में, और यहां पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था राज से स्वराज तक में। अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है,
1: बिल्कुल
0: अलकाजी सर जिन्होंने एनएसडी जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना, उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था। और उस समय ना पापा और 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में, एज एन एक्टर ऑल्सो ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम, जब राज से स्वराज तक हुई थी, तो जब उन्हें फिर से चांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, अभी
1: जो
0: मैं
1: कसर रह गई
0: जो
1: है।
0: कसर रह गई है वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा।
1: यस
0: मुझे याद है उन्होंने वो विग से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी, अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्डअप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था उस वक्त। 2 दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर 2 दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था। तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था। पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था 1 महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है। हाँ एग्जैक्टली तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकालकर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए हैं।
1: ओके, क्योंकि
0: हाँ तो
1: कोई रास्ता नहीं था।
0: एग्जैक्टली, पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व इन द स्क्रिप्ट, और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वॉज अ वोरेशियस रीडर, मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था। तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था, इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा। और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राज से स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से। तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है।
1: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते हैं, और
0: हाँ
1: दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है। खोज कर
0: करेक्ट,
1: अगर आप देखें
0: हाँ
1: तो वेव्स पर शायद ये अभी भी
0: वेव्स पर
1: उपलब्ध
0: है।
1: है। तो
0: वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की थी।
1: उसका जिक्र करने से पहले यहां एक गाने की जगह बनाते
0: प्लीज।
1: हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो
0: राइट,
1: बताइए कि कौन सा गाना यहां आना
0: यहां पर
1: चाहिए।
0: तो मुझे ऐसे लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है, वो था राजी फिल्म का, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
1: क्या बात है,
0: वो
1: गुलजार
0: सुनते
1: साहब के
0: हैं,
1: बोल,
0: ऑफ कोर्स।
1: सुनते हैं ये गाना।

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन के बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का अमूल्य उपहार है, जो शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर स्वस्थ तथा अनुशासित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। योग दिवस पर राजकीय समारोह का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल अंकों का नहीं बल्कि उन अनगिनत घंटों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण का है जिसने इन बच्चों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। श्रीमती पांडे ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं बल्कि हजारों अन्य विद्यार्थियों को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। राजधानी रांची समेत राज्यभर के 67 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा जारी है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए एनटीए और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गौरतलब है कि पुनर्परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 2 बजे से शुरू हुई यह परीक्षा शाम 5:15 बजे तक चलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि बोकारो, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, पाकुड़, रामगढ़ और सरायकेला खरसावां जिले में अगले कुछ घंटों के दौरान गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: सियों के बीच हंसती है, ये अभी कौन सा मौसम जगा गया उसको। गुलाबो इत्र की खुशबू से वो महकती है, दर्द से इश्क लड़ाने की उसको आदत है, गम के सहरा में खड़ी तितलियां पकड़ती है।

0: है मुलाकातों का ये मौसम, तेरी आंखों में डूब जाने का मौसम, रंगों में सिमटी हुई तू जब आती है मेरे सामने, तो कायनात में बिखर जाता है बहारों का मौसम। और जब दिल की वीरानियां तेरे ख्यालों से गुलजार होती हैं, तो बहुत भाता है तेरी यादों का मौसम, मेरे इश्क के तमाम रंगों को ओढ़कर। जब तू आती है सामने, तो मेरी नजर का ख्वाब बन जाता है तेरी खूबसूरती का मौसम।
1: यही है वो सांस।

स्याह रातों में, दिन के उजालों में, एक तेरा चेहरा ही नजर आता है सभी नजारों में। हर तरफ यही अफसाने हैं कि हम तेरी अदाओं के दीवाने हैं। कभी काली घटा को ओढ़कर दिन में तू निकलती है, तो कभी झिल मिलाती हुई शब में तू चांदनी सी बिखरती है। वो तेरे पैरहन के अंदाज, वो तेरे हुस्न के जलवे, तेरे कदमों पर सिर झुकाकर चांद भी करता है तेरे सजदे। बेनूर सी है मेरी जिंदगी तेरे बिना, करता हूं मोहब्बत तुझसे मैं बेपनाह।

अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है छाया गीत में। कुछ कहानियां अधूरी सी, चंद मुलाकातें पूरी सी, बड़े हसीन दिन थे वो, खूबसूरत सी थी वो रातें, हाथों में हाथ डाले करते थे हम जब ढेर सारी बातें। चांद का नूर तुम्हारी आंखों में झलकता था, काली घटाएं लहराती थी जुल्फों में, ढलते ढलते शाम कुछ यूं तुमसे लिपट जाती थी, जैसे रात के आगोश में कोई कली सी खिल जाती थी।

अदाएं भी हैं तुझ में, है अंदाज भी सबसे जुदा। हुस्न की मूरत है तू, तू ही है मेरा जहां। कभी बेमौसम बरसात सी तू मेरे वजूद को भिगो जाती है, कभी अनकही किसी बात सी तू मुझे मदहोश कर जाती है। खामोशी की भी जुबां होती है, ये सुना था मैंने, तेरी आंखों को पढ़ा जब, इस बात को माना मैंने। तेरे होने से ही है फूलों में खुशबू, तेरे होने से ही है हवा में जादू। तू है जैसे एक हसीन गजल या फिर कोई एक महकता सा कंवल।

एक सुबह हो तुम धुली धुली, एक शाम हो तुम मदहोश सी, एक कतरा हो तुम शबनम का, एक सितारा हो कहकशां के दामन का, एक मुकम्मल हुस्न तुम्हारा परंपरा में सिमटा हुआ सा, कुछ कुछ हया की चांदनी में लिपटा हुआ सा, दिल लुभा रही है तुम्हारी हर एक अदा, इश्क को जैसे दे रही हो सदा, फूलों की खुशबू हो तुम या कोई फूल ही है मेरे रूबरू, चांद की किरण कहूं या चांद हो तुम हूबहू।

शाम 6:30 से आप सुनिएगा ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आंखों देखा हाल। शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जिसमें ठीक 7:00 आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। शाम 7:10 पर जिले में आजकल

शाम 7:15 पर हम पुनः शामिल होंगे अपने दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र में, जिसमें आप सुनिएगा ICC वर्ल्ड वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच 2026 का आंखों देखा हाल। रात्रि 8:10 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जिसमें आप सुनिएगा वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर, News@9 रात्रि 9 बजे, और उर्दू में खबरें रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर हम पुनः शामिल होंगे वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आंखों देखा हाल। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

युवानी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी जानकारी की बातें साझा करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनवाएंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम अपने कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जी हाँ दोस्तों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे अनेक देशों का समर्थन मिला। इसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषणा की गई। दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 में मनाया गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि योग हमारे स्वास्थ्य पर कितना लाभदायक है, हमें योग करना चाहिए, लेकिन हम कई बार समय की पाबंदी होने के कारण योग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम कई तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो योग का हमारे दिनचर्या पर किस तरह का असर पड़ता है, योग करने से हमारे स्वास्थ्य पर कौन कौन से लाभ होते हैं, आइए इसके बारे में आज हम बातें करते हैं। दोस्तों, हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पूरे विश्व में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। जी हाँ दोस्तों, योग भारत की प्राचीन संस्कृति अमूल्य धरोहर, जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलन रखने की एक महत्वपूर्ण जीवन पद्धति है। दोस्तों, आज के समय में लोग तनाव, चिंता, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है अनियमित दिनचर्या, गलत खान पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी। ऐसे समय में योग हमें स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। नियमित योग शरीर करने से शरीर मजबूत होता है, लचीला बनता है। विभिन्न आसन मांसपेशियों और जोड़ों को स्वस्थ रखते हैं। सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, भुजंगासन और वज्रासन जैसी योगशासन शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और शारीरिक क्षमता बढ़ाती है। प्राणायाम करने से फेफड़े मजबूत होते हैं और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याओं में भी लाभ मिलता है। योग मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। ध्यान और प्राणायाम मन को शांत रहता है, तनाव कम करता है और सकारात्मक सोच विकसित करता है। विद्यार्थियों के लिए योग विशेष रूप से उपयोगी होते हैं, क्योंकि इससे एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास में भी वृद्धि आती है। योग कई बीमारियों से बचाव में सहायक होता है। नियमित योगाभ्यास से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, यानी कि ब्लड प्रेशर, मधुमेह को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। मोटापा कम होता है और हृदय स्वस्थ रहता है। साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है, जिससे हम विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वस्थ जीवन के लिए दवाइयों पर निर्भर रहने की बजाय हमें योग और संतुलित जीवन शैली को अपनाना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट तक योग के लिए निकाले तो हमें स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, योग केवल एक दिन मनाने की चीज़ नहीं है, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर, शांत मन और सफल जीवन के लिए सबसे सरल और प्रभावी उपयोगी में से एक है। तो आइए, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम सब एक संकल्प लें कि नियमित योग करेंगे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में, कि योग हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम योग से कितने तरह के लाभ पहुंच सकते हैं और प्रतिदिन कुछ मिनट के लिए अगर हम योग करने के लिए निकालें तो हमारे स्वास्थ्य पर कितने तरीके की अच्छी चीज़ें विकसित होंगी। तो दोस्तों, आइए इस चर्चा के बाद अब सुनवाते हैं आपको एक प्यारा

देते हैं और बाएं से पूरे सामर्थ्य का प्रयोग करके श्वास को भीतर खींचते हैं। उसके बाद मध्यमा और अनामिका से बाएं नासिका को बंद कर लेते हैं और जो हमने श्वास भर के रखा है उसको दाएं से बाहर छोड़ देते हैं। पुनः दाएं से छोड़ा तो दाएं से ही श्वास भरेंगे और उसको मध्यमा अनामिका से बंद कर अंगूठे से बंद करके और बाएं से श्वास को छोड़ देंगे। ऐसे हम निरंतर बाएं से श्वास लेके दाएं से छोड़ते हैं और दाएं से श्वास लेके बाएं से छोड़ते हैं। जब एक नासिका का प्रयोग करते हैं श्वास छोड़ने में या लेने में तो उसके बगल वाला नासिका बंद रहती है। यदि हम दाएं से श्वास ले रहे हैं तो बाएं को बंद रखेंगे और बाएं से छोड़ रहे हैं तो दाएं को बंद रखेंगे। इस प्रकार से 3 मिनट का आप ज्यादा नहीं तो 3 मिनट का आप ये अनुलोम विलोम अवश्य करें। इस अनुलोम विलोम के करने से जैसे शरीर के भीतर हमारे धमनियों में जो रक्त की कोशिकाएं हैं वो सारा ऑक्सीडेटेड होती हैं और वो फिर सारा हमारा शरीर निरोग होता है। शरीर के भीतर की चाहे वो हृदय की समस्या हो, किसी को गांठों की समस्या हो, किसी को स्किन प्रॉब्लम हो, ये सारा अनुलोम विलोम से ठीक होता है। इसके पूर्व हमने जो कपालभाति प्राणायाम की बात की उससे आपका डायबिटीज, आपका मोटापा, आपका कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, आपका किडनी में समस्या हो, आपका लीवर में समस्या हो, आपका पेनक्रियाज काम नहीं करता हो, आपका आमाशय ठीक नहीं हो, लार्ज बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, इन सब इंटरनल पार्ट जो भी हमारे शरीर के पेट के अंदर के जो आंतरिक अंग हैं वो सब दुरुस्त होते हैं, वो सब मजबूत होते हैं इस कपालभाति प्राणायाम से। तो ऐसे 1 मिनट का भस्त्रिका, 3-3 मिनट का कपालभाति अनुलोम विलोम करके फिर भ्रामरी उद्गीत, भ्रामरी अर्थात होता है भ्रमर की तरह गुंजन करना। इस क्रिया को करने के लिए हम उसी आसन में, एक आसन में जैसे बैठे वैसे बैठे रहते हैं और प्रथम तर्जनी, अंगूठे की बगल वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं। उस उंगली को हम दोनों भावों के मध्य, जहां हम माताएं बंदे बिंदी लगाती हैं या पुरुष भाई जहां तिलक लगाते हैं, उसी आसपास में दोनों हाथ की तर्जनी को यानी अंगूठे की बगल वाली उंगली को रखते हैं। शेष मध्यमा, अनामिका और कनिष्का, ये 3 उंगलियों को हम आंखों पे हल्का सा रखते हैं और अपने अंगूठे से कान के ढक्कन को दबाते हैं। कान के ढक्कन को इतना दबाना है, कान के भीतर अंगूठे को नहीं डालना है, इसकी सावधानी को ध्यान देंगे। कान के ढक्कन को दबाना है और दबाना इतना है कि आपको कोई बाहरी आवाज सुनाई नहीं पड़े। फिर आपको भ्रमर की तरह, जैसे भ्रमर गुंजन करता है ना, ये भ्रमर की तरह गुंजन करना है। तो इस क्रिया को जब आप करेंगे तो आपको बाहरी कोई ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी, आपको सिर्फ अपनी ध्वनि सुनाई पड़ेगी, जिसके चलते आपके भीतर एक जो ओम का नाद होगा उस नाद से आपको बहुत शांति मिलेगी। आपकी बीपी की समस्या, आपकी अनिद्रा की समस्या, आपके तनाव की समस्या, आपका चिड़चिड़ाहट, आपका अवसाद, आपका तनाव सारा ठीक होता है इस भ्रामरी प्राणायाम से। तो इसको आप अपने आवश्यकता अनुसार 3 बार 5 बार 7 बार जितना बार भी करना चाहेंगे समय के अनुसार, कम से कम 5 बार अवश्य करेंगे। 5 बार करने में आपको मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा, 1.5 मिनट का समय लगेगा। फिर दोनों हाथ को घुटने पर रख के और आप चाहे ओम का जाप कर लें या अल्लाह का या आमीन कह लें या यीशु मसीह जो आपके हो, आप 3 बार गहरा लंबा श्वास भरते हुए जो ओम का जाप करना चाहें तो ओम एक ऐसी ध्वनि है, इसको एक अलौकिक ध्वनि कहते हैं। ओम इज अ डिवाइन वर्ड। ओम के चैटिंग से एक मस्तिष्क में ऐसी तरंगे उठती हैं कि सिर्फ ओम के उच्चारण करने से हमारे बहुत सारे रोग नियंत्रित हो जाते हैं, मन को बिल्कुल शांति मिलती है। तो ये जो कार्यालय कर्मी है वो कम से कम 10 मिनट का अभ्यास इसमें जरूर करें। उसके बाद अगर 1 से 2 मिनट का मौन कर लें, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान की क्रिया, और उस ध्यान की क्रिया में क्या ध्यान करना है,

अनुलोम विलोम का अर्थ होता है उलट पलट, संस्कृत का शब्द है, अर्थात प्रथम हम अनुलोम विलोम क्रिया में दाएं नाक को दाएं हाथ के अंगूठे से बंद कर

हे प्रभु, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं का संतान हूं, मुझसे ही राष्ट्र की पहचान है। यदि मैं बीमार रहूंगा तो ये मेरा राष्ट्र बीमार कहलाएगा, यदि मैं स्वस्थ रहूंगा तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। हाँ, हम इदम राष्ट्राय इदं नमः, इस भावना के साथ हम 10 मिनट का समय, यदि अपने व्यस्तम समय का, आप कार्यालय में भी कार्यालय भी जाते हैं तो 10 मिनट का भी समय आप निकाल लेते हैं तो आपके लिए ये काफी उपयोगी सिद्ध होगा। फिर ये संभव है, आप कार्यालय में बैठे हैं, 8 घंटा लगातार काम कर रहे हैं, आपके काम करने की स्थिति क्या है, कोई आज कंप्यूटर पर बैठा हुआ है, एक टक आंख टिकाए हुए कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पर बैठने से जो समस्याएं आज आप झेलते हैं उनमें मुख्य है कंधों का दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, कमर में दर्द होना, आंखों में जलन, आंखों की समस्या होना, ये सामान्य कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं जो हमारी वर्किंग स्टाइल, जिस शैली में हम बैठ के, अब एक तो यदि आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कभी भी अपने कंप्यूटर को आंख के लेवल से नीचे या आंख के लेवल के बहुत ऊपर नहीं करें, पैरेलल टू द आई बॉल। आप कार्यालय में ऐसी व्यवस्था कर लें कि आपका कंप्यूटर आपके आंख के बिल्कुल समानांतर हो, तो इससे आपकी समस्या कम होती है। समानांतर होने से क्या होता है, आप बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहती है, तो आप कंप्यूटर में बैठते हैं आगे झुक के बैठते हैं तो कंधों में दर्द होती है। तो कार्यस्थल पर भी, अब हम यहां आपको छोटी सी जानकारी देंगे कि जो यदि आप 10 मिनट घर में कर लिए, फिर कार्यस्थल पर भी यदि आप बैठे हैं और वहां भी आप चाहें तो बीच बीच में थोड़ा समय निकाल के इधर उधर का गप नहीं करके, अब जैसे किसी को कंधे में दर्द होने लगा तो क्या करेंगे, दोनों हाथ को, उंगलियों को दोनों कंधे पे टिका लेंगे, दोनों हाथ की उंगली को कंधे पे टिका लेंगे और सामने केहुनी को सटा लेंगे और केहुनी के माध्यम से बड़ा सा शून्य बनाएंगे, अर्थात गोल गोल घुमाना, एक साथ दोनों हाथ को कंधों पे टिका के केहुनी को क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाएंगे, थोड़ा 5 बार 10 बार क्लॉकवाइज घुमा लिया, 5 बार 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया, इससे आपको यदि कंधों में दर्द की समस्या है तो उसमें थोड़ी राहत हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, ये मुश्किल से इस क्रिया को करने में आपको आधा मिनट लगेगा, फिर क्या करेंगे, दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लेंगे और बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ से, यानी एक दूसरे को इंटरलॉक करके हाथ को पकड़ लेंगे और फिर श्वास भरते हुए पार्श्व भाग में खिंचाव करेंगे, दाएं हाथ को दाई ओर खींचते हुए बाएं कंधे से पीछे से, बाएं कंधे के पीछे से बाएं हाथ को लेके दाई ओर झुकाएंगे और फिर दाएं हाथ को कंधों के पीछे से लेके बाएं ओर झुकाएंगे पार्श्व भाग में खिंचाव के साथ। तो इससे भी आपके कंधों में दर्द में जो होता होगा वो थोड़ा उसमें राहत आ जाएगा। फिर अगर कंधों के दर्द में और भी नहीं हो रहा है और आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो फिर अपने दोनों हाथ को कंध सामने से कंधों के समानांतर खोल लेंगे, दोनों मुट्ठियों को बंद करके सामने कलाई को गोल गोल घुमा लेंगे, हाथ पूरा बिल्कुल केहुनी को सीधा रखेंगे, इससे भी आपके जो कंधों में दर्द है तो वो फिर ठीक हो जाएगा। तो मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आप ये 3 क्रिया अपने ऑफिस में भी कर लेंगे तो उससे आपको कंधों के दर्द में राहत मिल जाएगी। फिर यदि आपको गर्दन में भी थोड़ा दर्द हो रहा है तो 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा ब्रेक लिया 1 घंटे में तो थोड़ा कंधे वाला अभ्यास कर लिया, फिर 1 घंटे में 1 मिनट का ब्रेक लिया तो थोड़ा गर्दन वाला अभ्यास कर लेंगे। गर्दन का अभ्यास क्या होता है, श्वास भरते हुए गर्दन को दाई ओर देखना, यानी ठुड्डी को कंधों के समानांतर ले आएंगे, जब दाई ओर घुमाएंगे तो ठुड्डी दाएं कंधे के पैरेलल आ जाएगी और जब श्वास लेते हुए बाई ओर घुमाएंगे तो ये ठुड्डी हमारी बाएं कंधों के समानांतर आ जाएगी। ऐसे दाएं बाएं कंधे गर्दन को घुमा लेना, थोड़ा ऊपर नीचे गर्दन को कर लेना, थोड़ा गोल गोल गर्दन को घुमा लेना क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये अगर बीच बीच में थोड़ा हम करते रहेंगे तो उससे हमारा

ये गर्दन की भी यदि समस्या है तो ठीक होती है। एक और गर्दन की अगर थोड़ी ज्यादा समस्या लग रही हो तो दोनों हाथ को इंटरलॉक कर लेंगे और सर के पीछे लगाएंगे। सर के पीछे लगा के हाथ से सर पे और सर से हाथों पे, दोनों हाथ को इंटरलॉक करके सर के पीछे लगा लिया और फिर हाथ से सर पे और सर से हाथों पे धक्का देते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इससे भी फिर दोनों हाथ को इंटरलॉक करके थोड़ा सामने से लगा लिया, फिर दाएं हाथ से दाएं कनपट्टी को दबा लिया, दाएं हाथ से दाएं कनपट्टी, कान के ठीक जहां हम चश्मा लगाते हैं उसके पास एक पट्टी होती है जिसको कनपट्टी कहते हैं, तो कान के पट्टी के पास दाएं हाथ को लगा के उससे ताकत लगाएंगे, एंटी फोर्स लगाएंगे, हाथ से सर पे धक्का देंगे और सर से हाथ पे धक्का देंगे। तो इससे भी हमको गर्दन का एक अभ्यास हो जाता है। एक चीज खास ध्यान रखेंगे, गर्दन हमारे सभी जोड़ों में सबसे मुख्य और नाजुक जोड़ है। यह हमारे शरीर के जो दो मुख्य पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उनका जंक्चर पॉइंट है, उनको जोड़ता है। ये काफी नाजुक है, इसलिए इसके अभ्यास को पूरे सावधानी पूर्वक करेंगे, बहुत झटका से नहीं करेंगे, एकदम आराम आराम से करेंगे।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था अनुलोम विलोम, वार्ताकार थे राजीव शरण। दोस्तों आज हमने इस कार्यक्रम में योग के बारे में बहुत सारी बातें जानी कि योग हमारे शरीर के लिए किस तरह से लाभदायक है। योग करने से हम सभी तरह की बीमारियों से बच सकते हैं और हमारे दिनचर्या में योग का होना कितना आवश्यक है। दोस्तों आज का कार्यक्रम इसी के साथ समाप्त करने की आज्ञा दें आपकी दोस्त आराध्या माही को। आपसे फिर मुलाकात होगी। योग करते रहें, अपने जीवन को स्वस्थ रखें, मस्तिष्क शांत रखें और स्वस्थ जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाएं। दोस्तों इसी के साथ हम आज के युवानी समाप्त करने की आज्ञा दें। आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। कुछ ही देर में आप सुनिएगा हमारे रांची केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार।

पवार ने लोक भवन के बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का अमूल्य उपहार है जो जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आयोजित किया गया।

0: जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने रांची में विभागीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया ताकि उनका लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। श्री हसन ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास एवं सामाजिक उत्थान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1.5 किलोग्राम अफीम, 7 लाख रुपए नगद, 4 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल बरामद किया है। धनबाद में आम उत्पादकों को बाजार से जोड़ने और बागवानी को बढ़ावा देने की दिशा में जिला प्रशासन ने आज आम उत्सव की शुरुआत की है। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि स्थानीय किसानों द्वारा प्राकृतिक तरीके से उत्पादित आम लोगों द्वारा खूब पसंद किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आम बागवानी के जरिए किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, रांची और सिमडेगा जिले में अगले कुछ घंटों के दौरान गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी भी 6:02 हो चुके हैं। तो आइए सुनते हैं ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी।

ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को कल्याण कुमार का नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आज किस कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप जानेंगे बत्तख पालन से अतिरिक्त लाभ, साथ ही साथ सुनेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे मुनीश कुमार सिंह से ली गई भेंटवार्ता। विषय है शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत विकसित तकनीकियां, और इनसे बातचीत कर रहे हैं अनिता तिर्की। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हुए आइए जानते हैं बत्तख पालन से अतिरिक्त लाभ। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपना जो देश है मूलतः कृषि प्रधान देश है, और यहाँ की पशुपालन और पंछी का पालन कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई के लिए आय बढ़ाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुर्गी पालन की तरह ही बत्तख पालन भी एक लाभदायक व्यवसाय व्यापार है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा श्रोताओं, तो बत्तख पालन प्रायः कम लागत में, कम देखभाल में और ज़्यादा लाभ होने के कारण यह ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि बत्तख से श्रोताओं अंडे के साथ साथ मांस की भी प्राप्ति होती है, साथ ही साथ इसे पालने में प्रायः कोई अतिरिक्त लागत भी नहीं आती है। इसलिए यह जो भी हमारे जो किसान भाई हैं, जो छोटे किसान भाई हैं, सीमांत किसान भाई हैं या भूमिहीन किसान भाई हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए आय के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। श्रोताओं, बत्तख पालन अतिरिक्त आय प्राप्त करने का काफ़ी एक उत्तम माध्यम बनता जा रहा है, क्योंकि बत्तख जो है वो नियमित रूप से अंडे देती है और उनका मांस भी बाजार में अच्छी कीमत पर बिकता है। हमारे किसान भाई खेती बाड़ी के साथ साथ बत्तख पालन

शंकर भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं उनके परिवार की आय में वृद्धि हो रही है और आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त हो रहा है। श्रोताओं, बत्तख पालन के लिए ज़्यादा पूंजी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि बत्तख जो है वो प्राय तालाब, नदियाँ या खेतों में जो भी उपलब्ध प्राकृतिक भोजन के रूप में उन्हें, जिसमें कि घोंघे, कीट, छोटी मछलियाँ या जलीय पौधों को खाकर ही वो अपना पोषण प्राप्त कर लेती है, इसलिए इनके भोजन पर खर्च प्राय कम आता है और लाभ ज़्यादा मिलता है। श्रोताओं, अंडे के उत्पादन से भी इन्हें लाभ मिलता है, क्योंकि एक बत्तख जो प्राय है एक वर्ष में 250 से 300 तक अंडे देती है। बत्तख के जो अंडे हैं वो काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, तो बाज़ार में इनकी मांग भी बनी रहती है और अंडों की बिक्री से हमारे निश्चित रूप से किसान भाई को नियमित आय प्राप्त होती है। और साथ ही साथ अंडे से चूजे भी तैयार करते हैं हमारे किसान भाई, तो इन चूजों को भी बेचकर अतिरिक्त लाभ मिलता है। बत्तख का मांस स्वादिष्ट और पौष्टिक होता ही है श्रोता, तो इसके कारण भी इसकी जो मांग है बाज़ार में लगातार बनी रहती है। श्रोताओं, बत्तख पालन करने वाले जो भी हमारे किसान भाई हैं वो मांस के उत्पादन के माध्यम से भी ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। और देखा जाता है श्रोताओं, तो त्यौहार पर या विशेष अवसर पर बत्तख की मांग की जो मांस की जो मांग है वो बढ़ जाती है और इससे इनकी कीमत भी बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से मांस के बेचने से लाभ ज़्यादा मिल पाता है। साथ ही साथ धान की खेती में भी बत्तख के छोड़ने से काफ़ी लाभ मिलता है, क्योंकि जो बत्तख है वो कीट पतंगे, घोघा या जो भी है खर पतवार को खा जाती है। इससे फसल को जो नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक नियंत्रित भी हो जाते हैं, खरपतवार भी कम हो जाते हैं, तो कीटनाशकों का या खरपतवार नाशी दवाओं पर होने वाला जो खर्च होता है वह कम हो जाता है और इस प्रकार से बत्तख पालन को भोजन की भी प्राप्ति हो जाती है और हमारी जो धान की खेती है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाती है। तो देखा जाए तो बत्तख पालन और धान की खेती कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक भी होती है। बत्तख का मल एक काफ़ी एक अच्छे जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता जो है श्रोताओं वो कम होते चली जाती है। बत्तख के मल का उपयोग खेत में, बगीचों में, तालाबों में किया जाता है, जिससे कि इसे बेचने से भी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। बत्तख पालन को मत्स्य पालन के साथ एकीकृत कर अधिक लाभ भी कमाया जाता है। जी हाँ श्रोताओं, यदि आप बत्तख पालन कर रहे हैं तो साथ ही साथ मत्स्य पालन भी कर लें, क्योंकि बत्तख का जो मल है वो तालाब में जाकर मछलियों के लिए एक प्राकृतिक भोजन बनाता है, जिससे कि मछलियों की वृद्धि होती है और एक ही संसाधन से दो प्रकार की आय की प्राप्ति होती है। जी हाँ श्रोताओं, जहाँ मछलियों की वृद्धि होने से मछलियों को बेचने से अतिरिक्त लाभ मिलता है, वहीं बत्तख के पालन से भी मांस और अंडे की प्राप्ति होती है, तो निश्चित रूप से एक ही संसाधन से दो तरीके से आय की प्राप्ति होती है। और श्रोताओं, बत्तख पालन के लिए भी कई प्रकार के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार युवा हमारे भाई हैं उनके लिए भी अवसर पैदा होते हैं और इसको करने के लिए रोजगार के नए अवसर बनते हैं। और श्रोताओं, देखा जाए तो बत्तख जो हैं इनके पालन में पोल्ट्रियों पंछियों की अपेक्षा में कम मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत और रोग प्रतिरोधक होते हैं। बत्तख की देखभाल प्राय कम ही करनी पड़ती है मुर्गियों की अपेक्षा श्रोताओं, यदि देखा जाए तो, क्योंकि कई प्रकार के जलवायु की परिस्थिति में ये काफ़ी आसानी से जीवित रह जाती है और श्रम और खर्च दोनों से में बचत हो जाती है। श्रोताओं, बत्तख के अंडे और मांस प्रोटीन, वसा, विटामिन, साथ ही साथ खनिजों लवण के काफ़ी एक अच्छे स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। इसके सेवन से पोषण स्तर में सुधार होता है श्रोताओं। विशेष रूप से यदि देखा जाए तो बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा वृद्ध व्यक्तियों के लिए काफ़ी एक पौष्टिक आहार के रूप में जाना जाता है। तो निश्चित रूप से श्रोताओं, यदि आप बत्तख पालन करते हैं तो पोषण की सुरक्षा हो जाती है। बत्तख पालन से श्रोताओं जोखिम भी कम होता है, क्योंकि कई प्रकार के खेती पर निर्भर रहने से

प्राकृतिक आपदा या फिर फसल खराब होने की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से इसका आर्थिक नुकसान भी होता है। वहीं बत्तख पालन से एक आय का एक वैकल्पिक स्रोत रहने से आर्थिक जो जोखिम होता है श्रोताओं वो काफ़ी कम हो जाता है। तो निश्चित रूप से बत्तख पालन से लाभ जरूर है होता है श्रोताओं। और साथ ही साथ श्रोताओं यदि देखा जाए तो आज के समय में स्वास्थ्य के प्रति सभी लोगों के मन में जागरूकता बनी है और इस जागरूकता के पश्चात देखा जाए तो बत्तख के अंडे हो या बत्तख के मांस, ये दोनों की मांग जो है बाजार में बनी रहती है। होटल हो, रेस्टोरेंट हो या शहरी जो भी बाजार हो वहाँ पर इनके उत्पादकों की अच्छी कीमत भी मिलती है। इसलिए श्रोताओं यदि बत्तख पालन काफ़ी लाभकारी व्यवसाय के रूप में निरंतर जो है वो वृद्धि कर रहा है तो देखा जाए श्रोताओं तो बत्तख पालन काफ़ी सरल, खर्च कम, खर्चीला और ज़्यादा लाभ देने वाला व्यापार है, व्यवसाय है। बत्तख से अंडा एवं मांस का उत्पादन की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ इसके मल को प्राकृतिक खाद के रूप में मत्स्य पालन में भी इसका सहयोग प्राप्त होता है। धान की खेती में, कीट के नियंत्रण में और नए रोजगार के सृजन में भी ये काफ़ी सहायक साबित होता है। और देखा जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में, हमारे किसान भाई के आय को बढ़ाने में, पोषण को सुरक्षा देने में भी बत्तख पालन की एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। श्रोताओं अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए खेती के साथ साथ एक वैकल्पिक आय का स्रोत का होना आवश्यक है। और वैसे में आप अपने आसपास के घर के माहौल को देखें, परिस्थिति को देखें और उसके अनुरूप एक वैकल्पिक आय का स्रोत जरूर बनाएं, जिसमें बत्तख पालन हो, मुर्गी पालन हो या मछली पालन हो या फिर पशुपालन की ही बात क्यों ना हो। हालांकि देखा जाए तो बत्तख पालन काफ़ी कम खर्च में, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ देने वाला यह व्यवसाय है। तो श्रोताओं ये तो थी बातें बत्तख पालन से अतिरिक्त लाभ की। और अब आइए हम सुनवाते हैं आपको मुनीश कुमार सिंह से ली गई भेंटवार्ता। विषय है शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत विकसित तकनीकियाँ और इनसे बातचीत कर रही हैं अनिता तिर्की।

0: मुनीस कुमार सिंह, वरीय अनुसंधान सहायक, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चिया के। मुनीस जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आप हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को बताएं कि शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत विकसित तकनीकियां कौन कौन सी हैं।
1: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये हमारा पलामू प्रमंडल है, इसमें ये सब जोन 5 के अंतर्गत आता है और इसमें 7 जिले हैं। और ये 7ों जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ पे काफ़ी जो है जलवायु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है। आप देखें तो अल्टरनेट ईयर जो है किसान भाइयों को देख रहे हैं कि उसमें सुखाड़ जैसी परिस्थिति से जूझना पड़ता है, या कभी कभी यहाँ का देखें जो जलवायु है वो यहाँ का जलवायु वर्षापात की स्थिति अगर मैं बात करूँ तो अनियमित और अनियंत्रित है। अनियमित का मतलब है कि कभी कभी बारिश लगातार नहीं होती है, और अनियंत्रित का मतलब कभी कभी एक ही दिन में 150 से 200 मिलीमीटर वर्षापात देखने को मिलता है। इससे हमारा जो खेती है वो काफी जो है बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो ऐसी इस जलवायु की कंडीशन में, ऐसी बदली परिस्थिति में हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं, चूंकि हम लोग जो है शुष्क भूमि पर अनुसंधान कर रहे हैं तो अनुसंधानों के निष्कर्ष के आधार पर हम लोग किसान भाइयों को बहुत सारी तकनीकी समय समय पर बताते रहते हैं। और आज भी हम कुछ तकनीक आप लोग को बताना चाहेंगे किसान भाइयों। जैसे कि किसान भाई, आप जो प्रभेद का चयन करते हैं,
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो उस प्रभेद का चयन आप छोटे मतलब अवधि वाले, शॉर्ट ड्यूरेशन,
0: कम दिनों में तैयार होने वाली किस्मों का चयन करना है।
1: कम दिनों में तैयार होने वाली किस्मों का चयन करें और जो अधिक उपज देने वाली हो और जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो।
0: तो ये ख्याल रखना है किसान भाइयों को कि वैसे किस्मों का चयन करें जो कि जल्द से जल्द तैयार हो और जिसमें कम से कम पानी की खपत हो।
1: जी जी जी। अगर मैं धान की बात करूं तो किसान भाई जो यहाँ पे सूखा सहने वाले अगर प्रभेद हैं तो जैसे सहभागी है, नवीन है, ये जो प्रभेद हैं ये ओपन प्रभेद हैं, उन्नत प्रभेद हैं, जिनको कि आप जो है 3 साल तक अपने खेतों में जो है लगा सकते हैं। दूसरा ये है किसान भाई, बहुत सारे चूंकि अब हाइब्रिड लगाना चाह रहे हैं, तो हाइब्रिड अगर आप धान लगाना चाह रहे हैं तो उसमें है पीएसी 801 है, पीएसी 807 है, और एराइज एक्सप्रेस है। ये सब जो किस्में हैं ये 105 से 110 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं।
0: धान की किस्मों में आपने बता दिया सहभागी और नवीन, जो कि कम दिनों में और कम पानी में तैयार हो जाती है। हाइब्रिड में आपने क्या क्या बताया डॉक्टर?
1: पीएसी 801, पीएसी 807, एराइज का एक्सप्रेस है।
0: अच्छा,
1: तो ये किस्में जो है किसान भाई जो है 105 से 110 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं, जो हाइब्रिड के हमने बताया। तो इस तरह की किस्मों का चयन करें। दूसरा, ये तकनीकी की मैं बात करूं तो मिश्रित खेती को यहाँ पे बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो अपलैंड जमीन है, टाण वाली जमीन है, उस तरह की जमीन है और मध्यम जमीन में, इस दोनों प्रकार की जमीन में आप मिश्रित खेती करें। और मिश्रित खेती अरहर आधारित मिश्रित खेती होनी चाहिए। तो अरहर आधारित मिश्रित खेती में सबसे जो ज्यादा फायदेमंद, जो ज्यादा इकोनॉमिक है, वो हम लोगों ने अरहर के साथ भिंडी की खेती को सबसे ज्यादा जो है फायदेमंद पाया।
0: अरहर के साथ भिंडी
1: की खेती। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप जो है एक लाइन भिंडी, एक लाइन अरहर, एक लाइन भिंडी, एक लाइन अरहर, अर्थात 1:1 में आप इसकी बुआई करेंगे। तो अरहर की जो दूरी होगी वो 80 सेंटीमीटर की दूरी होगी। अब उसके बीच में आप एक लाइन भिंडी को आप लगा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: दूसरा जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक है, जो फायदेमंद है, वो है अरहर के साथ मकई की खेती। उसी तरह से जो है मकई की भी हम एक लाइन अरहर, एक लाइन मकई की खेती कर सकते हैं। और तीसरा है अरहर के साथ में ज्वार या बाजरा की खेती, और अरहर के साथ में बोदी की खेती, अरहर के साथ में तिल की खेती, अरहर के साथ में उड़द की खेती। तो इस तरह से अरहर आधारित मिश्रित खेती करने की जरूरत है। किसान भाइयों, होता क्या है कभी कभी कि इस बदली परिस्थिति में, इस बदली जलवायु में, आपको इससे जो है कभी भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा।
0: जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं कि अरहर की मिश्रित खेती किसान भाई खासकर इस क्षेत्र में कर सकते हैं। आपने बताया अरहर के साथ में वो भिंडी ले सकते हैं, अरहर के साथ मक्का ले सकते हैं, अरहर के साथ ज्वार या अरहर के साथ बाजरा ले सकते हैं
1: जी,
0: अरहर के साथ बोदी की खेती कर सकते हैं, या फिर अरहर के साथ तिल ले सकते हैं, या अरहर के साथ उड़द की खेती वो कर सकते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण और फायदेमंद है इस क्षेत्र के लिए। तो अरहर की कौन सी किस्म लेंगे डॉक्टर साहब?
1: देखिए, इसके लिए हम लोगों ने जो सबसे बेहतर किस्में पाया है वो बहार है, बहार है, बिरसा अरहर 1 है, नरेंद्र अरहर 1 है, आशा है। तो इन किस्मों को जो है किसान भाई चयन कर सकते हैं, और इसका बीज भी जो है हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के जो बीज प्रक्षेत्र है वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, और जो आशा वगैरह है ये आपको जो दुकानें हैं वहां से आप जो है बीज की दुकान है
0: लोकल
1: वहां
0: जो
1: से आप,
0: बाजार है यहाँ से
1: हाँ वहां से आप
0: मिल
1: ले
0: सकती है,
1: सकते
0: किसान
1: हैं
0: भाई ले सकते
1: जी
0: हैं। अब हम बात करते हैं शुष्क भूमि के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में क्या क्या
1: जी
0: काम करना है,
1: जी
0: तो किस तरह से खेत की तैयारी करनी है इस पर भी
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: बात बताएं।
1: किसान भाइयों, सबसे पहले जो है आप खेत की तैयारी करने के लिए जो है आप सबसे पहले गर्मियों में अगर हो सके तो एक जुताई कर देना चाहिए। अगर अगर आप अभी जुताई नहीं कर पाए हैं तो उसकी जुताई तत्काल कर दें। जुताई करने के बाद में आप उसमें करीब प्रति हेक्टेयर की दर से अगर मैं बात करूं तो 100 कुंटल करीब जो है 4 से 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जो कंपोस्ट है उसको आप खेत में मिला दें, और मिला करके जुताई करके अच्छे से उसको फैला दें। उसके बाद करीब आप जो है 2 जुताई क्रॉस में करें और उसके बाद में उसको पाटा दे दें,
0: 100 क्विंटल कंपोस्ट देने
1: सौ
0: की बात
1: कुंटल
0: कर रहे हैं।
1: कंपोस्ट जी, और उसको देने के बाद में अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें। मिलाने के बाद में आप उसको 2 जुताई करके आप उसमें पाटा दे दें। पाटा देने के बाद में किसान भाई जो है आप हल बैल का भी सहारा लेकर के इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन प्रायः एक देख रहे हैं समस्या कि गांव में किसानों के पास में
0: अभी
1: हल
0: हल
1: बैल की
0: बैल
1: समस्या नहीं
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल
1: अरे किसानों के पास अब रह नहीं गए
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने एक तकनीकी किसान भाइयों को बताई है जिससे कि वो अपनी बुआई लाइन से कर सकते हैं और उनका अच्छे से बुआई भी हो जाएगा। तो वो तकनीकी है, किसान भाई जब आप पाटा दे देंगे तो अर्थात जब आप तीसरी जुताई करेंगे तो उसमें खाली ट्रैक्टर को जो हेंगा है उसको आप नहीं लगाएंगे, खाली उससे जो है कल्टीवेटर से आप जुताई कर दीजिए।
0: अच्छा
1: जुताई करने के बाद में आप जो है उसमें एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन में बुआई नहीं करेंगे, तो वो आपका 80 सेंटीमीटर मेंटेन हो जाएगा,
0: दूरी जो
1: और
0: है 80 सेंटीमीटर
1: मेंटेन हो जाएगा,
0: मेंटेन हो
1: और
0: जाएगा।
1: उसके बीच में आप चाहे उसमें भिंडी ले सकते हैं, जो हमने मिश्रित खेती बताई अरहर आधारित, आप इसमें जो आपके लिए उपयुक्त है जो आप उसमें चयन करना चाहें आप उसकी बुआई कर दीजिए और उसके बाद पाटा दे दीजिए।
0: जी जी मतलब
1: हाँ, और साथ ही साथ उसमें जो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर है, जो रासायनिक खाद है, किसान भाइयों जैसा कि आप जानते हैं कि अरहर जो है एक

0: दलहनी फसल है। दलहनी फसल में जो है खुद ये ईश्वर का दिया हुआ एक गुण है उसमें, कि जो उसमें रूट नोड्यूल्स होते
1: उसकी जो
0: हैं,
1: जड़ें हैं उसमें गांठ होती
0: हाँ
1: है।
0: गांठ होती है, और उस गांठ में जो है वो
1: बैक्टीरिया
0: बैक्टीरिया के
1: रहते
0: द्वारा जो
1: हैं
0: वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है
1: उसको लेकर
0: वो
1: वो।
0: लेकर के वो उससे काम उनका चल जाता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन शुरुआती दिनों में चूंकि वो गांठ बनने में कम से कम समय लगेगा 1 महीने का, तो 1 महीने का जो उसका खुराक है उसके लिए हमको कम से कम 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया शुरुआती दौर में देना पड़ता है। और साथ ही साथ में डीएपी की अगर मैं बात करूं तो करीब 120 किलो जो है आपको डीएपी की जरूरत पड़ेगी, और 40 किलो एमओपी जो लाल वाली खाद होती है पोटास उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इन खादों को जो है किसान भाई आप जो है मिला करके जो वो कूड़ बना हुआ है उस कूड़ में जो है डाल करके फिर उसके बाद बीज डालें और उसके बाद पाटा चला दें।
1: जी, आपने खाद की जो मात्रा बताई 20 किलो यूरिया
0: जी
1: और डीएपी बता रहे 120 केजी
0: जी
1: और म्यूरेट ऑफ पोटास 40 केजी
0: जी
1: प्रति हेक्टेयर की दर से
0: जी
1: देना है
0: जी
1: शुरुआती दौर में,
0: जी
1: जबकि गांठ बनने में टाइम
0: हाँ
1: लगता
0: गांठ
1: है।
0: बनने में टाइम
1: और
0: लगता है।
1: किसान भाइयों के साथ चूक क्या हो जाती है, जैसे ऊपरी जमीन वो खेती करते हैं तो उनको लगता है कि ऐसा ही फेंक दो छीट दो, मेहनत
0: जी
1: नहीं करना
0: जी
1: चाहते।
0: जी जी
1: खास करके खाद की जब हम बात करें तो खाद
0: जी
1: देना नहीं चाहते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: वही वो मार खा जाते हैं,
0: जी
1: फसल जितना उत्पादन मिलना चाहिए उतना नहीं
0: नहीं
1: मिल
0: मिल
1: पाता
0: पाता है
1: उनको।
0: जी। एक्चुअली में होता क्या है कि किसान भाई जो टाँड वाली जमीन होती है उसमें वर्षापात के कारण, निरंतर वर्षापात के कारण, और उसमें अगर आप खेती नहीं कर रहे हैं तो जो उपजाऊ ऊपर वाली जो जमीन होती है, परत होती है, सतह होती है, वो निरंतर जो है पानी के बहाव से उसमें खाली कंकड़ बचते हैं, तो जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑलरेडी बहुत कम
1: बहते।
0: हो जाते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: तो वैसी परिस्थिति में आप गहरी जुताई करें, गहरी जुताई करने के बाद उसमें ज्यादा से ज्यादा जो जैविक अपशिष्ट है या जो भी जैविक खाद आपके पास है, चाहे वो नीम का बिनौला हो, चाहे आपका बगीचे का पत्ती वगैरह है उसको सड़ा करके, या देसी जो गोबर की सड़ी खाद है वो मैक्सिमम आप उसमें प्रयोग करें। और साथ ही साथ में जो है उसमें आप मेड़बंदी करें, उसको छोटे छोटे प्लॉट में डिवाइड करें, इससे जो है आपका उसमें वर्षा का जो पानी है वो एकत्रित
1: बह नहीं
0: होगा,
1: पाएगा।
0: बह नहीं पाएगा, और आपका जो उसका स्पीड है वर्षा का पानी का वो थोड़ा सा स्लो होगा, तो इससे जो है आपका जो उसमें ऊपरी जमीन का उर्वरा शक्ति है वो बरकरार रहेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है, तो इस तरह से जो है ये तकनीकी किसान भाइयों को अपनाना है। और अगला जो तकनीकी है वो है अर्दिंग करना, अर्थात जब भी आप जो ये फसल लगा रहे हैं, जैसे हमने अरहर आधारित मिश्रित खेती की बात की जिसमें अरहर के साथ भिंडी किया, अरहर के साथ मकई, अरहर के साथ ज्वार बाजरा, अरहर के साथ तिल, अरहर के साथ बोदी और अरहर के साथ उड़द,
1: उरद।
0: इन सारी किस्मों में तो अरहर के साथ जो भिंडी है, अरहर के साथ जो ज्वार बाजरा, अरहर के साथ मकई है, इसमें आप मिट्टी चढ़ा दें। जब आपका फसल घुटने के बराबर हो जाए तब आप उसमें जो है मिट्टी चढ़ा दें। ये मिट्टी चढ़ाने से फायदा होगा कि
1: जी
0: आपका जो पौधा है एक तो वो गलेगा नहीं, सूखेगा नहीं, और पौधा आपका पुष्ट होगा और उसमें नमी जो है ज्यादा दिन तक संरक्षित रहेगी। तो प्रॉब्लम ये होता है जैसे कभी कभी 10 से 12 दिन तक जो ड्राई स्पेल, जो सुखाड़ जैसी परिस्थिति देखने को मिलती है किसान भाइयों को, तो वो चीज वहां समस्या नहीं होगी क्योंकि आप मिट्टी चढ़ाने से उसमें नमी जो है संरक्षित ज्यादा दिन तक रहेगी।
1: तो ये मिट्टी चढ़ाना कब है किसान भाई को, कितने दिनों
0: मिट्टी
1: पर?
0: मिट्टी लगभग ये आपको 35 दिन के बाद जो है चढ़ाना है, जब आपका किसान भाई आप अनुमान लगा लें जैसे जब आपका घुटने के बराबर हो जाए, चाहे वो मकई हो अरहर हो, तब आप जो है उसकी मिट्टी चढ़ा
1: मैंने
0: दें।
1: कोशिश करनी है तो आप देख सकते हैं कि घुटने के बराबर
0: हाँ
1: हो
0: घुटने
1: गया
0: के बराबर
1: पौधा
0: हो जाए
1: हमारा तो मिट्टी
0: तो मिट्टी
1: चढ़ाना।
0: चढ़ा दें, तो उससे जो है नमी आपका संरक्षित रहेगा और पौधा भी पुष्ट होगा और उसमें फली और बाली जो है उसमें ज्यादा लगेगी। तो इस तरह की ये काम करना है किसान भाइयों। और अगली तकनीकी के रूप में बात करूं तो किसान भाइयों जैसे कि हम लोग कई सालों से देख रहे हैं कि यहाँ जो वर्षापात की स्थिति है वो अनियमित है और अनियंत्रित है, जैसा हमने शुरू में ही बताया था,
1: जी जी
0: तो कभी कभी 10 से 12 दिन तक कोई वर्षापात नहीं होती है। वैसी परिस्थिति में जो हमारा मकई जैसा जो फसल है या जो धान का फसल है तो वो एक पानी की वजह से बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि आपका जो जमीन का एरिया है, आपका मैक्सिमम यहाँ जमीन देखें तो अपलैंड, मीडियम लैंड, लो लैंड, जो ऊपरी जमीन है, मध्यम जमीन है,
1: और
0: निचली
1: नीचे
0: जमीन है,
1: बिल्कुल।
0: इस तरह की जमीन है, सिचुएशन है यहाँ की, तो जो निचला जो स्लोप में जमीन आपका नीचे वाला जो एरिया है, तो आप अपने जमीन का 1/10वां भाग में एक डोभा बनाएं। और सरकार ने इस पर काफी जो है प्रयास भी किया है और काफी किसानों ने इस चीज को अपनाया भी है। तो हम लोग किसान भाइयों को सलाह देते हैं, विशेष तौर से मैं पलामू के परिपेक्ष में सलाह दे रहा हूं यहाँ के किसानों को, कि वो 1/10वें भाग में अपने खेत के किनारे में वो
1: डोभा का
0: डोभा
1: निर्माण
0: का
1: करें।
0: निर्माण करें। उस डोभा के निर्माण से आप एटलीस्ट एक पानी का पटवन तो जो है जरूर आप कर सकते हैं, आपका फसल वो सूखने से बच जाएगा। तो इस तरह के ये काम करना है। अगली जो तकनीकी के रूप में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे बड़े पैमाने पे

0: धान की खेती करते हैं और धान की खेती में आप करते हैं जब 10 से 12 दिन बारिश नहीं हो रही हो तो आपका पौधा देखते हैं कि दोपहर में मुरझाने लगता है। तो वैसी कंडीशन में किसान भाइयों को हम लोग सलाह देते हैं कि वो जिंक का छिड़काव करें, जिंक का स्प्रे करें। तो किसान भाई बाजार
1: जब
0: में
1: बारिश 10 से 12 दिन नहीं हुई और दोपहर में पौधे मुरझाने लगे
0: हैं तो वैसी परिस्थिति में जो है किसान भाई चिंतित हो जाते हैं। तो किसान भाइयों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आप जिंक का छिड़काव करते हैं तो उससे आपका 4 से 5 दिन तक जो सूखा का असर है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो जिंक का जो मात्रा है वह 1% जिंक का घोल का छिड़काव करना है।
1: 1% का मतलब पानी में 1 ग्राम
0: नहीं, 1 लीटर पानी में आपको 10 ग्राम आपको यूरिया का ये इसका जिंक का घोल को आपको छिड़काव करना है। तो इससे आपका जो प्रभाव है उसका धूप का वो काफी हद तक कम हो जाएगा।
1: जी जी।
0: तो ये तकनीकी किसान भाइयों को हम लोग अपनाने की सलाह देते हैं। और किसान भाई जैसे अगर आप देख रहे हैं कि निरंतर जो है अगर बारिश नहीं हो रही है या आपका फसल फेल हो गया है, वैसी कंडीशन में हम लोग किसान भाइयों को जो है कंटीजेंट फसल की जो बात करते हैं हम लोग, तो उसमें सलाह देते हैं कि यहाँ के परिप्रेक्ष्य में किसान भाई जो है कुल्थी की खेती करें या जो अन्य फसलें हैं जैसे जो सूखा रोधी फसलें हैं
1: जिसमें कम सहने की क्षमता हो,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जो सूखे को बर्दाश्त कर सके,
0: जिसमें कम से कम पानी पटवन की जरूरत पड़े। तो जैसे इस तरह की खेती में आप मड़ुआ की खेती कर सकते हैं, गोलनी कोदो की खेती कर सकते हैं, तो इन सब फसलों का आप चयन कर सकते हैं, कुल्थी की खेती कर सकते हैं, तो इन फसलों का आपको चयन करना चाहिए। और ये बड़े आसानी से जो है इस विपरीत परिस्थिति में कुछ न कुछ उपज जो है जरूर दे जाते हैं। ज्वार बाजरे की खेती आप कर सकते हैं।
1: आपने तो हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को बहुत बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुनीश कुमार सिंह से ली गई भेंटवार्ता, विषय था शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत विकसित तकनीकियां, और इनसे बातचीत कर रही थी अनिता तिर्की। और अब आइए जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यहाँ श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY यह भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई, और इसका प्रमुख उद्देश्य था देश के प्रत्येक खेत तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, जल संसाधनों का कुशल उपयोग को सुनिश्चित करना, और इस योजना का मुख्य लक्ष्य था हर खेत को पानी तथा प्रति बूंद अधिक फसल। और इसी सिद्धांत को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत श्रोताओं, नए स्रोत का विकास करना, नहरों का विस्तार, जल का संरक्षण, वर्षा जल का संचयन, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जिसमें कि ड्रिप सिंचाई हो या फिर स्प्रिंकल सिंचाई हो उसको प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाना, और साथ ही साथ किसान भाई को कम पानी में ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने की तकनीक के बारे में इन्हें सहायता प्रदान करना। श्रोताओं, योजना का जो मुख्य उद्देश्य भूजल और सतही जल का संतुलित उपयोग करना तथा पानी की बर्बादी को कम करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही साथ खेत, तालाब, चेकडेम, जलाशय, इन सभी चीज़ों का निर्माण करते हुए जल संरक्षण संबंधी सभी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों की सिंचाई की लागत को कम करना, कृषि के उत्पाद को बढ़ाना, जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ किसान भाई के आय में वृद्धि करने की दिशा में एक प्रमुख कदम मानी जाती है। श्रोताओं, तो निश्चित रूप से श्रोताओं, यह बहुत ही आवश्यक योजना, देश की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इससे भी जुड़ करके इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो श्रोताओं, चलते चलते अब इसी चर्चा के साथ आज के खेती बाड़ी सब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

देर में आप सुन सकेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और दक्षिण कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

का 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 8:15 पर, लेखक यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 से। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, कलाकार हैं अभिनेता अमरीश पुरी, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। उजाला उजाले उनकी यादों के, रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग आप सुनेंगे सुबह 10 बजे कार्यक्रम पिटारा में। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11 बजे। दोपहर 12:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। त्रिवेणी कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2 बजे, लेखक यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। सखी सहेली ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 3 बजे।

पिटारा में आप सुनेंगे कार्यक्रम सेहतनामा। डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। छायागीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह शाम को 5:30 पर। संध्या रंजन ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:35 पर। संगीत सरिता का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। फौजी भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे शाम 7 बजे। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, फिल्म का नाम खिलौना। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल नाटिका, वो आए घर में हमारे, लेखन राजकुमार दाग, निर्देशन सत्येंद्र शरद। रात 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। आज के फनकार कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर जयंत पत्रकार का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर। रंग तरंग कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 11 बजे। ये थी झरोका के अंतर्गत कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या रंजन।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। पंडित जी फिर एक बार आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे संगीतकार प्यारेलाल जी के बारे में। उनके द्वारा बजाया गया वॉयलिन कुछ गीतों में बड़ा मुखर रूप में हमें सुनने को मिलता है।
2: बिल्कुल,
1: तो इसके बारे में और क्या आप बताना चाहेंगे हमें?
2: देखिए, प्यारेलाल जी का एक पूरा स्कूल था फिल्म इंडस्ट्री में।
1: जी जी।
2: और उनको जितने वायलिन प्लेयर थे फिल्म इंडस्ट्री के वो बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। उनके पिताजी रामप्रसाद जी तो फिल्म के स्कूल में उनका बड़ा दर्जा था एज ए गुरु। फिल्मों में जो वायलिन सिखाने वाले खास लोग थे उनमें रामप्रसाद जी का भी बड़ा योगदान है।
1: जी, जी।
2: और प्यारेलाल जी खुद अच्छा वायलिन बजाते थे और उन्होंने कई सारी फिल्मों में व्यक्तिगत सोलो पीसेस दिए वायलिन के, बहुत सुंदर। मुझे उनके बारे में ज़्यादा कहने का अधिकार कम है इसलिए क्योंकि मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो एज ए वॉयलिनिस्ट फिल्मों में काफ़ी पॉपुलर थे
1: जी,
2: प्यारेलाल जी। और शुरू में जब ये बड़े म्यूजिक डायरेक्टर लोग थे, मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, रोशन साहब,
1: हाँ,
2: जयदेव साहब, उस वक्त उन्होंने कुछ सोलो पीसेस बजाए हैं फिल्मों में। और वो उनमें से मदन मोहन जी का एक गीत है जो हकीकत फिल्म का गीत है
1: जी,
2: तो वो गीत आप श्रोताओं को सुनवा सकते हैं। मदन मोहन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में प्यारेलाल जी ने जो सोलो पीस बजाया उसमें,
1: मैं ये सोच के उसके दर से।
2: एग्जैक्टली वही गीत।

0: हकीकत फिल्म का गीत अपने श्रोताओं को पंडित जी हमने अभी सुनवाया, रफी साहब का गाया हुआ, जिसमें प्यारे लाल जी द्वारा बजाया सोलो पीस हमने सुना। और इसी की बात हो रही थी आपसे, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कभी फिल्मों की ओर रुख करने का मन हुआ होगा आपका?
1: जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इनफैक्ट 1975 में मैं पुणे में था, नौकरी करता था
0: जी,
1: और तबादला करा के मैं केंद्रीय विद्यालय में बम्बई में आया। उस जमाने में मेरा एजेंडा में एक बात थी कि क्लासिकल म्यूज़िक मुझे सीखना चाहिए, और पंडित रामनारायण जी अकेले वो व्यक्ति थे जिनके साथ मैं मिल के उनसे सीखना चाहता था। लेकिन यूथ जो होता है वो बड़ा कंफ्यूज होता है। मैं भी जवान था उस वक्त, तो मेरा कभी कभी फिल्मों की तरफ भी अट्रैक्शन होता था, कभी क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ। उसी उधेड़बुन में एक दिन मैं जयदेव साहब के यहाँ जा पहुँचा, और जयदेव जी रहते थे हीरोज टाकीज जो बम्बई में है उसके पीछे लिली कोर्ट में। मेरे एक मित्र प्रदीप बारोट और मैं दोनों गए। प्रदीप बारोट सरोद बजाते हैं, तो उनके साथ मैं गया और जयदेव जी को मैंने देखा एक कमरे में चटाई बिछाए हुए। आज के म्यूजिक डायरेक्टरों से उनकी तुलना नहीं कर सकते आप, वो इतने बड़े लोग थे, महान बड़े जो वास्तव में कहे जाने चाहिए
0: जी।
1: एक चटाई बिछा रखी, तकिया लगा के थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, और पास में हारमोनियम पड़ा हुआ, तो हम गए मिलने, हमें तो दर्शन करने थे। उन्होंने मुझे सलाह दी और मेरे गुरुजी पंडित रामनारायण ने सलाह दी कि फिल्मों में अगर जाओ तो मेरे पास मत सीखना। इवन जयदेव जी ने भी यही कहा कि फिल्मों में जाओगे तो फिल्मी हो जाओगे। और ये देखिए बड़प्पन बड़े लोगों का, जयदेव जी, गुरुजी, नौशाद साहब या रोशन साहब, ये सब फिल्मों में रहे लेकिन फिल्मी नहीं हुए। और यहाँ एक बात मैं बहुत आदर के साथ श्रोताओं को और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी ने फिल्मों में असंख्य पीसेस बजाए और एक से एक उम्दा, जिनका जिक्र अगले एपिसोड में करेंगे
0: जी।
1: तो जयदेव जी ने मुझे कहा कि फिल्मों में बजाओगे तो फिल्मी होके रह जाओगे। जयदेव जी इतने महान संगीतज्ञ थे कि उन्होंने जिस फिल्म में भी गीत बनाए हैं वो गीत महान हुए। एक गीत उनका सुना दीजिए, तू चंदा में चांदनी, रेशमा और शेरा फिल्म का, ये मेरी तरफ से उनको आदर होगा।
0: जयदेव साहब की बात निकली है तो उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं
1: जी। अवश्य

0: महान संगीतकार जयदेव की ये संगीत रचना फिल्म रेशमा और शेरा से अपने श्रोताओं को हमने सुनवाई, लता जी की आवाज, बाल कवि बैरागी की रचना, और इस रचना के साथ ही वॉयलिन का विहंगम संसार, इस श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न हो रही है। नमस्कार।
1: वॉयलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परंपरा।

0: www.radiomirchi.co.in.
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका? गुड्डी की फीस का।
3: दिखा 20,000 का लोन तुरंत।
2: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
7: PLI है ना?
8: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
9: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखंड समेत देश दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का हुआ संचार, प्रधानमंत्री ने कहा बेहतर भविष्य के लिए योग जरूरी। राजधानी रांची समेत राज्य के 67 केंद्रों पर नीट UG की परीक्षा संपन्न, केंद्रों पर दिखे कदाचार मुक्त परीक्षा के व्यापक इंतजाम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची संसदीय क्षेत्र को सड़कों की दी सौगात, मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छतरपुर में सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा SIR के प्रारूप मतदाता सूची में अनकलेक्टेबल इन्यूमरेशन फॉर्म की 5 श्रेणियां नहीं की जाएंगी शामिल। और भारत ने जीता FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब, मेजबान न्यूजीलैंड को एक तरफा मुकाबले में 2 से किया पराजित, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर भविष्य के लिए योग जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
10: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
9: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन के बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का अमूल्य उपहार है जो शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर स्वस्थ तथा अनुशासित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुई और योग को स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी बताया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के मोरहाबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में बच्चों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। श्री मरांडी ने योग को सभी से अपनाने का आग्रह किया।
11: योग से कैसे लोग निरोग हो सकते, और उसके लिए अगर आदमी सुबह को आधा घंटा एक घंटा समय देता है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया आप इस अंगीकार के, और पूरी दुनिया में आप सार्वजनिक रूप से आप सभी योग करते हुए आपको लोग दिखाई।
9: राज्य के साहिबगंज, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो, देवघर, जामताड़ा, गुमला, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, धनबाद और गोड्डा सहित सभी जिलों में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा बलों, विद्यार्थियों और आम लोगों ने भी सामूहिक योगाभ्यास किया। राजधानी रांची समेत राज्यभर के 67 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच नीट UG की पुनर्परीक्षा ली गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था किए गए थे। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए NTA और जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची संसदीय क्षेत्र के कांके में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 4,54,00,000 रुपए की लागत से पातगाई से बंटोली तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। श्री सेठ ने कहा कि यह सड़क क्षेत्र के आवागमन को सुगम बनाने के साथ विकास को नई गति प्रदान करेगी।

0: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छतरपुर और नवडीहा बाजार प्रखंड में कई महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम भी मौजूद थे। इस दौरान श्री किशोर ने कहा कि इन योजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि SIR के प्रारूप मतदाता सूची में अनकलेक्टेबल इन्यूमरेशन फॉर्म की 5 श्रेणियां शामिल नहीं की जाएंगी। उन्होंने आज कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक और गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि मौजूदा मतदाता सूची से कुछ मतदाताओं के नाम हटा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक वर्तमान मतदाता सूची के सभी मौजूदा मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म प्रदान किया जाएगा और वे सभी मतदाता जो हस्ताक्षर इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करेंगे उन्हें SIR की प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर श्री दुबे ने बताया कि कल से उनके संसदीय क्षेत्र में निःशुल्क नमो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा ATM के जरिए प्रत्येक परिवार को 20 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
1: इस लोकसभा के 14 से 15 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा और जो गांव में लगेगा उसमें सबको ATM कार्ड देंगे तो 20 लीटर से ज्यादा एक परिवार को शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। और तीसरा हमने ये तय किया है कि अब प्रत्येक विधानसभा में निःशुल्क एम्बुलेंस मिलेगा, उसका एक टोल फ्री नंबर हम जारी करेंगे और 24 घंटे 365 दिन जब भी लोगों को आवश्यकता होगी वो एम्बुलेंस मिलेगा।
0: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की करारी हार के बाद इंडी गठबंधन में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि कांग्रेस, माले और राजद के नेताओं द्वारा दिया जा रहा बयानबाजी उचित नहीं है। श्री पांडे ने इस मामले पर महागठबंधन के नेताओं के साथ समीक्षा की।
2: इसके तरफ से क्या बयान आ रहा है, RJD की तरफ से क्या बयान आ रहा है, माले की तरफ से क्या बयान आ रहा है, ये सभी चीजें हम लोगों के संज्ञान में। लेकिन इस तरह से गठबंधन में अगर हम लोग सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पे आरोप लगाए तो उससे बेहतर होगा कि हम गठबंधन की बैठक करें और उस गठबंधन की बैठक में हम चर्चा कर लें और उसके बाद जो भी निर्णय हो गठबंधन में उस निर्णय को हम लागू।
0: धनबाद में आम उत्पादकों को बाजार से जोड़ने और बागवानी को बढ़ावा देने की दिशा में जिला प्रशासन ने आज आम उत्सव की शुरुआत की है। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि स्थानीय किसानों द्वारा प्राकृतिक तरीके से उत्पादित आम लोगों द्वारा खूब पसंद किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आम बागवानी के जरिए किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
3: इस साल हम लोग टारगेट लिए हैं कि जितना हर साल आम बागवानी होता है इस साल उसका कम से कम 2 से 3 गुना आम बागवानी हम लोग नरेगा से करेंगे। मेन समस्या जो झारखंड की है पथारी क्षेत्र है पानी का, तो वो हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 एकड़ से बड़ा का पैच हो वहाँ हम लोग पानी के लिए DMFT से जिला योजना से पानी का स्रोत जो है डीप बोरिंग करके या चापाकल बना के देंगे।
0: मौसम विभाग केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 23 जून तक राज्य के कुछ और इलाकों में मानसून प्रवेश कर सकता है। केंद्र के मुताबिक राज्य में 27 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान धनबाद के तोपचांची में सर्वाधिक 40.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। हॉकी, भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। भारतीय टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार यह प्रतियोगिता जीती है। गौरतलब है कि इस टीम में झारखंड की 3 बेटियां कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग शामिल थी। इस खिताबी जीत के साथ ही भारत ने महिला FIH प्रो लीग में

0: अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को जीत के लिए बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखंड समेत देश दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का हुआ संचार। प्रधानमंत्री ने कहा, बेहतर भविष्य के लिए योग जरूरी। राजधानी रांची समेत राज्य के 67 केंद्रों पर नीट यूजी की परीक्षा संपन्न। केंद्रों पर दिखे कदाचार मुक्त परीक्षा के व्यापक इंतजाम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची संसदीय क्षेत्र के सड़कों की दी सौगात। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छतरपुर में सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, SIR के प्रारूप मतदाता सूची में अनकलेक्टेबल इन्यूमरेशन फॉर्म की 5 श्रेणियां नहीं की जाएंगी शामिल। और भारत ने जीता FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब। मेजबान न्यूजीलैंड को एक तरफा मुकाबले में 2 गोल से किया पराजित। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
5: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
5: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
6: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता।
1: भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे विकास, जन कल्याण और सुशासन का एक शानदार सफर बताया है। इस अवसर पर पार्टी ने देश भर में विशेष अभियान चलाकर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है। रांची से पहुंचे भाजपा के मुख्य सचेतक सहटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा,
2: वर्षों में जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ उसमें सबसे पहला विकास, विश्वास और जन कल्याण की यात्रा की प्रारंभ हुई। आप 12 वर्षों में देखे होंगे कि जनता का अटूट विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर हुआ। जल जीवन मिशन के तहत 35 करोड़ लोगों तक शुद्ध पेयजल मिल रहा है, लेकिन झारखंड में ये सरकार जल जीवन मिशन में लूट मचाई, इसीलिए आज यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो दिखना चाहिए उसका लाभ हम लोगों को नहीं दिख रहा है।
1: हजारीबाग की नई पीढ़ी रक्तदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था।
3: सबके माध्यम से युवाओं के बीच प्रचार प्रसार किया गया, ऐसे हर वर्ग के बीच प्रचार प्रसार है, लेकिन आज जैसा कि संख्या देख रहे हैं युवाओं की संख्या ज्यादा है, तो इसे यह स्पष्ट करता है कि युवाओं में जो है समाज के प्रति सजगता आ रही है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हजारीबाग के जो युवा है इस तरह के पुनित कार्य में आगे आएंगे।
1: जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हजारीबाग में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल नीतेश श्रीवास्तव ने बताया,
4: ये कार्यक्रम था एक बेसिकली वेटरन्स आउटरीच बोल सकते हैं, जिसमें जो रिटायर्ड सैनिक हैं, सैनिक मतलब वो किसी भी फोर्सेस के हो सकते हैं, नेवी एयरफोर्स वाले भी होते हैं, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, और उनके डिपेंडेंट्स हैं या वीर नारियां हैं, वो सभी यहाँ पे जरूरी नहीं कि अपनी कोई समस्या लेने ही आए, कोई नई जानकारी है जो उनके लिए उपयोगी है या हो सकती है या वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो सब उनके साथ शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और यदि किसी की कोई समस्या थी जो हम यहाँ निवारण कर सकते हैं तो उसके लिए हमारा स्टाफ आया हुआ है, और यदि यहाँ नहीं कर सकते हम तो हमारे पास एक मैकेनिज्म है कि उनकी जो भी समस्या है वो हम एक ग्रीवांस फॉर्म में रजिस्टर करेंगे, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेंगे, और यदि वो इंडियन आर्मी के किसी भी आर्म से कंसर्न हो हम उस रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क करेंगे और उस रिकॉर्ड ऑफिस को उनकी समस्या बताएंगे और इंश्योर करेंगे कि वो रिजॉल्व हो।
1: एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हजारीबाग में 1,00,000 पौधा मानसून के दौरान लगाने की तैयारी है। भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में पौधरोपण किया जाएगा।
5: पर्यावरण दिवस के अवसर पे पूर्व के भांति भी इस बार भी एक पौधा लगाने का संकल्प किए हैं। काफी अच्छे लोग जुड़े हैं, माधव महतो जी जुड़े हुए हैं, केपी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, और आज का शोभा बढ़ाने के लिए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के परिवार भी आए हुए हैं, माता पिता आए, पद्मश्री बुलू इमाम के परिवार के लोग भी आए हुए हैं, तो हौसला मिलता है सबको आने से और जो मुहिम है उसको पूरा करने में सहयोग होता है। तो सारे लोगों की मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को मोटिवेट करें कि जो हजारीबाग को हरा भरा करने का प्रयास किया जा रहा है, सारे लोग एकजुट के होंगे तभी इस मुहिम को पूरा किया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम जन जन तक पहुँच रहा है, यही कारण है कि वृक्षों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वृक्ष है तो हम है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
0: अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। ७१ में पाकिस्तान की ओर से युद्ध का आभास होते ही संभावित हमलों को रोकने के लिए रक्षात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके तहत 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री को मध्य के पास साकी नाले पर फतेहपुर लोपोक का भार सौंपा गया। इस इन्फेंट्री में ही शामिल थे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। इस इन्फेंट्री ने छनकला, तुर और भिंडी औलक गाँवों में निगरानी रखने के साथ ही वेरा में भी लड़ाकू दस्ता स्थापित कर दिया। मराठा लाइट इन्फेंट्री के इस कदम से फतेहपुर, बुर्ज और घोगा इलाके की सीमा सुरक्षा बल पोस्ट को भी मजबूती मिली। यूं भी मराठा लाइट इन्फेंट्री अकेली नहीं थी, उनके साथ एक फील्ड रेजिमेंट और 66वीं आर्मर्ड रेजिमेंट की विजयंत टैंक स्क्वाडन भी थी। वहीं अमृतसर के दिशा में शत्रुओं को रोकने के लिए दूसरी बटालियन तैनात थी और तीसरी बटालियन को गुरदासपुर सेक्टर में मोर्चा दिया गया। इस तरह हम शत्रुओं के लिए पूरी तरह से तैयार थे।
1: बढ़े चलो सिंह के दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो। बढ़े चलो बहादुरो बढ़े चलो।

0: के अनुसार पाकिस्तान ने 3 और 4 दिसंबर की रात अपनी 2 बटालियन के साथ हमला बोला। 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री का मुकाबला 43वीं बलूच के साथ हुआ। देर रात शुरू हुए इस हमले में पाकिस्तान को बढ़त मिली और उसने घोगा, बहलोल, गुलगढ़ के साथ पूरे धुस्सी बंद पर कब्जा कर लिया, जिसमें दक्षिण छनकला से लेकर दक्षिण भिंडी औलख भी शामिल थे। सुरक्षा सीमा बल की फतेहपुर पोस्ट पर भी दुश्मनों का कब्जा था। भारतीय सेना के हाथ में गांव बने रहे, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र दुश्मनों के कब्जे में था। युद्ध के मैदान में हार जीत बनी रहती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है अपने हौसले और धैर्य को बनाए रखना। यहाँ हम ये नहीं देखते कि दुश्मन के हाथों में क्या है, बल्कि इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास मौजूद संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जाए। यही वो गुण है जो हमारी भारतीय सेना के जवानों के अंदर मौजूद है।
1: आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या की जान।

करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की धूम हार दो। आन पान शान या की जान का हो दान।

क्या का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो काल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।

0: जयमाला, सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला, सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। पाकिस्तान की ओर से युद्ध आरंभ हो चुका था और एक बड़ा क्षेत्र भी उनके कब्जे में था। हमारे आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी रेजिमेंट के साथ युद्ध मैदान में डटे हुए थे। आगे की रणनीति पर विचार हो रहा था तो 5 दिसंबर को 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री ने अपना प्रयास जारी रखा और एक छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण घटना हुई। दुग और औलख में ईस्ट बंगाल राइफल्स के करीब 150 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। वो अपने साथ पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी भी ले आए थे। सेना ने यह तय किया कि पाकिस्तान के कब्जे से धुस्सी बंद को वापस लेना है, किसी भी हार से तुरंत बौखलाकर वार न करना बल्कि कुछ कदम पीछे हटकर एक रणनीति के साथ वापस युद्ध मैदान में जाना एक सार्थक परिणाम भी लाता है।

15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट युद्ध के मैदान में डटी थी। इसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर रणबीर सिंह, जो सेकंड इन कमांडर थे और कंपनी कमांडर का दायित्व भी निभा रहे थे। वो अपनी सेना के साथ बुर्ज की ओर आगे बढ़ने लगे। शत्रुओं को इसकी भनक लगते ही 6 दिसंबर को बुर्ज पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की ओर से दिन के उजाले में ही हमला होने लगा। ऐसे में मराठा लाइट इन्फेंट्री ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी उम्मीद शत्रु सेना को नहीं थी, वो इस हमले से सकते में आ गए। पीछे हटने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। मेजर रणबीर सिंह ने निर्णय लिया कि अब बुर्ज पर अधिकार करने में ज्यादा समय लगाना उचित नहीं होगा। अगर जरा सी भी देर की गई तो शत्रु एक बार फिर तैयार हो सकते हैं। एक ओर जहां शत्रु सेना एक छोटी सी जीत के जश्न में ही डूब गई थी, वहीं हमारी सेना के निर्णय से आप समझ सकते हैं कि अगर शत्रुओं को खदेड़ना हो तो एक छोटी जीत को अपने दूसरे प्रयास से बड़ी जीत में बदलने के बाद भी जश्न मनाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना को बुर्ज में मुंह तोड़ जवाब देने के बाद सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथियों के साथ अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनकी रेजिमेंट का नेतृत्व मेजर रणबीर सिंह के हाथ में था। मेजर रणबीर सिंह ने ये तय किया कि अब दुश्मन सेना को ज्यादा समय देना उचित नहीं है। अपनी अन्य साथी सेनाओं के साथ उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाने का फैसला किया जो दुश्मन के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करे। बिना देर करते हुए एक योजनाबद्ध हमला करने का फैसला किया गया, जहां दुश्मन को दोनों ओर से घेरने की योजना बनाते हुए टैंक टुकड़ी को पीछे से और बाकी आगे से हमला करने निकल चले। इससे शत्रु के आगे बढ़ने का रास्ता तो बंद होता ही था, साथ ही वो पीछे हटने लायक भी नहीं रह पाता। शत्रु की कल्पना से परे एक ऐसा रास्ता निकालना जो उसके होश उड़ा दे, एक बेहतरीन नेतृत्व का उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरणों की भरमार है हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा में।

बेहतरीन नेतृत्व तभी सफल हो पाता है जब उसके पास एक साहसी और निडर सेना मौजूद हो। मेजर रणबीर सिंह 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और अन्य रेजिमेंट्स के साथ बुर्ज पर दुश्मनों को दोनों ओर से घेरने की योजना बना चुके थे। ऐसे में उन्हें अपने साथ मौजूद सभी सैनिकों पर पूरा भरोसा था। रेजिमेंट्स भी अपने साहस, पराक्रम और जज्बे का एक एक कतरा न्यौछावर करने को तैयार थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जिनकी रग रग में दौड़ता है कर्तव्य, सम्मान और साहस, जो हर बार शत्रुओं को ये याद दिलाते हैं कि वो भारत की सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री हैं, जिनके युद्ध घोष से ही शत्रु के हृदय में भय की झंकार होती है। उसी 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल थे हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो अपने साथियों के साथ मेजर रणबीर सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थे शत्रुओं पर हमला बोलने के लिए। 6 दिसंबर को बुर्ज पर हमला शुरू हुआ। बंकरों में छुपी शत्रु सेना के साथ मराठा पैदल सेना ने आमने सामने की लड़ाई की। यहाँ तक कि हमारी सेना ने कुछ स्थितियों में शत्रुओं से सीधे हथियार छीन लिए और उन्हें हराया। ये एक बेहद क्रूर और मुश्किलों से भरी लड़ाई थी, क्योंकि हमारे सैनिक शत्रुओं के मोर्चे पर जाकर उनसे सीधे लड़ रहे थे। इस बीच पीछे से टैंक और पैदल सैनिक भी उनकी मदद के लिए आ रहे थे। शत्रु बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। एक ओर उस पर सीधा हमला जारी था और दूसरी ओर उसे अपनी हार नजर आने लगी थी। ऐसी बौखलाहट में अक्सर आक्रामकता बढ़ती जाती है। सिपाही पांडुरंग सालुंखे भी यहाँ शत्रुओं से दो दो हाथ कर रहे थे। तभी उनकी नजर शत्रुओं के एक ऐसी चाल पर पड़ी जिससे हमारी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। शत्रु ने एक रॉकेट लॉन्चर पैदल सेना के साथ आ रहे भारतीय टैंकों की ओर मोड़ दिया था। अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती थी। सिपाही पांडुरंग सालुंखे शत्रु सेना से बुर्ज पर अपने साथियों के साथ भिड़ रहे थे। इसी बीच दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर पीछे से आती पैदल सेना और भारतीय टैंक की ओर मोड़ दिया। एक पल में ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जैसे ही सिपाही पांडुरंग ने रॉकेट लॉन्चर को देखा, बिना वक्त गवाए वो उस ओर दौड़ पड़े। सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने शत्रु सैनिक के हाथ से रॉकेट लॉन्चर छीन लिया और उस शत्रु सैनिक को मार गिराया, लेकिन शत्रु उनके इस कारनामे से बौखला गया और सिपाही पांडुरंग सालुंखे पर स्टेन गन से धुआंधार वार किया। गोलियों की इस बौछार से सिपाही पांडुरंग सालुंखे वहीं शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपने इस बलिदान से अपने कई साथियों की जान बचा ली। यही नहीं, उनके इस बलिदान के कारण ही बुर्ज पर भारतीय सेना का कब्जा हो सका।

सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने जब बलिदान दिया तब वो मात्र 22 वर्ष के थे। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वो बड़ा काम किया जिनसे उनका नाम अमर हो गया। सिपाही पांडुरंग सालुंखे को उनकी इस असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

हम इस जांबाज सिपाही को नमन करते हैं। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर निहर शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष साज और आवाज। बांसुरी पर हैं पारसनाथ। सबसे पहले सुनते हैं इस गीत की धुन।

आइए सुनते हैं अब इस गीत को फिल्म सनम तेरी कसम से, आवाज़ किशोर कुमार की, गीत के बोल गुलशन बावरा के और संगीत आर डी बर्मन का।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं झलकी मोटी मछली। लेखक हैं वी एम आनंद और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।
1: मिस्टर भैरवी लाल, मिस्टर बी लाल।
2: यस सर।
1: जब से हमने ये वन टू ऑल डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, यहाँ पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मक्खियाँ ही मक्खियाँ, मक्खियाँ ही मक्खियाँ।
2: मक्खियाँ मोमो मक्खियाँ। सर मैं आपको मतलब नहीं समझ।
1: मतलब तुम उस दिन समझोगे भैरवी लाल, जब इस स्टोर में ताले लग जाएंगे।
2: ऐसा ना करिएगा सर, ऐसा ना करिएगा।
1: बजाय इसके कि तुम लोग किसी कस्टमर से बात करो, किसी मोटे ग्राहक को फांसो, सारे दिन मक्खियां मारते रहते हो।
2: क्या करें सर, यहाँ पर कोई खास कस्टमर तो आता नहीं।
1: कस्टमर आता नहीं? अरे जब आता है तब तुम कौन सी तोप मार लेते हो। कस्टमर खाली हाथ चला जाता है, और खरीदता भी है तो 10-5 रुपए का, ऐसे कैसे काम चलेगा।

0: क्यूमिस पाउडर वाला।
1: यस बॉस।
0: तुम सारा दिन अपना मेकअप और हेयर स्टाइल ठीक किया करती हो, कभी किसी कस्टमर को अटेंड करती हो?
1: पन तो अपना सब कस्टमर अटेंड करते हैं सर, पर इधर कौन सा बड़ा कस्टमर आने ही मांगता है।
0: मिस पाउडर वाला कस्टमर वही बड़ा होता है जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, समझी तुम?
2: सर, जब से आपने हमें ये सिखाया है कि हर ग्राहक को अपना बाप समझो, तब से मैं हर ग्राहक को अपना बाप समझ रहा हूँ।
1: यस सर, आई ऑल्सो ट्रीट माई एवरी कस्टमर लाइक माई डैडी।
3: लेकिन जिस डैडी की जेब न साफ की जाए वो डैडी कैसा? मेरा मतलब है अब से तुम हर ग्राहक को मछली समझो।
2: मछली?
1: You mean a fish?
0: Yes, हर ग्राहक को मछली समझो।
2: अच्छा।
0: और अपने आप को बगुला, जो ही मछली स्टोर में घुसे उस पर
2: झपट पड़ो।
0: राइट।
4: हम तो कहीं तक कसके तक पहुंच ले जाएंगे ना पावर।
2: चुप। सर, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया।
0: देखो, कस्टमर के सामने अपने माल की तारीफों के पुल बांधो और कस्टमर को किसी चीज की प्राइस डिस्कस करने का मौका मत दो, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि उसको बोलने का मौका मत दो, उसको इंटरटेन करो। और फिर देखो कस्टमर कितना बड़ा ऑर्डर देता है तुमको।
1: रियली सर, इट इज अ वंडरफुल आइडिया। अब तो कोई भी कस्टमर इधर से बच के जाएगा ही नहीं सर।
4: जाए कैसे मैं
2: सर? रियली यू आर ए
1: ब्रेन।
0: कस्टमर आया है।
1: कस्टमर ना कहिए सर।
5: वंडर, आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से लेकर कार तक अच्छी मिलती है।
0: देखो भाई, आज इस ग्राहक से बड़ा ऑर्डर लेना है। आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जाइए जाइए जाइए। आइए सर, आइए आइए आइए। खुशामदेद, वेलकम, स्वागतम। वन टू ऑल स्टोर हमने आपके लिए ही खोला है सर। यहाँ पर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मिलती है।
5: वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा पूछिए तो मुझे ऐसी ही दुकान की यानी ऐसे स्टोर की तलाश थी। क्या मुझे काफी चैन मिला?
0: हाँ,
5: मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
0: सर आप फिक्र न करें, जो चीज आपको शहर में किसी दुकान पर नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ मिलेगी, यानी कि सुई से लेके कार तक सर। और सर आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं सर, आप यहां से बचकर नहीं जा सकते। सुनो सुनो, मछली फंस गई।
1: मोटी मछली?
0: जी जी जी जी जी, मेरा मतलब है मोटी मछली। मोटी मछली वो आप देखना है सर, वो हमारे खिलौनों का डिपार्टमेंट, टॉयज डिपार्टमेंट।
5: योर मेन टॉयज डिपार्टमेंट?
0: जी हाँ सर, वहां पर हर तरह के खिलौने मौजूद है सर, और वहां पर एक मोटी मछली भी है।
5: You mean fat fish?
0: जी हाँ सर, फैट फिश। आइए ना, आपको हर डिपार्टमेंट की सैर कराई जाए। चलिए सबसे पहले हम वहीं चलते हैं, मिस पाउडर वाला।
1: Yes, sir.
0: सबसे पहले हम वहीं चलते हैं।
1: Sure.
0: ये देखिए सर, ये है हमारा टॉयज डिपार्टमेंट। ये देखिए सर, ये भालू, भालू देखिए, भालू कितना सुंदर है। और ये कुत्ता देखिए सर। और ये सर कबूतर। और ये सर, ये देखिए मोटी मछली है।
5: मोटी मछली? ओ आई सी, इट्स अ रियली लवली फैट फिश।
0: सर ये मछली कितनी हैंडसम है, कितनी इनोसेंट है, बिल्कुल
2: आप की तरह।
0: सर ये देखिए,
5: आई लाइक इट वेरी वेरी मच।
0: ओ थैंक यू, थैंक यू। आपकी चॉइस बेमिसाल है सर। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि आपके छोटे बच्चे की एज क्या है?
5: मेरा छोटा बच्चा? ओ, ही इज ओनली 5 मंथ्स।
1: ओह गुड,
0: वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो फिर आप ये बच्चा गाड़ी जरूर पसंद करेंगे। सर हमारे पास बच्चा गाड़ी का नया स्टॉक आया है, ये देखिए लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट डिजाइन। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि इन बच्चा गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है?
5: अगर मुझसे पूछा जाए तो ये गाड़ी सबसे बढ़िया है।
0: ओह वंडरफुल सर, वंडरफुल, ये चॉइस इज वंडरफुल। सर ये बच्चा गाड़ी ऑटोमेटिक है।
5: ऑटोमेटिक?
0: जी हाँ, यू समझिए कि जब आप और मेम साहब शाम को घूमने निकलेंगे तो साथ साथ ये बच्चा गाड़ी आप ही आप चलती जाएगी सर।
5: वंडरफुल, वंडरफुल, यानी कि अपने

0: नहीं, आपका
1: जी हाँ सर, देखिए वो बात यूं है कि कभी आप बच्चा गाली पकड़ेंगे तो मैम साहब साथ चलेंगी, कभी मैम साहब साथ चलेंगी तो आप बच्चा गाली पकड़ेंगे, बस इस तरह से गाली अपने आप चलती जाएगी सर।
0: ओ आई सी, आई सी।
1: और ये देखिए सर, इस बच्चा गाली में एक निपुल लटका हुआ है, जब भी बच्चा रोने लगे आप ये निपुल चूस सकते हैं। जी जी जी जी, मेरा मतलब है सर, ये बच्चे को निपुल चूसा सकते हैं सर।
0: ओ आई सी, वेरी गुड।
1: आइए साथ इस तरफ आइए। जी हाँ जी हाँ, यहाँ पर ये देखिए सर, ये हमारा कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट है सर, और इनसे मिलिए सर, ये हमारे कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट की इंचार्ज है मिस पाउडर वाला।
2: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
1: पाउडर वाला बी टैक्टफुल, ये बहुत बड़ा कस्टमर है। मोटी मछली,
0: मछली।
2: ओके बॉस। सर आप जरा हाथ आके देंगे?
0: यू मीन मैं अपना हाथ बढ़ाऊं?
2: यस सर, ये सेंट लगा रही हूँ आपके हाथ में, जरा सुनकर देखिए कैसा खुशबू है।
0: बहुत बढ़िया खुशबू है इसका।
2: सर ये सेंट काटा माटा जैस्मिन सेंट का है।
0: काटा माटा जैस्मिन?
2: यस सर, काटा माटा जैस्मिन सेंट का खुशबू है। सर जो भी कोई इस सेंट को लगाकर बाजार में जाएगा ना, सारी दुनिया उसके पीछे पीछे पागलों की तरह भागेगा। और सर ये देखिए, रॉक एंड रोल फॉक्स ट्रॉट पाउडर। सर ये पाउडर कोई ऑर्डिनरी पाउडर नहीं है, इस पाउडर को लगाकर सारा फिल्म इंडस्ट्री महकता है सर। फिल्म का डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, साइड हीरोइन, सब लगाता है, सब वन टू ऑल सब लगाता है, पता सर? नॉट ओनली दैट, इधर देखिए सर, ये पाउडर जो है ना, फिल्म का डायरेक्टर तो डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर, स्टेज डायरेक्टर, यहाँ तक कि रेडियो का डायरेक्टर भी इस्तेमाल करता है सर। फिर आप क्यों नहीं यूज करेगा? करेगा ना। और सर ये देखिए, ओडो कॉमन शैम्पू, इस शैम्पू से आपका सर का बाल एकदम मुलायम हो जाएगा सर।
0: लेकिन ये शैम्पू,
2: समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। आप ये शैम्पू लेकर क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, ये शैम्पू आपके लिए नहीं है, आपका मेम साहब के लिए है। आई नो सर, आप तो फिर का गंजा है।
1: ओ मिस पाउडर वाला, तुम साहब को गंजा कहती हो? डोंट यू नो ए कस्टमर इज नेवर गंजा।
2: आई एम सॉरी सर।
1: इट्स ऑल राइट सर, आई एम वेरी सॉरी सर, वो मुझे बड़ा अफसोस है कि इसने आपको गंजा कहा सर।
0: डजंट मैटर, डजंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
1: बात क्यों नहीं सर, बात क्यों नहीं है? अगर देखा जाए सर तो आप गंजे नहीं है सर, मेरा मतलब आप गंजे लगते जरूर है मगर आप गंजे है या नहीं, लेकिन फिर भी आपके सर पे बाल है, मतलब बाल नहीं है लेकिन फिर भी बाल है, लेकिन नहीं है लेकिन है, मेरा मतलब आपके सर पर थोड़े थोड़े बाल हैं।
0: ओ यस
1: सर, आई थिंक नाउ यू नीड दिस शैम्पू।
0: व्हाई नॉट।
1: और सर इनसे मिलिए, ये हमारे म्यूजिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज है मिस्टर भैरवी लाल, यानी कि मिस्टर बी लाल।
3: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
3: ये देखिए सर, हमारे पास तरह तरह के नए से नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हर साज यहाँ मौजूद है, हर साज यहाँ पर बिकता है। हुजूर आप कौन सा साज बजाने का शौक रखते हैं? मेरा मतलब है बेंजो, गिटार, सारंगी, तानपुरा, तबला, ढोलक।
0: मुझे आई मीन हर साज बजाने का शौक है, माई हॉबी।
3: वंडरफुल सर, वंडरफुल। वो तो हुजूर के चेहरे से नजर आ रहा है कि हुजूर को हर साज बजाने का शौक है। और हुजूर को रिकॉर्ड सुनने का भी तो शौक होगा।
0: व्हाई नॉट।
3: तो सर आप ताल, कहरवा, भैरवी, पाड़ी ख्याल, मैदानी ख्याल, तीन ताल, चार ताल, नैनी ताल, मल्ली ताल पसंद करेंगे, या दादरा ठुमरी गजल के रिकॉर्ड पसंद करेंगे, या फिर आप फिल्मी गाने
0: झुमका गिरा रे पप्पा
3: चौक, जैसा कि कल जो मेरा चौपाटी पर आग

0: जाना चले नहीं जाना चले नहीं जाना।
1: चुप रहिए, मुझे आई मीन सिर्फ कथकली का रिकॉर्ड पसंद है।
2: कथकली? लेकिन सर कथकली तो नाच का नाम है, किसी गवैये का नाम तो नहीं सर।
3: भैरवी लाल, डोंट यू नो ए कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर जो कहता है ठीक कहता है।
2: नो सर, नो सर, आई मीन यस सर, आप ठीक कहते हैं। कथकली हमारे देश की एक मशहूर गायिका है। कथकली ने सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। उसके गले में क्या दर्द है, मेरा मतलब है गले में क्या आवाज है, आवाज में क्या दर्द है, दर्द में क्या कसक है, कसक में क्या जादू है। कथकली का गाना सुनते ही आंखों में पसीना और माथे पर आंसू, मेरा मतलब है आंखों में आंसू और माथे पर पसीना आ जाता है।
3: मिस्टर भैरवी लाल साहब हमारे स्टोर में पहली बार तशरीफ लाए हैं, इनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लाओ। आप तशरीफ रखिए सर, मैं भी मंगवाता हूँ
2: कोल्ड ड्रिंक।
3: सुनो सुनो सुनो,
1: मैंगो जूस,
3: मैंगो जूस लाओ।
2: मैंगो जूस, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी।
3: सर ये लिए सर, आप मैंगो जूस पीजिए सर।
1: मैंगो जूस
3: आप तो शर्मिंदा करते हैं सर, आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर्स को एंटरटेन करना हमारी ड्यूटी है सर। आप ये सेब खाइए सर, सेब। आप ये नाशपाती खाइए, नाशपाती।
1: भाई अब मजबूर कट तो खाना ही पड़ेगा।
3: इट्स अ प्लेजर सर। देखा भैरवी लाल कितना बड़ा ग्राहक फंसा है आज।
2: ग्राहक ना कहिए सर, मोटी मछली।
3: भैरवी लाल आज इस ग्राहक से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है।
2: ये सब आपके टैग का नतीजा है सर।
3: सर तो फिर आप अपना ऑर्डर नोट करा दीजिए सर।
0: ये सर
1: बात ये है कि मैंने अभी तो आपका सारा स्टोर देखा था। आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से कार तक।
3: यस सर, यू आर राइट, सुई से कार तक।
1: हाँ तो आपका वो सुइयों का डिपार्टमेंट किधर है?
0: व्हाट,
3: सुइयों का डिपार्टमेंट? सर वो तो हमने यूं ही लिख रखा था, सुइयां हमारे पास नहीं है सर। आप तो मजाक कर रहे हैं।
1: लेकिन मुझे तो सिर्फ एक पैकेट सुइयों का चाहिए।
3: जी पैकेट सुइयों का चाहिए, सुइयों का पैकेट।
1: आपने बेकार मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा मैं चला।
0: अरे लेकिन साहब सुनो,
2: रुकिए,
0: चले गए, चले गए, चले गए।
2: मोटी मछली।
4: मोटी मछली वीएम आनंद की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे हवा महल कार्यक्रम में। इसके निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये थी आकाशवाणी इलाहाबाद की भेंट।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से। आवाज़ें खान साहब और शाहसत सचदेव की थी। गीत के बोल नुसरत फ़तेह अली खान के और संगीत शाहसत सचदेव और नुसरत फ़तेह अली खान का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सितारे ज़मीन पर से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और शरीबा पारुलकर की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म धड़क 2 से, आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ गरिमा के और संगीत श्रेयस पुराणिक का।

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज़ जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के, संगीत कुमार और जोश ब्रार का था।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका।
4: Players like Cap and Ismail, who have a ton of experience between them, they know exactly what pace to bowl and when to hold themselves back. It's not always going all out that pays out, and that is where that's why I said that it played a dual role. It did not.
5: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरियापलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
6: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार

0: रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
0: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।

0: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता खतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वज़ीराज़म ने कहा कि इन जहाज़ों की तैयारी में 200 से ज्यादा एमएसएमईज ने हिस्सा लिया, जिससे मुल्क भर में रोजगार के मौके पैदा हुए और माशी सरगर्मियों को फरोग मिला।
1: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं।
0: अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट यूजी 2026 आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान दोबारा मुनाकिद किया गया। इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने कहा है कि मुल्क भर के 5,440 इम्तिहानी मराकज और बैरून मुल्क के 14 मराकज पर होने वाले दोबारा इम्तिहान में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। अंग्रेजी और हिंदी समेत 13 जबानों में मजकूरा इम्तिहान का इनेकाद किया गया। एनटीए ने कहा कि 10,000 से ज्यादा माजूर अफराद समेत तमाम उम्मीदवारों के लिए वसी इंतजाम किए गए थे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इम्तिहानात के तमाम मराकज पर आधार पर मबनी बायोमेट्रिक और चेहरे की शिनाख्त, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर्स और रियासती पुलिस की मदद से दो सतही जांच जैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए। सीसीटीवी निगरानी के लिए एनटीए हेडक्वार्टरों, वजारत तालीम, महकमे आला तालीम के तहत मरकज की मुआवनत से चलने वाले 34 इदारों के साथ साथ तमाम रियासतों और जिला कलेक्ट्रेट में कमान और कंट्रोल सेंटर कायम किए गए थे। इम्तिहानात का इनेकाद मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स, उमूर खारजा की वजारत, महकमा डाक, भारतीय फिजाइया और वजारत दाखिला समेत दीगर इदारों की मदद से किया गया। मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने भी तलबा और वालदेन के लिए इंतजाम किए। इनमें इम्तिहान के मराकज पर धूप से बचने के लिए इंतजाम, पीने का पानी, खाना, एम्बुलेंस और जरूरी तिब्बी सहूलियात शामिल थी। आकाशवाणी से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: सीबीएसई ने 12वीं जमात की तस्दीक और दोबारा जांच के नतीज मरहलावार जारी करना शुरू कर दिए हैं। आज मौसूल होने वाली दरखास्त में से 87% से ज्यादा नतीज का ऐलान कर दिया। बोर्ड ने कहा कि बाकी नतीज भी जल्द अज जल्द जारी दिए जाएंगे और तलबा से अपील की है कि ताजा मालूमात के लिए सिर्फ सीबीएसई के सरकारी जराये और डीजी लॉकर से ही राब्ता करें। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में आज समुद्री खुराक बरामद करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 कम से कम 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा वर्कर्स जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि इमदादी और तिब्बी कार्रवाइयां जारी हैं। आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स एनडीआरएफ और केमिकल हयातियाती और न्यूक्लियाई खतरात से निमटने वाली खसूसी टीमों ने फौरी तौर पर बचाव की कार्रवाई शुरू की और सख्त हिफाजती जवाबित के तहत गैस के अखराज पर काबू पाने की कोशिश की। वजीर आला सी जोसेफ विजय ने हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है और 3 रुकनी कमेटी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मजकूरा वाकये की जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला ने महलुकीन के अहले खाना के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में समुद्री खुराक की बरामदाती इकाई में अमोनिया गैस लीक होने के वाकये में जानी नुकसान पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधा कृष्णन और जनाब मोदी ने मुतासिरा खानदानों के तई अपनी ताजियत का इजहार किया और जेर इलाज जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। योग का बैन अवी दिन आज दुनिया भर में मनाया गया। इसकी मरकजी तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के रेड रोड में मुनद हुई। वजीर आजम ने इस तारीखी तकरीब गाह पर हजारों शौरका के साथ योग किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने जोर दिया कि योग जहन को तंदुरुस्त रखने से लेकर जिस्म को सेहतमंद बनाने तक की राहें हमवार करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध, ये बोध हमारे

0: जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
1: इस साल के योग के बैन अल-अक़वामी दिन के मौजू सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग पर रोशनी डालते हुए वजीर आजम ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न ही ये उम्र के किसी तबके तक महदूद है, बल्कि ये एक इंसानी जज्बे का इजहार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड में योग किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का जश्न है और इसने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाजिन और बाबानी जिंदगी का रास्ता दिखाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत 2026 की ब्रिक्स की अपनी सदारत के तहत इस महीने की 25 और 26 तारीख को हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रिक्स मुल्कों के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। मीटिंग में तीन अहम तरजीहात, तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक मसावी रसाई, नीज टेक्नोलॉजी और इख्तरा पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन मुल्कों के तवानाई के वजरा और सीनियर हुकाम इस मीटिंग में शिरकत करेंगे ताकि तवानाई की यकीनी फराहमी, पायदारी और जिद्दत तराजी के शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। ये मीटिंग भारत को आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने और एक जामे आलमी तवानाई मुस्तकबिल की तश्कील में अहम रोल अदा करने का मौका फराहम करेगा। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारती मुआहदा इस साल के दिसंबर तक होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के अगले बरस फरवरी और मार्च के दरमियान नाफिज होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से भारतीय कारोबारियों को यूरोपीय बाजार तक तकरीबन सिफर दरामदी ड्यूटी के साथ रसाई हासिल होगी। मगरबी एशिया तनाजे को खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाने और अबूरी मुआहदे को मजबूत बनाने की खातिर आज स्विट्जरलैंड के बर्गिन स्टॉक में अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात शुरू हो गए। अमरीकी वफद की क्यादत अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी वफद की क्यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराकची कर रहे हैं। इस मुजाकरात में कतर और पाकिस्तान सालसी का रोल अदा कर रहे हैं। ये बातचीत ऐसे वक्त हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमलों के जारी रहने के बायस दोबारा आबनए हुरमुज को बंद करने का ऐलान किया था। ताहम अमरीकी फौज के मुताबिक ये अहम आबी गुजरगाह अब भी तमाम बहरी जहाजों के लिए खुली हुई है। ईरानी हुकूमत के मुताबिक अमरीका, कतर और पाकिस्तान के साथ मुजवजा चार फरीकी मुश्तरका मुजाकरात से कबल बातचीत करने वाली टीम ने बर्गिन स्टॉक में कतर के सालसों के साथ बातचीत की। चार फरीकी मुजाकरात से पहले अमरीकी वफद ने भी पाकिस्तान की सालसी टीम से मुलाकात की। गुज़श्ता हफ्ते जारी किए गए 14 निकाती समझौते की पहली शिक तमाम महाजों पर जंगबंदी का मुतालबा करती है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, जहां इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान लड़ाई में हालिया दिनों में शिद्दत आ गई है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को जयपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया और खाटीपुरा में अहम कोचिंग टर्मिनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया टर्मिनल रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाएगा और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने इस महीने की 27 तारीख को आसाम और मेघालय में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल के हिमालयी इलाकों और सिक्किम में भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरला, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। आईएमडी ने दिल्ली और दीगर रियासतों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी पेशगोई की है, जबकि मध्य प्रदेश, शुमाली उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के अलग अलग इलाकों में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। हॉकी में भारत ने एफआईएच खवातीन के नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया और खवातीन की प्रो लीग में अपनी जगह यकीनी बना ली। नवनीत कौर और सुनीलिता टोप्पो ने भारत की तरफ से गोल किया। पूरे टूर्नामेंट में भारत नाकाबिले शिकस्त रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह जीत नौजवान खिलाड़ियों को हॉकी को अपनाने की तरगीब देगी। क्रिकेट में श्रीलंका के दम्बोला में तीन मुल्कों की सीरीज में आज

भारत ए ने मेजबान श्रीलंका को 66 रन से शिकस्त दी। भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रा 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 377 रन बनाए। भारत ए ने पहली विकेट की शराकतदारी में शानदार 130 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 11 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई और सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन बनाए। श्रीलंका ए के लिए कोगाथास मेथुलन, रविंद्र फर्नांडो और वनुजा सहान ने दो दो विकेट हासिल किए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 47 ओवर्स एक गेंद में 311 रन बनाकर आउट हो गई। दौलत मुश्तरक खेलों के लिए मुंतखब भारतीय मुक्केबाजों ने चेक जमहूरिया के उस्ती नाद लाबेम शहर में मुनदा 56वें ग्रां प्री में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 12 तमगे हासिल किए, जिनमें सोने के 8 तमगे शामिल हैं। 5 रुकनी खवातीन टीम ने सोने के 4 और चांदी का एक तमगा जीता है। इसमें लवलीना बोरगोहेन, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी और प्रिया घनघास ने सोने का तमगा हासिल किया, जबकि परवीन हुड्डा ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। एशियन रिले चैंपियनशिप में चीन के शाओक्सिंग शहर में मुनाकिदा टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन के आखिरी दिन भारत ने खवातीन की 4x100 मीटर दौड़ में सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क की इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक असर रसूख के लिए नहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनक्किद किया गया। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी हैं, जिसका मकसद उबूरी माहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तराजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर एफआईएच नेशंस कप जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा ना पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे, और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
2: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे के शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपरहिट थे और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है वो मैं पेश करना चाहूंगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे। तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक

येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहां रहा मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूना से बॉम्बे आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपए थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ, बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में, और संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, उसमें मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
2: We are most grateful to His Majesty for granting us this interview.
3: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं।
2: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
3: हम फौजियों की उनकी अति कदर करते हैं।
2: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion.

0: Not with I am.
1: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
0: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी.
1: After which the company will assume the administration of Oud.
0: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी.
1: I hope the king has understood what I've said.
0: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे.
1: What is this? You please tell his majesty that I have no use for that.
0: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है.
2: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते.
3: और अब जहां तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के है, यूपी के है. जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में. हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई. मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ. बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में. तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का. हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी. तो मैं जब पूना आया था सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूं. मेरे एक दोस्त वहां बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक. फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई. बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले. तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा. और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से. लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू.
4: अच्छा.
3: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहां मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई. शकील बदाउनी का एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं, हूँ मोहब्बतों का राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं. यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता. शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता.
5: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं.
3: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था. वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो. तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है. वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है. और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म. तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी.
5: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था.

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथ में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
0: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसको ज्यादा उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मजा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मजा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, वो जो मजा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मजा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मजा है फिल्मों का। और जहां तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पर मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मजा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूं, और जहां तक मजे का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूं, और जहां तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को।
3: तो आपने उसे अपने ही साए के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
4: और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
5: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
4: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहां। मिस्टर धनाज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
6: नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस
7: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
8: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत होती।
2: और शुरू में मैं ये कहूं कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी। तो उससे मुझको एक अंदाजा मिला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपने अपनी निजी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये जरूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक जिद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूं। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी जिद थी, तो मैंने अपनी जिंदगी से ये चीजें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी जिंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही जिद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं, लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा यह सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
0: शीलों से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
2: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में, मतलब शुरू से, बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। ये यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से, बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया। तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं, इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट, और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में स्पोर्ट्स के। मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कॉमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में। जिंदगी का संघर्ष जो है, किस तरह लड़ना चाहिए, वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेके आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
0: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
2: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है, वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफर है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफर बेहद पसंद है। वो सफर आपको थिएटर, इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं। तो ये मजा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बॉम्बे में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ। उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
0: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
2: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल, ना तो इंग्लिश क्लासिकल। लेकिन हाँ, पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहाँ तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है, तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने, ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में, कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ, 1-2 साल से कहीं से, मालूम नहीं कहाँ से, मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है, जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था, तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहाँ पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठकर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना, और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है। लेकिन अब तक जो है मेरा इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में, या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं, किशोर जी, रफी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक, क्या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊं, कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूं, तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाजें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं। मुश्किल है, मुझको याद है हम आशिक ही फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे। अब मैंने उनकी आवाज पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने जमाने में खोया रहता हूँ। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मजा आता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अच्छा लगता है जब कोई अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस मासूम लम्हे के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

चंद लम्हों में सारी जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन चंद लम्हों वाला ये जीवन।

तस्वीरों के रंग धुंधले पड़ जाते हैं, पर लम्हों के रंग कायम रहते हैं। काली सफेद तस्वीरों के रंग भले भूरे या धूसर पड़ जाएं, पर ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो छपाक से हम डुबकी लगा लेते हैं बीते हुए वक्त में। पुराने एल्बमों से इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम, तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती है बीते हुए दिनों की याद, जैसे अभी कल ही तो जिया था हमने ये सब।

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं वही काम करते हैं पुराने गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ले जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना। कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

तुम्हारे देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संगदिल दुनिया में प्यार के नर्म फूल खिलाएं।

0: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
1: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे।
0: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
2: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
0: फिल्म ये दिल किसको दूं, संगीतकार इकबाल कुरैशी।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 बजे हैं, आइए सुने कुछ फिल्मी गाने।

0: प्रेम रोग, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं बॉबी फिल्म का यह अगला गीत, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

बॉबी फिल्म के इस गीत के साथ ही रजनीगंधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिकगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। FM 103 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। प्रातः 5:55 पर हम पुनः हाजिर होंगे अपने कार्यक्रमों

बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। प्रातः 5:55 पर हम पुनः हाजिर होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद।